केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगा हर्ट्स पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी

0: विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

वंदन वार, सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, ऐसे जियो जैसे कल ही मरना हो और ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीना हो। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

जब आराध्य हों भोले भंडारी तो कैसे ना उन पर हम जाएं वारी। यही तो है प्रभु का संदेश कि सरलता से बड़ा नहीं है कोई भेष।

0: कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं देश गान।
1: हर दिशा

विविध पर सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस, आज सुनिए 244वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिएगा शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी भूमिका। 9वीं कड़ी कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। भूले बिस्तर गीत कार्यक्रम का समय सुबह 7 बजे का है और 7:30 हम है राही प्यार के। 8 बजे से सुनिएगा समाचार प्रभात। 8:15 से त्रिवेणी के अंतर्गत त्रिवेणी सुन सकते हैं कार्यक्रम आप, और 8:30 से लोग। 9:30 से कार्यक्रम आज के फनकार, आज केंद्रित है फिल्मकार गुरुदत्त पर। 10 बजे से सुनिए आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षक लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की दूसरी कड़ी, रंग तरंग कार्यक्रम सुबह 11 बजे से, और 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, 1 बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर का, 2 बजे से और 2:15 से दोपहर समाचार। 2:30 से सदाबहार में, और 3 बजे से सखी सहेली, 4 बजे आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो फरमाइश के साथ, और 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से हिंदी में समाचार, और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन सकते हैं झरोखा के अंतर्गत शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, 6:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। सुनिए 9वीं कड़ी कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। 7 बजे जय माला, 7:45 से इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज वर्षा सोलंकी से खान की बातचीत। 7 कचरे का मालिक से नाटिका सुनिएगा हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे से, लेखन विनायक शंकर विनय का, निर्देशन रणजीत अहलूवालिया का, और रात 8:15 से चित्रलोक। से समाचार संध्या, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 से आज के फन कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता संजीव कुमार पर और 10 बजे से छाया गीत। 10:30 से ढलती जाए रात और 11 बजे से सुन सकते हैं रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

एक बार फिर बता दें, सुबह और शाम 6:45 पर सुन सकते हैं संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज सुनेगा 9वीं कड़ी। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। झरोखा के अंतर्गत आप सुन रहे थे आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रामचरितमानस में आज सुनिए 44वां।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्र ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के चरणों में नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, फिल्मी दुनिया में बांसुरी की तान एक अलग पहचान बनाती है और आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई है। हम ये जानना चाहते हैं, जो बांसुरी की दुनिया में आना चाहते हैं और फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए बताइए कि अमूमन कितने स्वर सप्तक की बांसुरी उनके पास होनी चाहिए और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए।
2: कोई बांसुरी वादक अगर फिल्मों में जाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो नोटेशन लिखना आना चाहिए
1: जी।
2: और मूर्छना भेद से भी आगे जाके सुपर मूर्छना मैं कहूंगा जानना चाहिए कि अगर सारे गामा पदा नी सा पामा गारे सानी दा पा, तो पंचम से उसका क्या नोटेशन बनेगा, निषाद से क्या बनेगा, धैवत से क्या बनेगा
1: जी।
2: ये एकदम तैयारी पूरी होनी चाहिए कि पता नहीं कौन सा पीस कैसे आ जाए। ये सितार सरोद तो है नहीं कि आप बोल देंगे कि नहीं ये यहाँ से नहीं निकलता
1: जी,
2: आपको
1: जी।
2: तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। ये पहली तैयारी। और दूसरी तैयारी ये होनी चाहिए कि बड़े बांसुरी जितने हैं, सी शार्प काली एक जो है
1: जी।
2: वो बड़ी बांसुरी से लेके मिडिल बांसुरी जो 1.5 फीट मान लीजिए आप
1: जी, जी।
2: और उससे फिर छोटी मुरली जो एक फाउंटेन पेन की तरह है।
1: अच्छा।
2: इन सब में सोलो बजाना आना चाहिए।
1: क्या बात है।
2: मतलब ऐसी नहीं कि अचानक से मैंने छोटी फ्लूट ली तो उसमें हाथ नहीं चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मैं कदरी गोपाल नाथ जैसे महान सैक्सोफोन प्लेयर के साथ बजाता था तो मैं छोटी बांसुरी लेके पूरा प्रोग्राम बजा देता था
1: जी, जी, जी।
2: वो फिल्म लाइन की देन है मुझे कि मैं अभी तक अटका नहीं कहीं।
1: अगर उसमें कुछ है आपको कुछ ऐसे टुकड़े आप बजा के सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को।
2: हाँ, मैं एक तमिल फिल्म में बजा रहा था दलपति। दलपति में हीरो जो थे वो रजनीकांत थे
1: जी,
2: और म्यूजिक डायरेक्टर थे इलैयाराजा। तो एक पीस उन्होंने दिया जो कहीं से भी नहीं आ रहा था और उसका जो फ्लूट प्लेयर मेरे साथ था उसका नाम था नेपोलियन
1: जी।
2: हम दोनों बांसुरी में थे
1: जी।
2: तब डबिंग का जमाना तो इतना नहीं था कि दो ट्रैक सिर्फ मां को दे दिया जाए, तो हम दोनों को बांसुरी में बुलाया गया। तो वो दलपति का जो मैं
1: जी
2: वो पुरिया धनाश्री में था
1: जी। सुनाए प्लीज।
2: सा ने दा बा मा गा रे सा, ये हो गया पूरा धनाश्री। और इसका नोटेशन मेरा क्या बना, मा मा दा नी सा रे गा मा मा गा कोमल रे सा शुद्ध नी शुद्ध दा तीव्र मध्यम शुद्ध मध्यम। ये है, यहां से मैंने पीस बजाया। पीस ऐसे था,

0: उसके पहले मैंने मध्यम से कभी पूरा धनाश्री बजाया नहीं था। अजीब मूर्छना है ये।
1: जी जी, तो इन सब की तैयारी, इन सब पे कमांड होना बहुत जरूरी है अगर फिल्मी दुनिया में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं हमारे कलाकार बांसुरी की दुनिया में। जो
0: इन सब की तैयारी किए बिना आप मत करिए।
1: पंडित जी, आपके पास कितनी तरह की बांसुरी है, कितने प्रकार की?
0: मेरे पास चाइनीज फ्लूट है और पैम फ्लूट है
1: जी,
0: जो ऐसे बजाते हैं जैसे कि बांसुरी को ऐसे पकड़ के। ये सुर जो है ये कल्पेश मेरा जो शिष्य अभी आपके साथ स्टूडियो में बैठा है, ये खुद बहुत अच्छा फ्लूट मेकर भी है। इसने सोचा है कि पैन फ्लूट बनाऊं।
1: क्या बात है, वाह।
0: अगर ये यहाँ पे सा है तो ये बजेगा।
1: वाह,
0: रे, यहां से रे आ रहा है। तो नॉर्मली वहां से उस सुर को पकड़ के उसको पैन फ्लूट बनाना पड़ेगा।
1: जी, तो कितनी बारीक जानकारियां आप दे रहे हैं जो कहीं उपलब्ध नहीं होंगी।
0: ये तो मेरे कम से कम नहीं तो भी 55 साल की तपस्या है।
1: जी जी,
0: 55-56 साल की तपस्या है।
1: तो अगर लोग फिल्मों में जाना चाहते हैं वो पहले इतनी तैयारी करें, रियाज करें पूरी तैयारी के साथ, तब जाएं। और यहाँ पर अब हमें याद आ रहा है वो गाना 1942 लव स्टोरी फिल्म का, कुछ ना कहो। इसमें आपकी बांसुरी है, पंचम दास से जुड़ी हुई यादों का खजाना है आपके पास। इस समय क्या बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
0: कहते हैं ना, जब कोई अपना चला जाता है छुड़ा के दामन, दिल के अरमानों पे एक तीर सी चल जाती है।
1: जी,
0: मैं यही कहूंगा कि पंचम दास ने इतना प्यार दिया मुझे, मेरे घर आते थे बोरीवली, तब मैं बोरीवली रहता था।
1: अच्छा,
0: फिर मैं मलाड चला गया। मगर अंत में ऐसा हुआ, 87-88 बाद थोड़ा खराब दौर उनके ऊपर आ गया। महीने में एक आध दिन रिकॉर्डिंग होने लगा। एक व्यक्ति ऐसा था विद्यु विनोद चोपड़ा ने कहा मैं तो पंचम को ही लूंगा।
1: जी,
0: 1942 लव स्टोरी।
1: जी जी,
0: तो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, प्यार हुआ चुपके से, और मैं हूं रियाजी आदमी, उधर पंचम दा और ये दोनों रिहर्सल कर रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, और मैं अपना जैसे कल्पेश मेरे से जितना दूरी में बैठा है वहां बैठ के मैं अपना केदार राग रियाज कर रहा था। तो पंचम दा हारमोनियम रोके हाँ करके और बोले कमाल करते आज तू, बंगला में बोले, हम लोग यहाँ झक मार रहे हैं क्या? हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं और तू अपना दूसरा
1: राग केदार बजा रहा है,
0: डिस्टर्ब नहीं होता है? मैं एकदम डर गया। मैंने कहा दादा मुझे माफ करिए, केदार इसमें बहुत मुश्किल है। तो उसको मैं जरा टेक्निकली देख रहा था, तो टेक्निकली मत देख, एक काम कर, वो जो तू डिस्टर्ब किया वो गाने को भी जरा वही दे। तो अगर आप प्यार हुआ, मैं सुनाऊं आपको?
1: जी बिल्कुल।

0: वाह, बहुत सुंदर मंत्रमुग्ध हो गए हम तो। और बांसुरी जब बजा रहे थे पंडित जी, तो हमें ये लग रहा था कि सांस की कैसे साधना करते हैं, सांस को कैसे होल्ड करते हैं, साधते कैसे।
1: अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये याद दिलाया मुझे। उनको प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल
1: जी, खास करके अनुलोम विलोम, उज्जयी, भस्त्रिका। जब आप उज्जयी करेंगे, आप अनूप जलोटा जी को देखिए, अनूप भैया को, वो करते हैं। सबसे ब्रेथलेस तो हमारे भीमसेन जोशी जी थे।
0: जी जी जी।
1: एक बार उन्होंने ऐसी तान मारी कि विलंबित का ठेका

0: जो 64 का लय होता है दिन दिन, ये लय में पहले मात्रे से आखिरी मात्रे तक गमक का तान करते गए, सांस छूटा ही नहीं। मुझे राजन मिश्रा ने बताया ये बात, पंडित राजन मिश्रा जी ने ये बात बताई, बोले कि अब बस कर भीमसेन, मेरी सांस चली जाएगी। किसने कहा? काशी नरेश ने कहा, काशी के जो राजा थे।
1: जी जी जी, सांस की साधना भी जरूरी है। तभी तो हम जब आपको देख रहे हैं, मतलब अपने श्रोताओं को बता दें कि पंडित जी जब जब बांस बजा रहे थे तो हमने न जाने कितनी सांसें उस बीच ली होंगी, लेकिन आपकी सांस वहीं पर बांसुरी पे ही टिकी हुई है।
0: जी जी जी,
1: तो ये अद्भुत बात है। और उसी फिल्म में 92 लव स्टोरी में एक गाना और है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो।
0: जी, इस गाने पे आ रहा हूं। विधु विनोद चोपड़ा ने उनको लिया
1: जी,
0: और विधु विनोद चोपड़ा इस गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो पंचमदा बोले कि रोंगीला रोंगीला रोंगीला रे रोंगीला, बंगाली गाना है, इसी को तो इंट्रो में बजा। और मुझे आके क्या बोले मालूम है, मेरा गाल में थोड़ा प्यार किया और बोले कि ये गाना जितना हिट होगा ना उतना तेरा पीस भी हिट होगा। तो मैं ये गाना कल्पेश के साथ मिलके वही अपना दादरा
1: जरूर सुनाया।

0: वाह, अद्भुत। अब इसके बाद सचमुच कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अब कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, तो अब इस कड़ी को समेटते हैं और कल कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस

कला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुष्का पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

रिमझिम फुहारों और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू लिए आपका पसंदीदा मॉर्निंग शो लेकर एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अनिला की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात और प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बारिश की ये रिमझिम फुहारें आपके मन को ताजगी दें और आपकी मुस्कान को और भी खूबसूरत बना दें, ऐसी हम कामना करते हैं।

वक्त की हर धड़कन में छिपा है सफलता का राज। वक्त की हर धड़कन में छिपा है सफलता का राज, जो हर पल को जीना जाने वही सबसे बड़ा खास है। आज का काम आज ही करना, यही जीवन की पहचान। समय का जो मान करे वही पाता है ऊंची उड़ान। समय का जो मान करे वही पाता है ऊंची उड़ान।

श्रोताओं, समय एक ऐसा अनमोल खजाना है जो सभी को मिलता है, अमीर हो या गरीब। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे होते ही हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम किस तरह उसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, जो समय का सही उपयोग करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। इसके विपरीत, जो समय का सही उपयोग नहीं करते या यूं ही समय को व्यर्थ गवा देते हैं, उन्हें सफलता मिलना कठिन हो जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि बीता हुआ समय और जुबान से बोले गए शब्द कभी लौट कर

वापस नहीं आते। इसीलिए दोस्तों, समय की कीमत को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करते हैं, समय भी उन्हीं का सम्मान करता है। श्रोताओं, जीवन में सफल व्यक्ति की एक खास आदत होती है कि वे हर पल का सदुपयोग करते हैं। पहले वे अपने लक्ष्य तय करते हैं, फिर योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। और आलस को छोड़कर सफलता कैसे पानी है, इस पर कार्य करते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी आदतें हैं, भीड़ से उन्हें अलग पहचान दिलाती है। वहीं दूसरी ओर जो हर काम को कल पर टाल देते हैं, उनके हाथ अक्सर पछतावा ही रह जाता है। समय का सही उपयोग केवल पढ़ाई या नौकरी तक ही सीमित नहीं है। अपने परिवार के साथ बिताया गया समय, स्वास्थ्य के लिए किया गया योग और व्यायाम, और नई नई बातों को सीखने में लगाया गया समय, समाज के लिए किए गए अच्छे कार्य भी जीवन का को समृद्ध बनाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि हर पल हमें नया सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां कभी रुकती नहीं हैं। वे हमें हर क्षण यह संदेश देती हैं कि जीवन भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो बीते हुए समय के बारे में न सोचकर और समय का ध्यान रखें और अपने वर्तमान में जिएं, क्योंकि जो आज समय का सही उपयोग करता है, वही अपने सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रख पाता है। तो आइए आज हम सब एक छोटा सा संकल्प करें कि समय को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानेंगे और हर दिन कुछ नया सीखने की चाह रखेंगे और अपने सपनों को साकार करने में कदम बढ़ाएंगे और हर पल को सार्थक बनाएंगे। दोस्तों, जो समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है और सफलता भी उसी के कदम चूमती है। मेहनत की राहों पर जो डटकर चलते हैं, वही हर मुश्किल में आगे निकलते हैं, वही हर मुश्किल से आगे निकलते हैं। सफलता यूं ही किसी के दर पर नहीं आती, जो हौसलों से लड़ता है, वही मंजिल पाते हैं। तो श्रोताओं, घड़ी की हर टिक टिक हमें यह याद दिलाती है कि हर नया पल एक नया अवसर लेकर आती है। तो समय को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं और हर दिन को सफलता की नई कहानी में बदल दें।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से और सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। श्रोताओं, बारिश का मौसम अपने साथ हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं, मिट्टी की सौंधी खुशबू और प्रकृति की अनमोल सुंदरता लेकर आता है। ये रिमझिम फुहारें मन को सुकून देती हैं, लेकिन यह मौसम अपने साथ कई तरह की मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। इसीलिए इस मौसम का आनंद लेने के साथ साथ हमें इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। हमेशा ताज़ा और गर्म ही भोजन का उपयोग करना चाहिए। लंबे समय तक रखा हुआ भोजन, बाजार में खुले में बिकने वाला भोजन से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम रहती है। इसीलिए हल्का, ताज़ा, पौष्टिक और घर का बना भोजन ही हमारे लिए सबसे उपयुक्त रहता है। साथ ही मौसमी फलों और हरी सब्जियों का उपयोग करने से पहले उन्हें अच्छे से धोना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, उबला हुआ पानी और अच्छी तरह से छान कर ही उपयोग में लाना चाहिए। दूषित या गंदे पानी को पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में डायरिया और टाइफाइड गंदे पानी के उपयोग से ही होते हैं, तो पानी की शुद्धता का पूर्ण ख्याल रखें। यदि आप बारिश में भीग जाते हैं तो गीले कपड़ों को अधिक देर तक न पहन कर रखें। कपड़ों को अतिशीघ्र बदलें और शरीर को अच्छे से पोंछें और साथ ही गर्म पेय का सेवन अवश्य करें। बच्चों और बुजुर्गों का इस मौसम में विशेष ख्याल रखें। इस मौसम में मच्छरों से बचाव भी रखें, साथ ही बारिश में कीड़े मकोड़ों के काटने से बचें और घर के आसपास पानी को जमा ना होने दें और पानी से भरे बर्तनों और बाल्टियों और टंकियों को हमेशा ढक कर रखें। दोस्तों, बारिश के मौसम में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, तो सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें और अपने शरीर पर नारियल के तेल में कपूर मिलाकर अवश्य लगाएं। इससे मच्छर आपके पास नहीं आएंगे। इन दिनों में मच्छरों से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी कई बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

तो हमेशा सतर्क रहें और स्वच्छता बनाए रखें। मच्छरों को पैदा होने से रोकें और मच्छरों से बचने के लिए हर संभव प्रयास करें। श्रोताओं, बारिश के मौसम में हल्की सैर, योग, प्राणायाम, ध्यान को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें, क्योंकि ये सभी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही पर्याप्त नींद लें और तनाव से मुक्त रहें। योग से तन हम सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का सुंदर संगम है। योग से तन और मन दोनों ऊर्जा से भर जाते हैं। बरसात के इस बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, तो ऐसे में हम नियमित योग, प्राणायाम और व्यायाम करने की आदत डालें। ये हमारे शरीर को, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को मजबूत बनाते हैं। योग केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है और मन को सकारात्मक और शांत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो इस मौसम में ही नहीं

प्राणायाम और व्यायाम करने की आदत डालें। ये हमारे शरीर को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को मजबूत बनाते हैं। योग केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है और मन को सकारात्मक और शांत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो इस मौसम में ही नहीं बल्कि योग को हर मौसम में अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने जीवन को स्वस्थ संतुलित बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर, शांत मन और मुस्कुराता जीवन ही हर मौसम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। श्रोताओं, वर्षा ऋतु का आनंद तभी है जब स्वास्थ्य भी साथ दे। तो थोड़ी सी सावधानी, स्वच्छता की आदत और संतुलित जीवन शैली आपको और आपके परिवार को मौसम में स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है। तो आइए इस बरसात के मौसम और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें, लेकिन अपने और अपनों के स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण सजग रहें और जिम्मेदारी निभाएं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

0: रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर,

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा, इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन ना बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती हैं। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

श्रोताओं, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ में। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में। श्रोताओं, कन्यादान भारतीय संस्कृति की एक पावन और भावनात्मक परंपरा है। यह केवल एक रस्म ही नहीं बल्कि बेटी को सुखी, सम्मानपूर्ण और उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद है। आज के इस बदलते दौर में इसका वास्तविक अर्थ बेटी को सम्मान, समान अवसर और जीवन भर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प देना भी है। बेटियां किसी भी परिवार की मुस्कान और समाज की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं। उनकी शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन हर माता पिता का सपना होता है। इसी सोच को मजबूत आधार देने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी बेटी का विवाह गरिमा और सम्मान के साथ कर सकें। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीब, जरूरतमंद और पात्र परिवारों की बेटियों को दिया जाता है। कई जगह में सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। यह योजना केवल आर्थिक सहयोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि

यह समाज को यह संदेश भी देती है कि बेटी किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि परिवार का गौरव और देश का उज्जवल भविष्य है। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इस योजना के बारे में संबंधित विभाग, नगर निकाय, पंचायत समिति या ई मित्र के केंद्र से आप जानकारी ले सकते हैं और अवश्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ पात्र परिवार आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत गरीब और परिवार को 21,000 से 51,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए आप ऑनलाइन SSO राजस्थान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन में अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और स्थानीय समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन के आवश्यक दस्तावेज में आवेदक का आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, आधार से लिंक हुआ बैंक खाता पासबुक और विवाह निमंत्रण पत्र शामिल है। साथ ही कन्या के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।

श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष रहे मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। गणगौर का समय रहेगा कार्यक्रम समय रहेगा 8:30 पर। इसमें आज की चर्चा का विषय रहेगा बरसात में कैसे रखें बच्चों का ध्यान व बीमारियों से बचाव। साथ ही भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी मानसून में संक्रामक रोगों से बचाव, डॉक्टर शिल्पा से मीना नागर की बातचीत। जानकारी की बातों में आप जानेंगे जल जीवन मिशन। दोपहर 12:00 का समय रहेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के लिए।

शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युव वाणी। इसमें आज की चर्चा का विषय रहेगा करियर में कम्युनिकेशन स्किल का महत्व, युवाओं में बढ़ती उद्यमिता, वातायन में चट्टानों पर बनी रहस्यमयी मूर्तियां, चिराग जल रहे हैं युवा डायरी में, भेंट वार्ता में तरमीम खानम से राफिया की बातचीत सुनवाई जाएगी। जानकारी की बातों में आप जानेंगे अटल पेंशन योजना, साथ ही जानेंगे आज का इतिहास, रोजगार सूचनाएं और कल के कार्यक्रम। शाम 6:05 पर और रात्रि 8:15 पर आप आनंद उठा सकेंगे फिल्म संगीत का। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का। इसमें आज सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा बुआई पूर्व और बुआई उपरांत खरीफ फसलों की खरपतवार नियंत्रण। इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे कपिल कुमार नागर, फॉर्म मैनेजर कृषि अनुसंधान उपकेंद्र खानपुर से। साथ ही जानेंगे मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रम। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम कृषक चौपाल के लिए। इसमें आज की चर्चा का विषय रहेगा फसल विविधीकरण, भेंटवार्ता में वर्षा ऋतु में मौसमी सब्जियों की उन्नत खेती। इसके लिए गोविंद नागर कृषि अधिकारी कृषि विभाग झालावाड़ से हरिओम वैष्णव की बातचीत सुनवाई जाएगी। जानकारी की बातों में आप जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, साथ ही जानेंगे मौसम, बाजार भाव और समर्थन मूल्य। और रात्रि 9 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सबरस का। कार्यक्रम में चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, हर दिन का स्वागत उत्साह के साथ कीजिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और प्रकृति से प्रेम करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अनिला को दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है। अब सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज है हिंदी सिनेमा जगत के दो ऐसे दिग्गज अभिनेता का जन्मदिन। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको हिंदी सिनेमा जगत के महान अभिनेता, निर्देशक, निर्माता गुरुदत्त साहब के कुछ चुनिंदा नगमे सुनवा रहे हैं। आपका जन्म आज के दिन 1925 में बेंगलोर में हुआ था। गुरुदत्त साहब को प्यासा, कागज की फूल, साहब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की याद में कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म प्यासा से।

0: आइए सुनते हैं रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा फिल्म चौधरी का चांद से ये गीत। गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।
1: अच्छा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और

0: टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओं, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। श्रोताओं, अब आपको हिंदी सिनेमा जगत के एक और दिग्गज अभिनेता, जो अपने सशक्त अभिनय और हर तरह के किरदार आसानी से निभाने के लिए मशहूर थे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिभाई भाई जी के नाम से जाने जाने वाले संजीव कपूर जी के बारे में, जिनका जन्म आज के दिन गुजरात के सूरत में हुआ था, जिन्होंने खिलौना, शोले, त्रिशूल, अंगूर, कोशिश, आंधी, सीता और गीता, कंगन, पारस, नौकर, पति पत्नी और वो, मौसम, दस्तक जैसी कई मशहूर फिल्मों में अभिनय किया। तो उन्हीं की याद में सुनते हैं उन्हीं की फिल्मों से कुछ चुनिंदा नगमे।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाज़ में सुनते हैं फिल्म आंधी से ये गीत। आर डी बर्मन का संगीत है और गुलजार के बोल।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और यशुदास के युगल स्वरों में फिल्म त्रिशूल से, खय्याम का संगीत है और साहिर लुधियानवी के बोल।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आनंद बख्शी का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म सीता और गीता से ये गीत। गीत को आवाजें दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत में हमने आपको गुरुदत्त साहब और संजीव कपूर जी के कुछ चुनिंदा नगमे सुनवाए। दोनों ही अपने अभिनय के जरिए हमेशा हम सभी के दिलों में यूं ही जिंदा रहेंगे।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात का आज का अंक।

0: दिल्ली से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधान

0: मंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
1: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख

0: व्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी

एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चंदना दीक्षित के गाए इस गीत के साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

इसी गीत के साथ सुगम संगीत यही संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से FM 103.2 MHz पर। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम गणगौर।

0: क्यों आवार आप पढ़ना सुन रहे चाहे प्यार सो लोकगीत उम्मीद करा चाह कर आप सभी जरूर पसंद आए होगो। और देखो सख्याओं जब बरसात को मौसम छे तो आपनी ध्यान तो राखनो ही छे, तो ई मौसम में कसी कसी बीमारियां हो छे बरसात छे, तो देखो सुख का साथ दुख यानी कि दुख को मतलब छे कतनी तरह का संक्रामक रोग भी लेकर आओ छे। तो ई मानसून में संक्रामक रोगों से बचाव के लेकर अपनी ही काय काय उपाय करनी चाहिए और कसा बचनी चाहिए, तो ई विषय पर ही आज मैंने बातचीत करी छे बाकी एक डॉक्टर सकी सा, तो आओ सुनावा सा या बातचीत।
1: आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम हमारे साथ है हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर शिल्पा। शिल्पा जी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पर पहले जानते हैं आपके बारे में।
2: मैं डॉक्टर शिल्पा आयुर्वेदिक डॉक्टर।
1: शिल्पा जी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मानसून का मौसम शुरू हो गया है यानी कि बरसात का मौसम चल रहा है, इस मौसम में ये मौसम हरियाली और ठंडक लेकर तो आता है लेकिन इसके साथ कितने ही तरह के संक्रामक रोग हैं तो वह होने का खतरा रहता है यानी कि इस मौसम में संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस मौसम में जैसे हम देखते हैं कि जगह जगह जल भराव हो जाते हैं, गड्ढे भर जाते हैं और दूषित पानी व मच्छर भी बढ़ जाते हैं, तो उनसे कितनी तरह की बीमारियां जैसे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया इस तरह की बीमारियां तेजी से फैलती है, तो यदि हम समय रहते कुछ सावधानियां न बरतेंगे तो बहुत सारे गंभीर रोग हो जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि जो संक्रामक रोग हैं ये क्या होते हैं।
2: मोस्टली रेनी सीजन में होने वाले जो संक्रामक रोग हैं वो वाटर मॉस्किटो एयर से थ्रू फैलते हैं मोस्टली
1: जी,
2: जैसे कि वाटर बोर्न डिसीजेस में टाइफाइड कोलेरा होता है। कोलेरा को हम आमतौर पे हेजा बोलते हैं और हेजा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन देखा जाता है जिसमें मोस्टली वाटरी डायरिया देखने को मिलता है पेशेंट को, जिससे सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए हमें इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने नजदीकी किसी डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। और जैसे इस मौसम में हम वैसे तो मानते हैं कि वही जैसे गंदगी या दूषित पानी की वजह से संक्रामक रोग फैलते हैं लेकिन मानसून में ये जो रोग होते हैं संक्रामक क्यों बढ़ जाते हैं?
2: क्योंकि मानसून मोस्टली एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा मॉइस्चर वगैरह रहता है
1: जी,
2: तो और रुका हुआ पानी काफी टाइम तक रहता है आसपास, जैसे कूलर हो गया बकेट्स हो गया आसपास उनमें पानी इकट्ठा होने की वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग तेजी से फैलती है और उससे फिर मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जैसे डिसीज होने का हमें चांस काफी बढ़ जाते हैं और उससे बॉडी एक सीवियर बॉडी एक देखने को मिलता है, सीवियर फीवर देखने को मिलता है पेशेंट में।
1: जी बिल्कुल। तो जैसे अभी इसका यही है उपाय कि हमें जैसे पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, समय समय पर सफाई करना चाहिए
2: और जो पेशेंट जिनको एलर्जी वगैरह है उनको हमेशा मास्क वियर करना चाहिए जब भी वो बाहर जाए और वाटर को थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए।
1: जी। और जैसे क्या बचाव और हम कर सकते हैं संक्रामक रोगों से बचने के लिए?
2: जैसे अगर मॉस्किटो ज्यादा बड़े हुए तो हम मॉस्किटो नेट का यूज कर सकते हैं, वाटर थोड़ा ल्यूक वार्म ले और मोस्टली कॉन्टेमिनेटेड फूड वगैरह अवॉइड करे, बाहर का फूड बिल्कुल ना ले।
1: और मान लीजिए कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें कौन सी बीमारी हो गई यानी बीमारी के लक्षण हमें किस तरह से दिखाई देते हैं इस मौसम में?
2: जैसे रनी नोज हो सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग।
1: और जैसे इस मौसम में मच्छर बहुत सारे हो जाते हैं, मच्छरों के बचाव के जो उपाय है तो उनके बारे में बताइए कि हम कैसे बचाएं?
2: हाँ, मच्छरों से बचाव के लिए मॉस्किटो नेट और फुल स्लीव क्लॉथ वगैरह हमेशा बच्चों को तो स्पेशली केयर करवाना चाहिए।
1: जी। और जैसे बात करें हम खान पान की तो इस मौसम में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?
2: इस मौसम में हमें स्पेशली बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बाहर का फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और फ्रूट्स वगैरह विटामिन सी ये ज्यादा लेना चाहिए, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
1: जी, यानी कि हमें हमारे खान पान का स्तर सुधारना होगा, संतुलित आहार पोषण और जैसे ताजा भोजन ही हम करें। हम बात करें शिल्पा जी तो स्वच्छता का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या बीमारियों की रोकथाम में स्वच्छता का क्या महत्व है?
2: स्वच्छता से हम काफी हद तक इन संक्रामक रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे अगर हम कूलर वगैरह फ्लावर पॉट्स वगैरह में अगर पानी वगैरह स्टोर नहीं होने दे तो उससे हम मॉस्किटो वगैरह को रोक सकते हैं।
1: और जैसे हम बात करें कि इस मौसम में जो बीमारियां जैसे तो डेंगू मलेरिया ये तरह तो होती है लेकिन और कौन कौन सी बीमारियों का खतरा भी रहता है?
2: टाइफाइड हो गया, इस तरह इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग देखने को मिलती है, रनिंग नोज देखने को मिलता है, राइनाइटिस वगैरह, इन्फ्लुएंजा, एलर्जी, ये सब हमें स्पेशली इस मौसम में देखने को मिलती है पेशेंट में।
1: जी बिल्कुल,
2: सीवियर डाइजे की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल सकता है।
1: और जैसे हम बात करें स्वच्छता की, तो एक तो स्वच्छता तो हमें बना के रखनी है कि भाई बाहर से हाथ वगैरह अपने स्वच्छ रखें।
2: हाँ, हमेशा हैंड सैनिटाइज करना है।
1: डॉक्टर शिल्पा, आपने हमारे इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और संक्रामक रोगों से बचाव के आपने तरीके बताए, फिर भी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, बहनें सुन रही है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे इस मौसम के बारे में?
2: ध्यान रखे और ये जो जो बताया है ना उसको स्पेशली फॉलो कर रहे, और अगर फिर भी बहुत ज्यादा सिम्टम आपको देखने को मिलते तो आप अपने नजदीकी किसी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं।
1: कहते हैं ना कि हर मौसम में कुछ ना कुछ सुविधा होती है तो दुविधा भी होती है, बस हमें थोड़ी जागरूकता की जरूरत है।
2: हाँ, और अगर जैसे क्लॉथ वियर करे तो फिर लाइट वेट क्लॉथ वियर करे, जो अगर पानी में भीगने के बाद भी जल्दी इजिली सूख जाए।
1: जी, और जैसे हम घरेलू रूप से मान लीजिए कि जैसे हमारे इस मौसम में थोड़ा भीग गए, छोटे बच्चे हैं घर में या बुजुर्ग भीग गए, तो थोड़ी बहुत जुकाम हो जाती है, तो घरेलू चीजों के रूप में हम उनको क्या दे सकते हैं या वो क्या ले सकते हैं?
2: हाँ, हम उनको घरेलू चीजों के रूप में अदरक वाली चाय वगैरह और अदरक हल्दी और लौंग गिलोय का काढ़ा, वो काफी कम क्वांटिटी में, लेकिन पेशेंट के अकॉर्डिंग ही दे सकते हैं, सब पेशेंट को नहीं दे सकते वो।
1: जी बिल्कुल, तो यानी कि हमें मतलब डॉक्टर की सलाह से या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए।
2: हाँ, बिना सलाह के नहीं।
1: और जैसे हम बात करें हम हेल्दी डाइट की, तो इसमें क्या हेल्दी डाइट हम ले सकते हैं?
2: बैलेंस डाइट, नॉर्मल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इनका हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। फ्रूट्स ले सकते हैं हम, और जैसे लीफी वेजिटेबल्स जो अच्छी नहीं होती उनको अवॉइड करना है, और बाहर के फूड को स्पेशली अवॉइड करना है।
1: आपका कहने का मतलब है कि हमें ताजा भोजन ही करना चाहिए, घर की चीजें ही खानी चाहिए, और तली गली चीजों से परहेज करना चाहिए।
2: परहेज करना चाहिए
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कहते हैं ना कि जागरूकता स्वच्छ

0: सतर्कता और सावधानी, ये सब चीजें अपनाकर हम इस मानसून के मौसम में संक्रामक रोगों से स्वयं को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और सावधानी बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में, तो आपने आपका कीमती समय हमें दिया और आपके विचार हम हमारे श्रोताओं तक हम तक साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे कार्यक्रम
2: सख्यो आभार आपणना सुनी डॉक्टर शिल्पा जी से बातचीत। देखो आना ई मौसम में बहुत सारी ऐसा बचाव का तरीका बताया है कि आपन बच्चा ने कसा ही मौसम में बचावा और जो बीमारियां च वहाँ से अपना आप ही बचाऊंगा, तो देखो आगे कोई परेशानी को सामना न करनी पड़ेगा।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सखियों अब आपन चला कार्यक्रम का अंत में जानकारी की बात की ओर। तो जानकारी की बात में आज आपका लेखा लेकर आया जा जल जीवन मिशन का बारे में। सखियों जल जीवन मिशन भारत सरकार की यह भी एक महत्वपूर्ण पहल च और ई मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में करी गई जी। और इको मुख्य उद्देश्य जो सके हूँ देश का प्रत्येक ग्रामीण परिवार ही नल का माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करावो। जल जीवन मिशन को लक्ष्य केवल घर घर नल लगावो ही कोई ना बल्कि हर परिवार तक गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में नियमित स्वच्छ पेयजल पहुँचावो ज। सके हूँ ई योजना का माध्यम से महिला व बच्चा दूर दराज सुपानी लाभा में काफ़ी राहत मिलेगी और साथ ही दूषित पानी से होबा वाली जो बीमारियां रह जा वहाँ में भी काफ़ी कमी आओगी और लोगों का स्वास्थ्य में भी सुधार होगो। सक्याऊँ ई मिशन की एक विशेषता जन भागीदारी भी है। प्रत्येक गांव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को गठन करेगी। जल जीवन मिशन में वर्षा जल संचयन भू जल संरक्षण तालाब और जल संसाधना को पुनर्जीवन जैसे कार्य ही बढ़ावा दियो जाओ छ। और इको उद्देश्य जे केवल पानी उपलब्ध करावो ही कोई ना सके हूँ बल्कि भविष्य का लेकर पीढ़ियाँ का लेकर जल संसाधन को संरक्षण करवो भी छे। आपन सभी की जिम्मेदारी छे का पानी को आपन विवेकपूर्ण उपयोग करा। नल खुला न छोड़ा, वर्षा जल को संग्रह करा, पानी की एक एक बूंद को महत्व समझा और वर्षा जल को संग्रह तो जरूर करा। और आपन सब जल संरक्षण को संकल्प लेवा का हर घर जल हर घर स्वच्छ जीवन को लक्ष्य ही सफल बनाबा में आपनों योगदान देवा। और सख्याओं अब ला एक प्यारो सो लोकगीत को आना तो सुना एक प्यारो सो लोकगीत।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गणगौर। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया, कहा पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आवागमन के माध्यम के साथ ही राजस्थान के लिए विकास का आधार बनेगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला देश का

0: पहला राज्य बना और प्रदेश में मॉनसून के अगले 2-3 दिन सक्रिय रहने के आसार। आज कोटा और भरतपुर संभाग में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: सीईओ फोरम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रोडमैप व्यापार कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जिसमें दोनों पक्षों के 200 से अधिक सीईओ उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोटा क्षेत्र के लिए अनेक नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से मुकंदरा वन्यजीव अभयारण्य को बाईपास करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक संपर्क मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा कोटा को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर लंबा 4-लेन ग्रीनफील्ड संपर्क मार्ग भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटा से इटावा तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल एक्सप्रेसवे होगा। कोटा में आयोजित कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास का आधार बनेगा।
2: ये हाईवे केवल जाने आने के लिए नहीं है, ये जहां जहां से जाता है वहां के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। इस हाईवे के कारण इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक पार्क आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगी, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, किसानों के माल फसल के आधार पर आधारित उद्योग आएंगे और यहां का चौफेर विकास होगा। यही हाईवे बनाने के पीछे हमारे सरकार की इच्छा है।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड समारोह में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और स्वस्थ फसलों का उत्पादन संभव होगा। राज्यपाल ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला है और बड़ी आबादी की आजीविका इससे जुड़ी है। उन्होंने कम पानी में अधिक उत्पादन वाली फसलों तथा आधुनिक तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की बड़ी उपलब्धि है। कल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में राज्य सरकार और ISA के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य में सौर ऊर्जा के विस्तार, प्रसारण और वितरण के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में AI और डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे बिजली की मांग का बेहतर आकलन और उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को

0: ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अन्य ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। जयपुर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए नई पहल की गई है। इसके लिए झालाना में 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये स्टेशन शहर में कचरा संग्रहण, प्रबंधन और परिवहन को तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा।
1: वो टेम्पो यहाँ कर कचरे खाली करेंगे और उसके बाद यहाँ से बड़े वाहन में लगकर वो प्रोसेसिंग प्लांट तक जाएगा, जिसमें से हमारे यहाँ दहलवास प्लांट में जिस प्रकार हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ जगह गैस उत्पन्न करने का विचार है और कुछ जगह अब एक नई तकनीकी हो रही है कि उस कचरे को भी रिसाइकल करे, किसी न किसी प्रकार का कोई उपयोगी सामान निर्मित किया जाए।
0: कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर में पांचना बांध और नहरी जल प्रवाह को लेकर किसानों और आमजन से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी किसान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। डॉक्टर मीणा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक और भड़काऊ संदेशों से सावधान रहने तथा केवल प्रशासन की अधिकृत सूचनाओं पर विश्वास करने का आग्रह किया है।
2: मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, हिंसा किसी समस्या का समाधान कतई नहीं है, इसलिए हिंसा का सहारा नहीं लें और सोशल मीडिया पर जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उन पर गौर करने की जरूरत नहीं है। तो विशेषकर कमांड एरिया के किसानों को मैं कहना चाहूंगा, आपके लिए मैं सदा आपके साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। सबके लिए, कैचमेंट एरिया के लिए भी मैं हूं, सभी किसानों में कोई भेद नहीं करना चाहता।
0: मॉनसून के प्रदेश में अगले दो तीन दिन सक्रिय रहने के आसार हैं। 11 जुलाई से एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। आज कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है, कहीं कहीं तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर और झालावाड़ में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और फलौदी को छोड़कर सभी जिलों में बरसात का येलो अलर्ट है। इस बीच पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 22.9 मिलीमीटर बरसात उदयपुर के डबोक में रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना लिस्ट जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। कहा, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आवागमन के साथ ही राजस्थान के लिए विकास का आधार बनेगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। और प्रदेश में मॉनसून के अगले दो तीन दिन सक्रिय रहने के आसार। आज कोटा और भरतपुर संभाग में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत आना और इरशाद कामिल ने से लिखा, विशाल शेखर का संगीत। फिल्म चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में बात हो रही स्वास्थ्य और परहेज की। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें परहेज की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको परहेज करना आवश्यक हो गया हो तो इसे मन पर हावी मत होने दें, क्योंकि कई बार लोगों की बातों का केंद्र बिंदु ही ये बात बन जाती है कि ये सारी चीजें हम नहीं खा सकते, ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं, जबकि आप उन चीजों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं जो आप कर सकते हैं या जो आप खा सकते हैं, जो चीजें आपके लिए अनुकूल हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि मैं ये बात तो उस ज्ञान की तरह लगेगी जो कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन काम तो यही आता है। तो एक और ज्ञान हम देते चलें कि भाई मन के अनुसार आप मत चलिए, मन को अपने अनुसार लाइए, क्योंकि मन आपका है, आप मन के नहीं है। तो ये कीजिए और देखिएगा फिर आपका मन कितना खुश रहता है।

दिल में थोड़ी खाली सी। डैंग बैंग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाज, अनविता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और हमारे से भी कुछ इस तरह से थोड़ी सी कहते परहेज मांगता है या थोड़ा सा हमारा ध्यान चाहता है ताकि हम उसी ओर जाएं और अच्छा स्वास्थ्य हमारा बना रहे तो हम भी खुश रहेंगे। और परहेज को छोड़ने की जब बातें हम करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें आज नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, तो वो चीज़ें जो हैं जाकर परेशान तो करती ही हैं। तो क्यों ना खुशी खुशी कीजिए भाई, परहेज तो करना ही है, तो रोकर कीजिए या हंसकर कीजिए, तो बेहतर है अच्छे स्वास्थ्य की ओर अपना अच्छा कदम बढ़ाइए और हंसते खेलते बढ़ते हुए चलिए। तो आज ही कीजिए शुभारंभ इस बात का।

काई पोचे फिल्म का गीत रहे थे श्रुति पाठक, दिव्य कुमार की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और इतनी देर हमने बातें की अच्छे स्वास्थ्य और उसके लिए किए जाने वाले परहेज की। तो यकीन मानिए आपका और हमारा हाल एक ही, पर एक दूसरे को इस तरह संभालते हुए आप और हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ते जाएंगे, और गीतों का साथ तो है ही। तो आज जो भी आज से अपने अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आप सभी के कार्यक्रम का ये गीत, क्योंकि आपकी तरह ही हम भी अच्छे स्वास्थ्य के फैन हैं।

नक्स अजीज की आवाज में फैन गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वयं आनंदित रहें, दिन भर जहां भी रहें रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। और आज के इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढलते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार सलाम। उस प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: किसी इंसान से कोई शिकायत, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द को आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं दूर जा रहा हूं।
2: ये महलों, ये तख्तों, ये ताजियों की दुनिया।

गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हों या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियां दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।

गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक पूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और नंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को

समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए टूट हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहन जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के हिस्से पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। सरल इतनी थी कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थी। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थी कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थी और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए, जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले क्या इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी सहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: May I come in?
2: बैठ जाओ। जिस रास्ते तुम चल रहे हो, जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
1: यही, इसी जगह।
2: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाब।
1: आपको और कुछ पूछना है?
2: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? यहाँ अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
1: उसे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
2: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं। मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया और तुम्हारे सुख बदला लेना चाहता हूँ।
1: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
2: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
1: कोई नहीं।
2: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम ये नीच काम छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा।
1: मुझसे कहे कितनी हमदर्दी? समझा,
2: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे तो सिर्फ उस लड़की लाता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।
3: हाँ।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वेस्ट फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके

गीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म में स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग की खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा, तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है। साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन लिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्हें सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें

0: फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
1: अबे तू जाता है कि नहीं? जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
1: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं, और कल जब यही वक्त पलटेगा।
1: अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला, पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना। चल दफा हो यहां से।
0: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संप्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये गीत।

0: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहबीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। उससे फिर लगता था हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। इसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते कि ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज़ के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के। ये जैसे दिल की आवाज़ है और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से वैसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी मैंने और बढ़िया दिखती थी।

0: गुरुदत्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से गाना लिखवाया गया।
2: तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ

0: किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए चाहे घबराए।
1: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा, सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
2: गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था मुझको।
3: तो ये शायर भी हैं?
4: शायर? अरे तू देखती नहीं, उस पांच से नज़मे उसके सर के पीछे पड़ी है।
2: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गबे गया।
1: फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।

आधे घंटे के विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक

0: हरिशंकर जी राठी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: आज हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राठी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
1: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
0: जी,
1: भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित निबंध है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
0: जी।
1: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है। व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिस व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं, उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है, हमारी यादों से जुड़ी हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव गिराव बहुत याद आता है, वहाँ की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है।
0: जी।
1: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ, और वहाँ पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से। उसकी बड़ी रोचक कहानी है।
0: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
1: जी
0: कैसे प्रभावित कर लेता है।
1: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, पहला, जो कि NBT से, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है।
0: जी।
1: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है, उसके संपादक ने बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे।
0: जी।
1: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्या समझता हूँ, मैं क्या कहूँगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूँ। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है। तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहाँ भी संगतियाँ दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है।
0: जी, तो व्यंग्य का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में। तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
1: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें, उसमें हजारे प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारे प्रसाद द्विवेदी की भी

0: सीमा नहीं है,
1: जी
0: मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ाव हो रहा है, जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते हैं।
1: जी।
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है। मुझे लिखते रहे हैं तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज मिले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर। उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहाँ कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं, तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे
0: जी।
1: कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं
0: जी।
1: तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास, तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है, तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ। ना मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
0: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: जी, जी।
0: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी समीक्षा में पढ़ रही थी
1: जी, जी।
0: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन अरुबानी तुलसीदास कि रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा अनयन नयन बिन उबाने। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिन उबाने। कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है, और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले कि गिरा अनयन नयन बिन उबाने, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिन उबाने नहीं है, नयन और उबाने है, और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
0: जी।
1: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिन उबाने। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
0: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है
1: जी।
0: तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए
1: जी। मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं, बड़ी मस्त आवाज उनकी है।

0: मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है आजाराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
1: जी।
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।
1: आइए सुनते हैं।

0: क्या इशारा।
1: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
2: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
1: जी,
2: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद ललित निबंध में आ जा
1: जी,
2: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है। एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये हृदय पक्ष है। इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
1: अच्छा
2: जी, पढ़ते हैं लोग, मैं अपने बारे में नहीं कहता। मेरी कुल्हड़ की चाय
1: जी
2: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
1: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
2: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
1: जी,
2: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है
1: जी।
2: एक दिन मैं, एक सब्जी होती है कुंदरू,
1: कुंदरू की,
2: उसे मैं लाया से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास, मेरे प्रिय, मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है,

0: यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो। बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी,
0: तन्वी श्यामा शिखरी दशनाक्व बिंबाधरोष्ठी
1: जी,
0: मध्य क्षामा चकित हरडी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबाधरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
0: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के इस छंद को पढ़े होंगे वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
1: जी।
0: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ। तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग्य मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीज़ें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पी कर कहेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो इतना मीठा व्यंग इसमें आया, यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहाँ से फिर मैं ललित मंथ की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित मंथ
1: जी। तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: ये
1: हम समझ सकते हैं जी। तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, पगला
1: कभी भी, क्या बात
0: जी,
1: है फिल्म पगला कही का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
0: जी,
1: कर
0: जी,
1: पाएंगे
0: जी, हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे, जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिनी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो, 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई, आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाए, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुई अभी इसी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे

0: पास है कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
1: क्या बात है।
0: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थीं, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फ़ोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन मैंने किया
1: जी।
0: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी, कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
1: क्या बात है।
0: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब आप मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और को कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फ़ोन पर की, क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
1: जी।
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
1: जी।
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी।
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है
1: जी, बिल्कुल।
0: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसकी
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे
1: धीरे।
0: पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी,
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो रायडी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं
0: जी, जी।
1: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन सुनाए, तेरे बिना चलिया रे, इसको सुनना चाहूंगा।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेख समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा,
0: ज्यादा ही रहा,
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन सब कविताओं पर मिले, चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदन्ति। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वह विषय बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज़्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो ये संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा, संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर ये प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं ये शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
0: जी।
1: कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उन्होंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो

0: मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी जीवन के साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं,
1: जी
0: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी वो दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा,
1: अच्छा
0: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के ये संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ।
1: जी
0: छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: और वो इतने महान हो करके अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी
1: हैं,
0: जी हाँ जी
1: उसके बाद
0: जी
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
0: जी मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
1: जी
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरा
0: मेरे
1: गीत
0: गीत
1: अमर
0: अमर
1: कर
0: कर
1: दो,
0: दो, ये मुझे बहुत पसंद
1: बहुत
0: है
1: सुंदर,
0: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
1: आई सुन
0: जी
1: जी।

0: राइडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है, वो आपको कैसी लगी? मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं, वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो चीजें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज्यादा असर डालते हैं। साहित्य में सबसे पहले

0: की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम है मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं, कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं, ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज़ है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज़्यादा साबित करेंगी, ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
1: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
0: जी
1: बिल्कुल सही हाँ। कहा। और आपने प्रोफेसर रामेश मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां किताब के माध्यम से, इसके में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
0: जी असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियां नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय उनका बड़ा व्यापक रहा है
1: जी।
0: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आज़ादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियाँ लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खास करके स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियाँ वाकई नायिकाएँ हैं, ये योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है
1: जी।
0: जैसे उनकी एक कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो नायिकाएं आप देखेंगे उनकी जो पात्र हैं वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं हैं। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
1: बहुत सुंदर।
0: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ टिप लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि जब तक मातृशक्ति मातृ हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं, तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: जी उंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है, मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज़्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ।

0: जी
1: मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी जबरदस्त बैठ के कुछ लिखा हो। किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित करवाया है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है। ललित निबंध है और गज़लें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गज़लों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ। बाकी गीत गज़ल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीज़ें आएँ। तो सोचता ये हूँ कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ, तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
0: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
1: हाँ, पहले मैं आपको पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूँ मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल,
0: क्या बात है,
1: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका, अपने विचार व्यक्त करने का अपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर री साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: Tarán.
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बेगम अख्तर की गाई इस गजल से।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वर्षा ऋतु एल्बम से आप सुन रहे थे तलत महमूद का गाया ये गीत। रचना थी मुरली मनोहर स्वरूप की, संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। लीजिए पेश है तलत अजीज की आवाज में ये गजल। कलाम है कतील शिफाई का, मौसीकी तलत अजीज की।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबान हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबां हो गई, जो बदली तो एक दास्तां हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी नजर झुकाते नजर से देखा।
2: क्या बात है,
1: दिल एक मंदिर है तुम उसकी मूरत हो, किसी ने सच कहा तुम कितनी खूबसूरत हो, तो प्यार के मोड़ पर

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ए सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा तुम्हारा काम झूठा, तुम्हारा मैं कदा झूठा तुम्हारा जाम भी झूठा, तुम्हारी रात झूठी चांद झूठा आसमां झूठा, तुम्हारे अश्क गम झूठे तुम्हारा जख्म जहां झूठा, तुमसे बढ़ के कोई बेमुरव्वत नहीं, प्यार करने की अब हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें याद करने की जिद छोड़ दूँ।

0: मोहब्बत का दस्तूर है, हुस्न की हर अदा हमको मंजूर है। अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। किया था वादा के कल आएंगे चराग जले, और तमाम रात चरागों से दिल के दाग जले। ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, ये जितनी भी दौलत है सब तेरी बदौलत है। बराबर खफा हो बराबर मनाए, ना तुम बाज आओ ना हम बाज आए, क्योंकि भीगी जुल्फों को शानों पर झटक कर छोड़ देते हैं। बरसने वाले बादल अपना भी रुख मोड़ लेते हैं, और ये हुस्न वाले जब भी लेते हैं अंगड़ाई, तो खुदा वाले भी बरसों की इबादत छोड़ देते हैं।
1: क्या बात है,
0: याद आ जाऊं तो भूल जाया करो, अपने पलकों के मोती छुपाया करो। आंसुओं से तो सब राज खुल जाएंगे, और खयानत मोहब्बत में हो जाएगी। मेरे महबूब तुम हो अमानत।

नजर झुकाओ, हसीनों का एहतराम करो, है मेरा नाम जवानी मुझे सलाम करो, जो हुस्न चाहे तो लग जाए आग पानी में, अजी किसी हसीन को देखा भी है जवानी में, शमाने आग रखी सर पे कसम खाने को।

0: प्यार सच्चा है तो फिर तुम मुझे रुसवा न करो, चांद ऊंचा।
1: डाकू हसीना फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का रंग तिरंगे प्रोग्राम खत्म होता है।

श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार, नमस्कार विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेक लाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार

0: तर नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
1: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं, जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़। ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
0: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
1: बिल्कुल।
0: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
1: जी।
0: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
1: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
0: माना जाता है श्रोताओं की इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
0: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
2: अरे धृता जी।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
4: उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
2: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: ने कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजाधिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी,
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार है।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ, पिताजी, पिताजी। हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
4: सम्राट ने यज्ञ

0: के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
1: अच्छा पिताजी,
0: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
2: अच्छा
3: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
4: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
0: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
4: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
3: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
1: और क्या,
3: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
4: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
3: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
0: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।

0: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
1: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
0: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
2: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
3: जी पिताजी।
2: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
0: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
4: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
0: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
4: हाँ।
0: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
2: हाँ ये तो है।
3: हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
5: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: अरे सुनो सुनो कुछ कह रहे।
1: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
1: क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
4: वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
5: लगता है जीतेगा।
6: वो पहुंच गया, जीत गया, जीत गया,
7: धन्य हो धन्य हो।
8: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो चलो।
4: अरे देखो कितना अच्छा घोड़ा।
2: वाह,
4: हाँ,
2: इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
2: चलो चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
5: ये पकड़ा।
2: ये कोलाहल कैसा है?
6: छोड़ दो, छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो चलो, भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
2: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
3: क्या
2: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: हाँ, अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
2: हाँ,
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
2: हाँ,
3: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
7: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत, आवाज़ मदन मोहन की।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।

कह दो कि आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विधाता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाटकर अनवर और साथियों की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म थी जिंदगी। गृह प्रवेश फिल्म का गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज, गुलजार के बोल कनू रॉय का संगीत है।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार कनु रॉय। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इससे दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। संयुक्त घोषणा पत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव ने जयपुर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने जर्जर विद्यालय भवनों का निरीक्षण करने तथा मरम्मत निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से विद्यालयों का फील्ड निरीक्षण कर फोटो सहित प्रगति रिपोर्ट भेजने की बात कही। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जैसे अधिक वर्षा वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। राज्य में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता 2026 UCC पर आमजन से सुझाव लेने के लिए जयपुर में कल से संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। 2 दिन की ये जनसुनवाई में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। जनसुनवाई के पहले दिन जनप्रतिनिधि, विभिन्न धर्मों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, शिक्षाविद और विभिन्न सामाजिक संगठन सुझाव दे सकेंगे। अगले दिन आम नागरिकों से सुझाव मांगे जाएंगे। सरकार ने सुझाव देने के लिए UCC पोर्टल भी शुरू किया है। नागरिक व्यक्तिगत रूप से या किसी संस्था की ओर से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। गृह विभाग ने लोगों से नीति निर्माण की इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। राज्य GST विभाग ने कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जयपुर और पाली में एक समूह की 5 फर्मों पर कार्रवाई की है। विभाग के अनुसार प्रारंभिक जांच में पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 35 करोड़ रुपए की कर चोरी की आशंका सामने आई है। ये फर्म्स मेहंदी पाउडर, मेहंदी कोन, हेयर कलर और अन्य सौंदर्य उत्पादों के निर्माण और कारोबार से जुड़ी हैं। विभाग की ओर से मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से SI भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा के लिए आवेदन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के अनुसार आगामी 20 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा में मूल भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दी गई है। अभ्यर्थी 22 जुलाई तक अपने आवेदन में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। ये व्यवस्था राजस्थान उच्च न्यायालय के 2 जुलाई के अंतरिम आदेश की पालना में की गई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र

0: के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्तियां फ्रीज की हैं। पुलिस के अनुसार ये संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थी। जांच के दौरान दो आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों का वित्तीय परीक्षण किया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। सक्रिय मॉनसून में से पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी बरसात हुई। वहीं राज्य के पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक 91 मिलीमीटर बरसात चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में दर्ज की गई। इसके अलावा भरतपुर जिले के बयाना में 90 मिलीमीटर, पहाड़ी में 70 मिलीमीटर तथा धौलपुर जिले की बाड़ी और बारां के छबड़ा में 60-60 मिलीमीटर पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।
2: हीरोइन का नाम आपको पूछना है।

प्यासा फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हमारा सवाल ये था कि कौन है हीरो हीरोइन। गुरुदत्त और माला सिन्हा, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे दिया। और आज गुरुदत्त का जन्मदिन है, संजीव कुमार का भी जन्मदिन है। संजीव कुमार के बहुत सारे गाने हमने यादों के महफिल कार्यक्रम में सुनाए, लेकिन गुरुदत्त के नाम ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज उन्हें हमें याद करना चाहिए, लेकिन आज जो गाने हमने चुने हैं वो आँखों से जुड़े, लेकिन आज की इबारत में जो शब्द हैं उन शब्दों से आपको गाने चुनने हैं, तो ज़रा गाने चुनकर हमें बताते चलिएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की आँखों को पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि शब्द भले ही धोखा दे जाएं पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी से भरी आंखों में एक चमक सी होती है, उदास आंखों में नमी कुछ भारीपन होता है, मानो बिना बहे आंसुओं का बोझ उठा रही हो। कभी ये इशारों में बात करती हैं, लेकिन रहस्यमयी होती हैं वे आंखें जो शून्य में खोई रहती हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब कैसे किसी की आंखों की परिभाषा आपने समझ ली, और कब कैसे किसी की आंखों के नूर बन गए। और ये कहा जाता है ना कि अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, ख़ास तौर से अपनी संतान के लिए। तो आप बताइए, आपकी आंखों का तारा कौन है, आपका बेटा या बेटी या दोनों? और आप किसकी आंखों के तारा हैं, माता पिता, भाई बहन,

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। जानिसार अख्तर के बोलते हमने पूछा भी था आपसे सवाल, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने सही लिखा है। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म सीआईडी और देव आनंद शकीला, हमने ये भी आपसे सवाल पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि घर से किसी प्रियजन का बिछड़ना या अचानक गुमशुदा हो जाना रात भर जागने को विवश कर देता है, हर एक पल उसकी चिंता बनी रहती है, रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाता है, मन हर पल बेचैन रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वाकई बहुत ही खूबसूरत आज की इबारत है। आंखें दिल का आईना होती है, जो बात हम जबान से नहीं कह पाते वो बातें आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं। हिंदी फिल्म जगत में कुछ ऐसे बेमिसाल अदाकार हो चुके हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, गहरा दर्द हो, या फिर बिना कुछ कहे जताया गया प्यार हो। दिलीप साहब, गुरुदत्त जी, अमित जी, मधुबाला, मीना कुमारी ऐसे कलाकार थे जो उपरोक्त कही गई भावनाएं बिना कुछ बोले ही अपने आंखों से बयां कर देते हैं। वैसे आम जिंदगी में भी कुछ लोगों की आंखें बोलती हैं, कुछ लोग जो झूठ बोलने के आदि होते हैं उनकी आंखें उनकी बातें छुपा लेती हैं। तो अपनी

आंखों को पारदर्शी बनाए रखिए। फिलहाल सुनिए अनारकली फिल्म का ये गाना। अब जरा बताइए कि इसे लिखा किसने है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम।

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और फिल्म थी अनारकली। और हमने आपसे पूछा था कि आप बेटी और बेटों में से कौन आपकी आंखों का तारा है, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि बेटों से ज़्यादा बेटी आंखों का तारा होती हैं। क्या बात है भाई। और हमने आपसे ये भी अब पूछा है कि किसके लिए आप रात भर जागे, बताइए क्या आपके लिए कोई रात भर जागता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी संतान कहीं बाहर है, पढ़ाई के लिए गई है, नौकरी पेशे के लिए, तो आपकी आंखों में नींद नहीं है, चिंता में कुछ, जब ख़ास तौर से ऐसे मौसम बदलते हैं, बारिश तेज़ होती है, तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे इतनी बरसात हो रही, पता नहीं है हमारी संतान किस हाल में होगी। अब तो फ़ोन एक माध्यम है जब आप फ़ोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार रात को नींद उछड़ जाती है, आप चिंता में खो जाते हैं, कई बार बिन बात भी, बिना किसी कारण आप जागने लगते हैं। तो ऐसी जागरण वाली बातें आप बताइए, किन बातों पर आपकी नींद टूट जाती है और आप जागरण करते हैं, जागते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालात बदल बदल गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखें हर आत्मा की खिड़की होती हैं, जो हर नज़रिए से एक कहानी बयां करती हैं, दुख में ये आंखें रिसती हैं और गुस्से में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन हमें ये झूठ भी बोल सकती हैं क्योंकि ये धोखेबाज भी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत देन है आंखें इंसान के लिए, वो आंखें जिससे हम इस दुनिया को देख पाते।

आपके लिए कौन जागरण किया रात भर, फिल्म बहुरानी। गीतकार का नाम पूछिए और संगीतकार का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़।

बहुरानी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। हमारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंख की दुनिया संवेदना की दुनिया है, सुंदर मधुर जीवंत संवेदना जो हमारे मन प्राण में बसती है, अक्सर वो आंखों के रास्ते बह निकलती है, सुख या दुख आंखें बरबस छलक जाती हैं, ये संवेदना ही लय बनकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है और गीत बनकर मुखरित होती है। तभी तो शैलेंद्र जी लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई आंखियां और गुलजार तो दो कदम आगे बढ़कर आंखों में महकती खुशबू बसा लेते हैं। रचनात्मक लोग जिंदगी में डूबकर आंखों से भावनाओं का सच बयां करते हैं। आंखें दिल का आईना है और हमारी सच्ची साथी भी सुख या दुख कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही हंसती हैं। और हमने आपसे पूछा था जब बहुरानी फिल्म का गाना सुनवाया कि आप किसके लिए जागे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी माँ का ब्रेन हैमरेज हुआ था और हॉस्पिटल गई थी, तो हम पूरी रात जागे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो शब्द हैं, आंखें सपने रोशनी चमक आईना जादू चांद नयन हो सकते हैं, भी गाने भी तो सुझाते चलिए कौन से गाने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये आंखें हैं जो भरी सभा में भी बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं, बोलती हैं, नाराज़ होती हैं, रीझती हैं, खिन्न होती हैं और शर्माती भी हैं, ख़ास तौर से जब

आप इश्क में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आंखों आंखों में बातें हो जाती हैं और दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं तीसरे को पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, जब इश्क मोहब्बत में आ पड़ते हैं तो नींद भी गायब हो जाती है। तो बताइए कि क्या कभी आपकी नींद गायब हुई है किसी के लिए? सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि इसमें कौन है हीरो हीरोइन। साथ में ये भी बताइए कि कब किसके लिए आपकी नींद टूटी और आपके लिए किसकी नींद टूटी, और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया सुनील दत्त शकीला और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है, तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आँखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आंखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता

संगीता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया। जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे। गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी। इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी, किससे कहानी में रात 2 बज गए। गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पांव के पायल की आवाज़ भी न मालूम पड़े। खैर, एक श्रोता ने लिखा है कि एक रात मेरी तबीयत खराब थी, उल्टियां हो रही थी, तब मेरी बेटी सारी रात मेरे पास बैठकर जागती रही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम बच्चों के लिए तो कई बार जगे रात भर और कई बार तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो रात भर जागकर उनके ले जाने के लिए खाना बनाया ताकि वो ट्रेन और वहां जाकर घर का खाना खा सकें, और कभी किसी के इंतज़ार में भी जगे और इसलिए भी सुबह जल्दी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, बेटी परेशान न हो जाए। जब कोई आने वाला होता था तो पूरी पूरी रात इंतज़ार किया जाता था कि सुबह 6 बजे या 4 बजे ट्रेन आएगी, नींद नहीं आती थी, ऐसा भी होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी 12 गीतों की लिखी इबारत में से चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत शामिल हो गया, क्या बात है। ऐसे बहुत सारे श्रोताओं के गाने शामिल हो रहे हैं और अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसके लिए भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आंखों की महकती खुशबू गुलजार साहब महसूस करते हैं। तो सुनिए ये गाना और जरा बताइए कौन है इसमें हीरो हीरोइन। फिल्म घर, संगीतकार राहुल देवर्मन, गीतकार गुलजार, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें। हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

घर फिल्म का गाना था, हमने आपसे सवाल पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, रेखा और विनोद मेरा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तुम्हारी झील सी गहरी आंखें बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती हैं, खो जाते हैं हम इन नशीली आंखों में ऐसे जैसे कोई कश्ती समंदर में उतर जाती है। किन आंखों से आपको डर लगता है ये ज़रा बताइएगा, माँ पिता टीचर पत्नी पति या किसी दोस्त से, मतलब आंखें देखकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में अगर क्रोध दिखाई दे जाए तो बस सब काम बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा। जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली ममता निछावर करने वाली माँ ही होती है, तब भी माँ की आंखों में अगर ज़रा भी नाराज़गी दिख जाए तो बस सब कुछ मामला जैसे उलट जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से हमें कविवर बिहारी याद आ रहे हैं जिन्होंने नयन के बारे में लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मन ही मन लजियात भरे भौन में करत है नयनन ही सो बात, और ये आंखें दिल की जुबा है और भी कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त और हरफन मौला अदाकार अभिनेता संजीव कुमार दोनों का जन्मदिन है, उनको याद करके आज का सुरीला सफ़र कैसे पूरा करें। भाई उन्हें याद किया, गुरुदत्त को हमने इस कार्यक्रम में याद किया, संजीव कुमार जी को यादों की महफिल कार्यक्रम में, फिर भी इबारत की ओर आँखें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, इन आँखों के इशारे पर कई शायरों ने गीत लिखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये आँखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दरअसल आँखें ऐसी हैं कि आँखों पर अनगिनत गीत हैं, अनगिनत गाने हैं, और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं अनगिनत गाने। लेकिन अब हम नयन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नयन में डर कैसा होता है। आप अपने अनुभव बताइएगा कि किन नयनों से आपको डर लगता है।

कोहरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज़ थी। कैफी आज़मी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आँखों की बात चली है तो मैंने बहुत सी पुराने फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आँखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज़ थी, कैफी आज़मी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज़ है जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराज़गी और भी बहुत कुछ नज़र आने वाला है। पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं पर छुपाती भी बहुत कुछ हैं और कभी कभी खुशी में भी छलक जाती हैं आंखें। इन्हीं आंखों से आंसू और कभी आंसू बहाकर दिल को हल्का भी कर लेते हैं इन आंखों में निकलने वाले आंसू। बात आंसू की चली है तो चलिए अब एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। जरा आप बूझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। किन मौकों पर आपकी आंखों में आंसू आए? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खुशी का, कभी दुख का। संगीतकार का नाम भी जरा बूझिए।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब, और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया, संगीतकार मदन मोहन, आवाज़ लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आंखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी, 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में मुझे भूरी आंखों से डर लगता था, वो डरावने लगते थे लोग, माँ पापा ने समझाया तो डर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आँखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आंखों से डर लगता था, ज़रा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आंखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आंखों से बहुत डरते थे हम, और अपनी और इसके अलावा अपनी जेठानी की आंखों से भी। क्या बात है, टीचर की आंखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं।

लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वे आत्मा को खुला, आत्मा की खुला झरोखा हैं, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहां चौदहवें के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नज़ाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आंखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आंखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आप बताइए आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, गुलजार के बोल खयाम का संगीत था और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबाना आजमी, राजेश खन्ना पर्दे पर। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत, हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है। हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी गाना है और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज़ का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं। फिल्म हंसते जख्म का और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुँचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, गाने की झलक, फिल्म ऊँचे लोग, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। गीतकार और संगीतकार का नाम अगर पता है आपको तो बता सकते हैं।

0: जवाब दिया गीतकार संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफर साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों का सफर ममता दीदी के साथ सुपर फास्ट रहा, 120 की स्पीड पर चलकर उनकी प्रस्तुति बेस्ट रही। भाई अगर हम स्पीड को धीमा करेंगे तो आप सब श्रोताओं की ढेर सारी टिप्पणियां कैसे शामिल होंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा एक भी गीत।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines: India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia-India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. Monsoon covers entire country. Incessant rain affects normal life in national capital region. Uttarakhand becomes fully literate state after achieving prescribed adult literacy benchmarks under national education policy. And Indian contingent announced for Pickleball World Cup 2026 to be held in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne today, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. Both Prime Ministers delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the summit. They hailed a transformative step change in the bilateral relationship, locking in comprehensive frameworks for regional stability, energy security, and technological innovation. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the leaders signed a landmark joint declaration on defense and security cooperation, institutionalized and an annual defense ministers dialogue, and launched a unified maritime security collaboration roadmap, describing India and Australia as vibrant democracies and important ocean powers. Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Addressing the media, the Prime Minister highlighted that the relationship has entered an expansive era anchored in deep mutual trust. A major highlight of the summit was the significant momentum given to economic and trade integration.
2: Comprehensive Economic Cooperation Agreement, yani CECA, par tezi se kaam karne ka nirnay liya hai, jo dono deshon ke liye balance, ambitious aur win-win hoga. हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
1: Prime Minister Modi said India and Australia have taken a major step forward in the field of nuclear energy by signing a significant agreement that will enable the supply of uranium from Australia to India. He said the agreement will give fresh momentum to India's clean energy goals. He said strategic technology and resource security also reached new heights with the operationalization of the Australia-India Partnership on Cyber Critical Technologies and Supply Chains, AI Pacts, and a dedicated critical minerals corridor.
2: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी

0: is operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया मॉनसून पूरे देश में सक्रिय लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है एजेंडा वनडे जैसा फोकस है डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
3: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे हमारी

0: रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
0: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे।

0: और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों की संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नाव के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को, इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित

0: इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले वर्जनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: बहारें भी आएंगे। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ के भी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शकील बदायूनी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। आइए अब सुने मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना। गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतकार ओपी नैयर।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: चलना।
1: आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। ओपी नैयर का संगीत था।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
5: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
4: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारे सभी सखियों सहेलियों और सखा भाइयों को जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदल मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे।
2: एक हमारे सखी ने लिखा है कि सोशल मीडिया न्यूज समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहें और अपने कार्य करते रहें। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता
1: है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है, सही खरा बनना पड़ता है।
2: और हमारी श्रोता भाई बहन भी इतनी बड़े ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों,
2: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो
1: जी।
2: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे।
1: बिल्कुल हाँ। और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से, पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती है और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहाँ है वहीं रहें, और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनके शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो, ये सारी तो जो चीजें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते होंगे,
2: दिखते हैं ऐसे सीन। और होता यूं है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो हम मैंने जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
1: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते

0: सकते हैं, मेरे पास है ना
1: मेरा गुल्लक में
0: उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।
1: तो यानी गुल्लक हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है। भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे, बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना, ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
0: बिल्कुल, और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है, है ना? और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं। और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है। तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की,
1: जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
0: देखो अब मैं क्या कर रही हूँ।

0: सोनाली कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम चाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में,
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात, बहुत दिक्कतों भरे देखे उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लूं कंबा गांव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है दीपा। ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।
0: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है ये नृत्य है इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्मा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा जो उनके भाषा में उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
1: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे
0: जी। और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आजाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय

0: बनाया।
1: जोगती नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगती नर्तकी लेट कर केवल मुंह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। यानी शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
1: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
0: वो आगे कहती हैं इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
1: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष स्थान का संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
0: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगती नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती है कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
1: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
0: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
1: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
0: जी
1: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत, सुमधुर गीत
1: सुनते हैं। गीत

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना चल सकता है ना? ऐसा
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए एक छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी। जब वे मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देखरेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है।
0: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें?
1: हाँ हाँ।
0: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है। डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हजार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए।
1: तो गुल्लक इसलिए हमें ये संदेश मिला इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है
0: या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
1: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताज़ा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है।
0: आजकल तो बहुत अलग अलग डिज़ाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है या फला चीज मुझे

0: जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
1: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए, 10 रुपए देते थे। उन बच्चों, वो बच्चे जो हुआ करते थे, पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा, कि उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
0: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है, और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे, वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
0: बिल्कुल सही कहा, 1-1 रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
1: और दीपा ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं, और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
0: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था, हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे
1: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे खिलौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था।
0: और देखो, हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
1: एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का एक पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
0: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है, तो एक अंतराल के बाद हम
1: फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है,
1: तो सुनवाते हैं गीत।

0: हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी।

0: चार साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे। तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुँह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपए लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
1: किस तरह की परवरिश
0: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ कि मुझे ये कहना है, बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचाकर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो
0: है।
1: पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
0: कैसे कर रहे हैं।
1: एक साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
0: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती है कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशो अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है। इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे, वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली बात ही समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था और केवल भुनी हुई मूँगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था, ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है,

0: जहाँ पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करें, सोच समझ के उनसे वादा करना।
1: क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और हाँ सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
0: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं। और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहनता हूँ, पहना था जब मैं 7 साल का था।
1: यानी सर्दी के जो मोटी कोट होते हैं
0: वो भी गर्मियों में,
1: गर्मी में पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं,
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुँच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुँच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े ही दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीजों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया लिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्योहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। ऐसी भी शरारत
0: ऐसी भी शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारे एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे, मुझे भी लौटना था। बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती है तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें, भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें, वाइपर्स की जांच शुरू करें, यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें, और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमी भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें, और सबसे जरूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
0: जी,
1: तो संभल के चले, बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं।
0: तो अभी भी ये जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं।
1: तो लापरवाही ना बरते, जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
0: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना?
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहें, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टाइल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे, इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की

0: बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना? वो गजब के दिन थे।
1: चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गाँव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना? बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, सुनते हैं खुददार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। बारिश नहीं हो रही है
1: राजस्थान में? अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे दक्षिण राजस्थान में, तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया, ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह है।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी फसल अच्छी होती है।
0: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, ओके रहूंगी तेरी,
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी, बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ। ममता दीदी
0: जी, सत्यप्रकाश जी बताइए, क्या हाल है आपका? इंदौर का क्या हाल है? बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है
0: जी। क्या
1: और
0: बात है?
1: ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
0: अच्छा,
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी हाँ। रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? हाँ। और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो
0: रही है,
1: तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पर जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं और
0: बिल्कुल बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा, तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी, तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई? तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उस साइड ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है?
1: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह।
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह, और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं, हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
1: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी हाँ।
1: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के गाने?
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी, सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लगानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा,
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है। क्या बात है भाई
1: जी, बिल्कुल। और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें
0: जी जी जाता हूँ दीदी मैं। बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं।

0: तूने किसको याद किया। ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा, चोरी कभी मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंसी वारे ने घेर ले।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ, पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना। तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह आएगा ये मेरे लिए एक काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं ये।

0: एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
1: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ के कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
0: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
1: जी जी,
0: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हुई है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
1: जी,
0: तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे,
1: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
0: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और प्रकृति के विरुद्ध काम करना कहना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
1: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
1: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो। हेलो फरमाइश सुनने वाले को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
0: जी। पांडु

0: रंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते
1: मौसम
0: हैं।
1: कैसा है बम्बई में? मौसम कैसा है? इधर बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो। गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है,

0: और दिल वहां जाए तो दिल वहीं पे रुक जाने का मन करता है ना। तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हाल चाल है, त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहां के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है, कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना।
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है, ठीक है?
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए।
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है आसाम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
0: मतलब खूबसूरती का आलम है। तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए।
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ, ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए, ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा।
0: जी,
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी,
0: जी बिल्कुल
1: देखने के लिए,
0: बिल्कुल।
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या।
0: तो ये शक्तिपीठ है
1: बिल्कुल।
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू, वो नाम आपको पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी,
1: और उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया
0: राहुल देव बर्मन, तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए। तो
1: जी जी,
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरों का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूह सुल्तानपुरी
0: जी, गीतकार,
1: संगीत तैयार किया है आशीष बर्मन
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया, अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। 2-3 दिन पहले तो बहुत गर्मी थी,
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
0: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
1: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
0: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
1: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
0: अरे वाह क्या बात।
1: सारनाथ में जैसा आप जान ही रहे हैं कि अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में,
0: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है, तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: अरे वाह क्या बात।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो,
0: तो गा के सुनाइए गनवा।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
1: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा बदला, ए आर रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
0: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी जी बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है, याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका गेरा रे
0: बरेली के बाजार में। और बरेली की और कोई खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम करते हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते, क्या बनाते हैं?
1: मैम जी हम सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग पसंद करते हैं ना ज्यादातर?
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की
0: शादियों में।
1: हाँ मैम जी
0: बताएं, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातो जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। शाम के 5 बज चुके हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आदाब, खमागणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते और सबसे दिल अजीज कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रफिया खान।
1: और दोस्तों, मैं आपका रेडियो साथी कन्हैया। दोस्तों, खिड़की से बाहर झांक कर देखिए, आसमान में काले बादल घने कजरारे छा रहे हैं। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू हवा में घुल चुकी है और रिमझिम फुहारों ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है।
0: जी हाँ, सावन में पहली बारिश आ चुकी है, लेकिन इस बारिश में हमें सिर्फ सुस्त होकर पकौड़े नहीं खाने हैं, बल्कि इस गिरती हुई हर एक बूंद से अपनी रगों में नया जोश और जुनून को भरना है, क्योंकि युवाओं को उस सावन में बारिश जो तेज बरसती है, तभी तो किसी ना किसी ने खूब लिखा है कि इस सावन में ये जो बादल गरजे हैं हमें आगे बढ़ाते हैं, ये जो तूफान चलते हैं हमें लड़ना सिखाते हैं, थमना नहीं सीखें हम इस बहती हुई बूंदों से, कभी थमना नहीं सीखें हम इस बूंदों से, हम वो युवा

0: हैं जो हर मौसम में इतिहास बनाते हैं।
1: क्या वाकई दोस्तों बारिश का ये मौसम सिर्फ प्रकृति के सजने का नहीं है, ये मौसम है अपने सपनों को सींचने का। जैसे सूखी धरती पर पानी गिरते ही नई कोपले फूटती हैं, वैसे ही इस कड़कड़ाती बिजली के साथ हमारे इरादों में भी एक नई चमक आनी चाहिए। आलस को कहिए बाय बाय और उठ खड़े होइए, क्योंकि जिस तरह नदियां उफान पर होती है उस तरह इस देश के युवाओं का टैलेंट और उनकी एनर्जी भी आज सातवें आसमान पर है। आइए इसी बात पर एक और जोश से भरी पंक्तियां सुनते हैं। बिजली की कड़क में भी एक नया पैगाम छुपा होता है, जो तूफानों से टकराए वही तो युवा होता है। बरसने दो इन बूंदों को, रास्ता रोक नहीं पाएगी हमारी जिद के आगे, तो ये राह भी झुक जाएगी।
0: तो दोस्तों देखिए कि जब एक युवा जिद पकड़ लेता है, कुछ ठान लेता है, तो कोई उसको रोक नहीं पाता। जिस तरह से इन बादलों को बरसने से कोई रोक नहीं सकता, इनकी ये जो रिमझिम बूंदे हैं वो हमें बिघाई देती हैं। तो हमारे दोस्तों अपनी धड़कनों को थोड़ा थामिए, अपनी एनर्जी को सुपर हाई मोड पर डालिए, क्योंकि आज युवानी कार्यक्रम में होगी बहुत सारी मस्तानी, बारिश से भरी बातें, और एपिसोड में होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें, दिल को छू जाने वाले गाने और हमारी ढेर सारी बातें। कार्यक्रम का अगर अंत तक लुफ्त लेना है, बहुत सारी बातें जाननी है, बहुत सारी मस्ती करनी है, तो आपको कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। और फिलहाल सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: एक अच्छी नौकरी मिले, लेकिन आप जानते हैं कि आज के दौर में सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। कंपनियों को डिग्री के साथ साथ और कुछ खास हुनर भी चाहिए। वो हुनर हैं कम्युनिकेशन स्किल, यानी हमारा बात करने की तरीका और हमारी बात करने की स्किल बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल पढ़ाई में अच्छे अंक ही हमारी सफलता है। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है।
1: बिल्कुल, अगर अच्छी शिक्षा जरूरी है, लेकिन अगर हम अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं तो हमारी योग्यता लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती हैं।
0: कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब केवल अंग्रेजी बोलना नहीं है, इसका अर्थ है स्पष्ट रूप से अपनी जो बातें हैं उनको प्रोनंसिएट करना, बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करना, प्रभावशाली रूप से बिल्कुल इम्पैक्टफुल ढंग से अपनी बात को कहना, सामने रखना ताकि सामने वाला आपकी बात पर ध्यान दे, अपना ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करे, सुनने वाले को भी लगे कि हाँ, इस इंसान ने ऐसी बात कही है जो इम्पैक्टफुल है, हमें सुनना चाहिए, और परिस्थितियों के अनुसार सही शब्दों का चयन करना भी कम्युनिकेशन स्किल है दोस्तों।
1: रफिया, बिल्कुल आपने ये सही कहा। चाहे इंटरव्यू हो या नौकरी हो, व्यापार हो, अध्यापन का क्षेत्र हो, या यूं कहें कि कहीं एंकरिंग का क्षेत्र हो, हर जगह प्रभावी संवाद व्यक्ति को सफल बनाता है, और यूं कहें कि उसकी सफलता की कुंजी भी प्रभावी जो ये कम्युनिकेशन स्किल है, इसका महत्व कभी कम नहीं होता है।
0: जी, कहते हैं ना कि पहला प्रभाव ही आखिरी प्रभाव होता है। आपके बोलने का तरीका आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है जो आपको नौकरी दिला सकता है। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हैं तो टीम वर्क में भी अच्छे
1: होंगे।
0: आप आसानी से किसी भी बड़ी टीम को हैंडल कर सकेंगे, अपने काम को कर सकेंगे, अपने जो टीम होगी उसके साथ में अच्छा तालमेल बना सकेंगे। और अगर कम्युनिकेशन स्किल जो अच्छी है तो लीडरशिप क्वालिटी भी ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। सभी आपकी बात सुनने लगेंगे और सोचेंगे कि इन्होंने कहा है तो जरूर ध्यान देकर सुनना है। अगर किसी विद्यार्थी का ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नॉलेज है उसके पास, लेकिन इंटरव्यू में वह आत्मविश्वास की कमी के साथ जाता है, अपनी बात को सही तरह से नहीं रख सकता, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उसका जो चयन है उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: बिल्कुल, अभिव्यक्ति में क्या है, व्यक्ति खुद का जो विचार है वो व्यक्त कर पाता है। इसलिए विद्यार्थी को बचपन से ही पढ़ने के साथ साथ बोलने, सुनने और प्रस्तुति देने का भी अभ्यास करना चाहिए, ताकि कभी उसे इस प्रकार का सामना करना पड़े या खुद के विचारों की अभिव्यक्ति करनी पड़े तो कभी भी वह हकलाए ना या रुके ना, बिना किसी डर के वो अपने विचार व्यक्त कर सके।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी अपने करियर की उड़ान को ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं तो आज ही से अपनी सुनने की स्किल्स को सुधारें, क्योंकि जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल सकता है। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, अपनी बातों को संक्षेप में कहना सीखें। याद रखिए, आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। और बिल्कुल, ये जो बात आपने कही कि जो इंसान अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में आगे बढ़ता है वो अपने अंदर इन स्किल्स को अच्छे से विकसित कर कर सबसे आगे बढ़ सकता है।
1: लेकिन आखिर बात ये आती है कि कम्युनिकेशन स्किल विकसित कैसे करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि रोज़ अच्छी किताबें पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, और दूसरा कि आईने के सामने बोलने का अभ्यास करना।
0: जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इम्पैक्टफुल लोग जो हम समाज में देखते हैं ना, वो सभी ये प्रैक्टिस करते हैं, टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करते हैं, और इन प्रैक्टिस के जरिए चाहे वो मेंटली कभी परेशान भी हो तो भी अपनी प्रेजेंटेशन को बखूबी देते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप किसी को सुनेंगे तो पहले आप पूरी विनम्रता से उस पर ध्यान देंगे, उसके एक एक वर्ड को सुनेंगे, उसके वर्ड के जो मतलब हैं उनको जानेंगे और उसको बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
1: बिल्कुल सही। और चौथा, बोलते समय मुस्कान, विनम्रता और आत्मविश्वास बनाए रखना है।
0: बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी कि आपके उच्चारण बहुत साफ हो। जब आपके उच्चारण साफ होते हैं तो लोग आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं, आपके शब्दों को डिफाइन कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, प्रभावशाली व्यक्तित्व व्यक्ति को अच्छा सम्मान दिलाता है, उसे सुनने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है। लेकिन सबसे पहली और बड़ी बात यह होती है कि एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना होता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य का भी ध्यान रखना होता है कि कभी कभी कोई बात कह रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना और सुनकर समझना और फिर ही उसका आंसर हमें देना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसलिए चाहे आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, शिक्षक बने या व्यापारी बने, हर एक क्षेत्र में आप

0: जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बेहद काम आने वाली है दोस्तों। तो आप युवा है और युवाओं की कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो इतनी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि हर एक इंसान उनकी बात को सुने, ध्यान दे, क्योंकि जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं वो युवा हैं, वही देश को आगे बढ़ाएंगे, वो इतनी इम्पैक्टफुली जब बोलेंगे और हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे।
1: बिल्कुल रफिया, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने विचार प्रभावशाली ढंग से दुनिया के सामने रखे हैं वे समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ पाए हैं। ज्ञान के साथ अच्छा संवाद व्यक्ति को और अधिक प्रभावशील बनाता है।
0: तो सक्सेसफुल बनना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग कीजिए और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वीडियो लाइक करने के पैसे।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, युवाओं में बढ़ती उद्यमिता।
2: हाँ, लेकिन कन्हैया, ये तो बताओ कि उद्यमिता आखिर होती क्या है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि उद्यमिता का मतलब नया व्यवसाय शुरू करना है, नए विचारों को काम में बदलना और स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करना। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे उद्यमी व्यक्ति कहते हैं।
2: पहले अधिकतर युवा केवल सरकारी नौकरी के तरफ जाना चाहते थे, लेकिन आज का जो नया युवा है वो नौकरी के जगह अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, अपने गोल्स बनाता है। लेकिन आज समय बिल्कुल बदल चुका है। अब बहुत से युवा अपने स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और बहुत से युवा तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी अपने जो डेवलपमेंट है उनको आगे लाना चाहते हैं, अपने इम्प्लीमेंट्स को आगे लाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिजिटल सेवाओं और छोटे छोटे जो उद्यम हैं उनको शुरू करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। हौसलों की उड़ान कम नहीं होती, जो मंजिल पर नजर टिकाए रखते उनकी राह कभी खत्म नहीं होती। आज इंटरनेट, तकनीक और डिजिटल भुगतान ने छोटे व्यवसाय शुरू करना पहले

0: तान कम नहीं होती, जो मंजिल पर नजर टिकाए रखते उनकी राह कभी खत्म नहीं होती। आज इंटरनेट तकनीक और डिजिटल भुगतान ने छोटे व्यवसाय शुरू करना पहले की तुलना में कहीं आसान बना दिया है, लेकिन आखिर उद्यमी बनने के लिए जरूरी क्या क्या है?
1: तीन बातें बेहद जरूरी हैं। अच्छे विचार आपके होने चाहिए, मेहनत करने का जो जज्बा है ना वो आपका कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो उद्यमी होता है उसको अपने वर्क को हमेशा जारी रखना होता है और कभी भी हार नहीं माननी होती। कभी भी व्यवसाय का जो पहला दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है और उसी एक दिन को सबसे बड़ा नहीं मानना है, हर एक दिन को सबसे बड़ा मानना है। सफलता धीरे धीरे मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है दोस्तों। और बिल्कुल वही बात है ना कि असफलता भी मिलती है।
0: बिल्कुल, लेकिन असफलता से सीखकर आगे बढ़ना ही सच्चे उद्यमी की पहचान है।
1: ये बिजनेस का खेल बड़ा निराला है।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ हम हर मोड़ पर रिस्क लिए चलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हर एक ताले की नई चाबी हमें बनानी पड़ती है। कभी क्लाइंट्स रूठ जाते हैं, कभी मार्केट जो होता है वो मंदा चल रहा होता है, पर रिस्क है तो बिजनेस है, और रिस्क नहीं होगा तो फिर हम उसे बिजनेस ही क्यों कहेंगे। अब आप समझिए ना कि जितना भी आप लड़ेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे और समुन्दर को पार कर देंगे। ना मशीनरी पर आप भरोसा कर सकते हैं, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, कोई बैकअप प्लान अगर आप रखेंगे, फिर भी अगर ऐसा हुआ कि वो बैकअप प्लान भी फेल हो गया तो आपका हौसला जो है वो टूटता सा नजर आएगा। लेकिन जो हौसला है उसे अपनी जेब में रखिए और दिमाग को रखिए अपने विजन पर। रिस्क को अपनी जो सीढ़ियां हैं वो बना लीजिए और डिसीजन मेकिंग अपनी स्ट्रांग कर लीजिए। मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, नुकसान होता रहेगा लेकिन अपने आप को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना एक बिजनेसमैन की पहचान होती है।
0: बिल्कुल, में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जैसे डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सेवाएं, और डेयरी और कृषि के क्षेत्र में भी आज के युवा काम कर ही रहे हैं, और हस्तशिल्प जैसी कलाएं, और फूड बिजनेस से लेकर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन तक आज के युवा कई क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और कर भी रहे हैं।
1: बिल्कुल, अगर किसी के पास बहुत अधिक पूंजी नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, तभी आप छोटे स्तर पर बिजनेस तो शुरू कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपकी ईमानदारी है और आपके जो नए नए रिवोल्यूशन वाले आइडियाज हैं वो आपको लेकर जाएंगे आगे। क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। भाई, अगर आपके पास में एक अच्छा दिमाग है और अच्छे अच्छे विचार उसके अंदर आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपके पास हैं, तो आप देश को भी आगे लेकर जाएंगे, अपने बिजनेस को भी आगे लेकर जाएंगे और पूंजीपति आप खुद ही बन जाएंगे।
0: हाँ दोस्तों, अगर आप भी विद्यार्थी जीवन में हैं तो अभी से नई चीज़ें सीखने की आदत डालिए, नया हुनर सीखिए और अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट कीजिए, ताकि स्किल कभी भी आप बेरोजगार से बचा सकती हैं। यूँ कहिए कि स्किल हमेशा व्यक्ति के जीवन में काम आती है, आप सफल हुए तो भी और असफल हुए तो भी।
1: तो दोस्तों, नई तकनीकें सीखें, कंप्यूटर का ज्ञान बढ़ाइए, भाषा के जो काम है उसको सीखिए, जितनी भी समस्याएं हैं, लेकिन उनके लिए आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोज लेंगे। और याद रखिए, उद्यमी वही बनता है जो कि रिस्क लेना जानता है, रिस्क को अपने जेब में लेके घूमता है और अपने आइडियाज़ को आगे तक लेकर जाता है। हर युवा का सपना होता है नौकरी पाने का, लेकिन कुछ युवाओं का सपना होता है नौकरी देने का। तो अगर आप नौकरी देना चाहते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए और बिजनेस को आगे बढ़ाइए। जब युवा उद्यमी बनते हैं तो केवल अपना भविष्य नहीं बनाते, बल्कि अपने अपनों का भी और अपने देश का भी भविष्य बनाते हैं, देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं, और ये बेहद जरूरी है दोस्तों।
0: बिल्कुल, होता है देश का भविष्य होता है, और यूं कहें कि देश का जो पावर होता है वो युवाओं के पास होता है। युवा व्यक्ति चाहे जो कर सकता है, और भारत की बात करें तो भारत तो युवा राष्ट्रों में से एक है। तो दोस्तों, आप भी उद्यमी बनिए, सफल होइए, दूसरों को भी रोजगार दीजिए और खुद भी आगे बढ़िए। दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं रोज किसी न किसी युवा से की गई भेंटवार्ता की ओर। तो इसी क्रम में चिराग रहे युवा में हम आप तक पहुँचाएंगे तरमीम खानम से रफिया की बातचीत,
1: तो लीजिए सुनिए।
2: नमस्कार दोस्तों, चिराग जल रहे हैं युवा डायरी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे झालावाड़ में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और मॉनसून आ चुका है। बादलों की गरज आजकल हमें सुनाई देती है, ठंडी हवाएं हमसे टकराती हैं और धीरे धीरे आप देखिएगा कि हरियाली हमारे चारों ओर फैल जाएगी और सुकून भरी बूंदे जो है वो हमें अभी आनंद दे रही है। मौसम खुशहाल है और एक नया उत्साह लेकर आया है, लेकिन साथ ही में मॉनसून लेके आता है कई सारी बीमारियां, मलेरिया, टाइफाइड, फंगस इन्फेक्शन, वायरल बुखार और उल्टी दस्त डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों, मॉनसून का पूरा लुत्फ उठाते हुए हमें किस तरह से अपना हाइजीन रखना है कि हम इस मॉनसून को बड़े खुश मिजाज होकर जिएं और इसका पूरा मजा उठाएं, ना कि हम किसी बीमारी से इफेक्ट होकर इसके मजे को किरकिरा कर लें। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है,

0: के बारे में हमें जानना तो बेहद जरूरी है। तो इसीलिए आज हम एक ऐसी युवा साथी से जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं जो हमें बताएंगी कि किस तरह से इस मानसून के सीजन को हम खुलकर जिएंगे और सारी बीमारियों के खतरों से बचते हुए जिएंगे और इसे एंजॉय करेंगे। इस खास इंटरव्यू में हम बात करेंगे घर में हाइजीन और आसपास की सफाई का ध्यान रखते हुए कैसे बीमारियों से बचते हुए हम मानसून का मजा ले सकते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ हैं एक युवा साथी। नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, मेरा नाम तरमीम खानम है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने एजुकेशन में बीएड कर रखा है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मानसून में किस तरह से हाइजीन को मेंटेन करें, अपने आसपास सफाई रखें और बीमारियों से बचते हुए मानसून का मजा लें।
0: तो मैम, मानसून का आगमन हो चुका है, अब घर में मानसून के आगमन के बाद कैसा महसूस हो रहा है और इस समय स्वच्छता का महत्व क्यों बढ़ जाता है, इसके बारे में हमें बताइए।
1: मैम, मानसून हमारे जीवन में आया है जो कि उत्साह और हरियाली साथ में लाया है, लेकिन मानसून के साथ साथ सिर्फ उत्साह नहीं आता बल्कि बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। ऐसे समय में हम अपनी हाइजीन और आसपास की सफाई का ध्यान रखेंगे तो हम ऐसी बीमारियों से बच।
0: घर की सफाई के लिए मानसून में कौन कौन सी खास सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: फर्शों दीवारों को नियमित रूप से साफ करें और नालियां साफ रखें, फर्नीचर को सूखा रखें, कीटाणु नाशक इस्तेमाल करें, खासकर बाथरूम और किचन में।
0: जी मैम, उनकी जो सफाई है इसका खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है क्योंकि इसके वजह से हम अगर किचन का ध्यान रखेंगे तो पेट संबंधी बीमारियों से बचेंगे और अगर बाथरूम को क्लीन रखेंगे तो त्वचा के जो इन्फेक्शन है और जो फंगस इन्फेक्शन हमें हो सकते हैं उनसे हम बच सकेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता का हम मानसून के सीजन में किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में बताइए।
1: सबसे पहले तो आपको कुछ खाने पीने से पहले बार बार साबुन से हाथ धोने और बाहर से आए तो फिर कपड़े वगैरह चेंज करने और हाथ मुंह धोना है, और अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो सूखे कपड़े पहनिए, अपने नाखूनों को साफ रखें, छोटा रखें और गीले जूते और मोजे ना पहनें। इस तरह से आप बारिश के मौसम में अपना सेल्फ हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं।
0: जी, अब हमें बताइए कि मानसून में सबसे आम बीमारियां कौन सी है मैम, इसके बारे में बताइए।
1: मानसून में सबसे आम बीमारियां डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, वायरल बुखार, दस्त, फंगल स्किन इन्फेक्शन, सर्दी खांसी और आंखों के संक्रमण है।
0: इस मानसून के सीजन में मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियां आपने बताई भी, तो मच्छरों से इस मौसम में किस तरह बचा जा सकता है?
1: घर के आसपास जो पानी जमा हो जाता है उन्हें जमा होने ना दें, बार बार साफ करें और घरों में मच्छरदानियां लगाएं, फुल स्लीव्स कपड़े पहने और कॉइल का इस्तेमाल करें अगर आपको जरूरत पड़े तो।
0: जी बिल्कुल, और इस तरह से आप मच्छरों से बच सकते हैं और मच्छरों के साथ आने वाली कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। अब पीने का पानी भी आजकल बहुत खराब आ रहा है, बहुत ज्यादा गुदला पानी आता है और हार्ड वाटर आता है, तो ऐसे पानी के वजह से हमें पेट संबंधी समस्याएं हो रही हैं और हमारे अभी आसपास देखने में भी आ रहा है कि बहुत सारे लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हो रही है, पेट खराब हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए?
1: जो पानी हमारे घर में सप्लाई होता है वो अभी अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हमें पानी को हमेशा उबाल कर और फिल्टर कर ही पीना चाहिए और बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करें और स्ट्रीट वेंडर्स से पानी न पिए और आप फिटकेट से भी पानी को क्लीन कर छान कर पी सकते हैं।
0: जी, एक उपाय है जैसे कि फिटकरी वगैरह, ये बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ है जिससे कि हम खान पीन को सही रख सके और इन बीमारियों से बचें।
1: स्ट्रीट फूड और जंक फूड से बचें, ताजा और घर का बना खाना खाएं, फल सब्जियां अच्छे से धोकर या छीलकर खाएं और दही विटामिन सी युक्त फल लें।
0: जी बिल्कुल, ऐसे मौसम में हमें खाने से बचना चाहिए। के पीना चाहते हैं तो बाहर हम कैसे फूड पर भरोसा कर सकते हैं कि वो सफाई से बना होगा, ऐसे मौसम में, और अगर सामने वाले ने सफाई से बनाया भी है तो जो इन्फेक्शन का और जो बीमारियां फैलने का जो खतरा है वो इस मौसम में बड़ा बढ़ा हुआ होता है, इंक्रीज्ड होता है, तो उससे बचने के लिए हमें बाहर का फूड अवॉइड कर देना चाहिए और अवॉइडेंस सबसे आसान तरीका है इन बीमारियों से बचने का भी। इसके बाद में भीगने के बाद अगर कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करें?
1: सबसे पहले तो आप अपने को सूखा रखें, अपनी हाइजीन मेंटेन करें और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है या इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें।
0: तो मैम, ये सेल्फ हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, बाहर के गंदे खाने से या इन्फेक्टेड खाने से कैसे बचना है और अपने आप को डिहाइड्रेशन से और पेट संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे बचाना है, घर की आसपास की सफाई कैसे रखनी है, अब हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तो मामला यहाँ गड़बड़ा जाता है, तो किस तरह से मानसून में हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं जिससे कि हम सभी बीमारियों से रेजिस्टेंस रहें और बच सकें?
1: सबसे पहले तो आप संतुलित भोजन लें, संतुलित आहार लें, विटामिन सी जैसे नींबू, संतरा वगैरह, जिंक युक्त भोजन खाएं, व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और गर्म तरल पदार्थ, हर्बल टी, सूप वगैरह पिएं। इस तरह आप मानसून में अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रख सकेंगे, अपनी हेल्थ कंडीशंस को सुधार सकेंगे और बहुत सारी बीमारियों

0: भी बच सकेंगे और इस तरह से आप इस साल के मॉनसून का पूरी तरह से लुत्फ उठा सकेंगे।
1: जी मैम, आप हमारे युवाणी कार्यक्रम से जुड़ी और चिराग जल रहे हैं युवा डायरी को आपने रोशन किया और हमारे साथियों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बताई, जिससे वो मॉनसून के सीजन में बीमारियों से दूर रहते हुए मॉनसून को एंजॉय कर सकेंगे। इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे आकाशवाणी झालावाड़ के जरिए युवा वाणी और युवा साथियों से जुड़ने का मौका दिया।
1: जी मैम धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार। तो दोस्तों, अभी रात जल रहे हैं युवा डायरी के जरिए एक युवा साथी से रूबरू हुए।
2: बिल्कुल दोस्तों, आपने सुनी एक भेंट वार्ता जिसमें आपको बहुत ही अच्छी और प्यारी जानकारी साझा की गई है।
1: तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां एक ही पहाड़ी हो, करोड़ों सिर्फ मूर्तियां हो, यानी कि एक पहाड़ी और बहुत सारी मूर्तियां, और सबसे बड़े रहस्य यहां पर छुपे हुए हो? कब और क्या बना यहां पर, इसका जवाब हमारे पास नहीं। इसका जवाब इतिहास के पन्नों में खो है, और आज इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए वातायन के इस खिड़की को खोलकर हम चलने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत के खूबसूरत राज्य त्रिपुरा में। अब आप सोचिए कि कहाँ हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और किस जगह पर हैं बहुत सारी मूर्तियां, तो बताइए जरा कि आज वातायन की खिड़की को खोलकर हम कहाँ जा रहे हैं।
2: बिल्कुल, चट्टानों पर उकेरी गई सदियों पुरानी कहानी सुनाती है शिव भक्त की निशानी। समय भी जिसके आगे ठहकर नतमस्तक होता है, वो अद्भुत धरोहर है हमारी उनाकोटी। तो रफिया जी, उनाकोटी नाम अपने आप में बड़ा रोचक है, इसका अर्थ क्या है इसके बारे में हमारे दोस्तों को अवगत कराना है।
1: उनाकोटी का एक जो शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ से कम यानी 99 लाख और 99 हजार और 999 मान्यता है। यहाँ इतनी ही पत्थर है और इतनी ही सारी मूर्तियां हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है उनाकोटी।
2: इन मूर्तियों को किसने बनाया ये हमारे सामने आता है और हमारे युवा साथी है वो भी सुन रहे हो। सबसे बड़ा जो प्रश्न है उनके दिमाग में भी ये आता होगा कि जो 99,99,999 मूर्तियां हैं, आखिर इनका निर्माण हुआ कैसे होगा या इसे बनाया किसने होगा?
1: तो कन्हैया, ये सबसे बड़ा रहस्य है। इतिहास मानना है कि यहाँ की विशाल शिल्प कलाएं लगभग 7वीं सदी 9वीं शताब्दी से भी पुरानी है और इन्हें तब बनाया गया है। इन्हें बनाने वाले कलाकारों के बारे में कोई निश्चित जानकारी है ही नहीं, क्योंकि वो वक्त ऐसा था तब हम में से कोई नहीं था और ये रिसर्चेस भी करना मुश्किल है। और मैंने तो सुना है कि भगवान शिव की विशाल आकृतियां भी यहाँ पर हैं।
2: बिल्कुल, यहाँ चट्टानों पर उकेरी गई भगवान शिव की लगभग 30 फीट ऊंची विशाल मुखाकृति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं और अन्य पौराणिक आकृतियों को भी अनेक शिल्पकृतियों को देखने को मिलती हैं। इस स्थान से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है जिसे हम हमारे दोस्तों तक सुनाएंगे।
1: हाँ, लोक कथा के अनुसार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ कहीं जा रहे थे। सभी ने यही विश्राम करने का फैसला लिया। शिव जी ने सुबह सूर्य उदय से पहले चलने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं जागा। तो भगवान शिव अकेले ही आगे बढ़ गए और समय जो लोग बच गए थे वो वहीं रह गए और वो मूर्ति बन गए। क्योंकि 1 करोड़ से अधिक कह रहे हैं, इसलिए शिव जी ने आगे बढ़ना सही समझा। इसलिए यहाँ 1 करोड़ से कम यानी 1 मूर्ति कम रह गई है, क्योंकि शिव जी तो आगे बढ़ गए थे ना, तो इस स्थान का नाम उनाकोटी पड़ा, यानी कि 999 वाली बात यहाँ पर सिद्ध होती है।
2: जी, चाहे यह लोक कथा हो या इतिहास, लेकिन यह स्थान भारत की अद्भुत कला, संस्कृति और आस्था का अनमोल प्रतीक है। पत्थरों में भी जहाँ इतिहास सांसें लेता है, शिल्प अपने भीतर एक युग समेटा रहता है, वो कोई साधारण धरोहर नहीं, आस्था की ज्योति है। भारत के पूर्वोत्तर का अनमोल रत्न हमारी उनाकोटी है।
1: तो दोस्तों, उनाकोटी के बारे में आप जान चुके हैं वातायन के जरिए, और अगर आप इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अपना बैग पैक कीजिए, त्रिपुरा की तरफ निकल जाइए, और यहाँ की जो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी कला है, वो आपका वेट कर रही है। जब आप कहीं जाएंगे, युवा हैं तो वहाँ को एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने से, जगहों को घूमने से ही हमें एक रियल एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है। तो दोस्तों, जाइए उनाकोटी, और फिलहाल सुनिए ये प्यार सा दिल लुभाने वाला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ रफिया खान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके कल की, नहीं नहीं आने वाले कल की, यानी संडे की नहीं, उस कल की जब हमारे सिर के बाल जो है वो सफेद हो जाएंगे।
4: जी बिल्कुल, बचत की आदत अपना लो यार, यही बनती है मुश्किल वक्त की डाल हर बार।
3: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम के जरिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि एक बार रामू जी थे, वो एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय की तरह काम करते थे। उम्र थी उनकी 22 साल उस समय। रोज सुबह रात तक बाइक दौड़ाते थे और पार्सल पहुंचाते थे और सभी से मिलते थे, प्यार से बोलते थे, अपने जो शौक थे उन्हें भी पूरे कर रहे थे। तभी उनकी जो कमाने की उम्र थी वो ख़त्म हो गई। अब क्या करें, अब उस दिन जो रामू जी थे उनकी उम्र हो गई थी 65 और उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह भारी भरकम केतली उठा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। रामू ने किसी से पूछा कि काका उम्र में आराम क्यों नहीं करते, तो रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा जवानी में जो कमाया वो खाया, अब बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें लगा दिया था सब कुछ, बुढ़ापे के लिए कुछ बचाया है नहीं हमने, तो अब क्या किया जाए, चाय ना बेचूं तो क्या करूं, चूल्हे ना जलाऊं तो क्या करूं। अब सोचिए दोस्तों कि ये कितनी बड़ी समस्या है।
4: बिल्कुल रफिया, ये कहानी किसी एक रामू की नहीं है बल्कि हमारे देश के बहुत सारे रामू की है। बचत जो आज व्यक्ति नहीं करता है उसे कल जाके पछताना पड़ता है। आज जो बचाए हैं वही कल काम आएगा। समय का पहिया है, हर किसी को आजमाएगा।
3: लेकिन रामू की जो ये चिंता है ना, इसका समाधान हमें मिल चुका है।
4: जी।
3: भारत में एक बेहतरीन स्किल यानी कि स्कीम आई है, अटल पेंशन योजना यानी कि APY। ये एक ऐसी सरकारी योजना है जो कि असंगठित क्षेत्र के जो बुढ़ापे वाले लोग हैं, जो कि बूढ़े हो चुके हैं, उनको आय की गारंटी देती है। अब आप सोचिए कि इस योजना के फायदे कौन कौन उठा सकते हैं, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं।
4: बिल्कुल, इसकी उम्र की सीमा है, इसमें 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल का इसमें व्यक्ति उम्र का होना चाहिए। बैंक खाता जो आपके किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट आपका होना जरूरी होता है, और मोबाइल नंबर जो आजकल हर किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध होते हैं यह आपके पास होने चाहिए। साथ ही आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए।
3: तो दोस्तों, ध्यान रहे कि जो सरकारी नियम है उसके अनुसार इनकम टैक्स आप भरते हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि ये जो योजना है ये उन लोगों के लिए है जिनकी जो नौकरियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं, उनको आगे बढ़ना है और अपने बुढ़ापे को सुकून से जीना है और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को संभालते हुए आगे बढ़ना है। ये मुख्य रूप से ऐसे भाई बहनों के लिए है जो टैक्स नहीं देते हैं।
4: बिल्कुल, आज जो थोड़ा थोड़ा बचाओगे कल मुश्किलों से मुस्कुरा कर निकल जाओगे। बचत सिर्फ पैसे नहीं भरोसे की पहचान है, यही उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी शान है।
3: तो दोस्तों, आज ही इस योजना से जुड़िए। महीने में चुनी गई जो ये योजना है ये आपको 1,000 से 5,000 तक की जो पेंशन है उसकी गारंटी देगी। और इसमें आवेदन कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं कि आप सीधे उसी बैंक के जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जा सकते हैं या

0: बैंक के में आपका खाता खुला हुआ है वहां पर जा सकते हैं, अटल पेंशन योजना का जो फॉर्म है उसे भर सकते हैं, अपना नॉमिनी का नाम भी उसमें भरना होगा, पेंशन के लिए जो आपको अमाउंट चुनना है वो भी उसमें आपको लिखना होगा और आपका खाता खुल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं
1: तो बिल्कुल अपने बैंक के ऐप में लॉगिन करें, वहां सोशल सिक्योरिटी स्कीम या गवर्नमेंट स्कीम के सेक्शन में जाकर घर बैठे अटल पेंशन योजना डिजिटल फॉर्म भी भर सकते हैं दोस्तों।
0: तो बस एक बात याद रखिए साथियों, इस योजना का जो पैसा है हर महीने आपके बैंक अकाउंट में सीधे आ जाएगा, ऑटो डेबिट यानी कि आपसे कट लिया जाएगा, इसलिए इनके खाते में हमेशा बैलेंस रहना जरूरी है। जब आप इस योजना में आवेदन करें तो मेक श्योर करना है कि आपके खाते में पैसा हो, पूंजी हो। हमारे रामू तो सिर्फ 210 रुपए प्रति माह कमाते थे तो उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर वो भी ये करते तो 7 रुपए रोज उनके बैंक खाते से काट लिए जाते और किसी ना किसी तरह का जो फायदा है वो उन्हें मिल ही जाता। तो दोस्तों सोचिए नहीं, जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं वो सुन रहे हैं तो इस योजना का फायदा उठाएं, और जो लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं जुड़ें, और अगर ये जानकारी किसी तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप युवा हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि ये जानकारी आप आगे कन्वे करें, लोगों तक पहुंचाएं। और फिलहाल सुने ये प्यारा सा गीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स

0: भी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम में फिर से स्वागत है दोस्तों आपका। हर दिन होता है खास, क्योंकि हर दिन का होता है अपना एक अलग ही इतिहास। 1969 में दोस्तों भारत सरकार द्वारा शेर को घोषित किया गया था, जो बाद में 1972 में बाघ को यह दर्जा दिया गया है।
2: तो दोस्तों 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना हुई थी। अब देखिए कि ये जो घड़ी की सुइयां है ना दोस्तों, तरफ इशारा करने लगी है कि आपका और युवानी का जो कार्य सिलसिला है और जो साथ वो आज के लिए यहीं तक था। तो दोस्तों आप घर में हैं तो अपना ध्यान रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, बाहर हैं तो भी हाइड्रेटेड रहिए, और अगर भीग जाते हैं तो फौरन से अपने कपड़ों का इंतज़ाम रखिए, सूखे कपड़े पहनिए, क्योंकि कई सारे स्किन इन्फेक्शंस हैं, कई सारे फंगस इन्फेक्शंस हैं जो आपके स्किन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। और हाँ, मौसम ठंडा ज़रूर हुआ है लेकिन डिहाइड्रेशन का ख़तरा जो है वो अभी भी आपके सर पर मंडरा रहा है, इसलिए आपको मौसम के ये जो चकमा है ना उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। आपको समझना है कि पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, अपनी स्किन को हेल्दी रखना है और अच्छे काम करते रहने हैं, और इस मॉनसून के मौसम में आपको रुकना नहीं है, रहना है।
1: बिल्कुल सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए हमारे इस युवाणी कार्यक्रम को सुनते रहिए रोज इसी समय पर। तो दोस्तों अब दीजिए कार्यक्रम समाप्ति की इजाजत आपके अपने रेडियो साथी कन्हैया को
2: और अपनी साथी रफिया को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी झालावाड़ का। ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। अब समय आपको हमारे शेष कार्यक्रमों से अवगत कराने का।

किसान भाइयों के लिए किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7 बजे से 7:25 तक। इसमें किसान भाई भाग ले सकते हैं एक प्रायोजित कार्यक्रम जो सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा। इसका हमारा विषय होगा बुवाई पूर्व बुवाई उपरांत खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान देने के लिए हमारे पास विशेषज्ञ रहेंगे जो है कृषि अनुसंधान उप केंद्र खानपुर से कपिल कुमार नागर। साथ ही आप मौसम बाजार का भाव समर्थन मूल्य इनके बारे में भी जानकारियां ले सकते हैं। किसान भाइयों के लिए एक डबल डोज यानी कि एक और कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे कृषक चौपाल जो कि उसका प्रसारण समय रहेगा 7:35 से 8 बजे तक। इसमें चर्चा का विषय होगा फसल विविधीकरण वर्षा ऋतु में मौसमी सब्जियों की उन्नत खेती। इस विषय पर आपसे भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी गोविंद नागर से जो कि कृषि अधिकारी हैं कृषि विभाग झालावाड़ में। साथ ही आप जानकारी की बातों में आप सुन सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी आपको कई रोचक जानकारियां इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाएंगी।

एक विशिष्ट प्रसारण के अंतर्गत 7:25 से 7:35 तक न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त के साथ विशेष साक्षात्कार का प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे।

सबरस कार्यक्रम 9 बजे से 9:30 तक, और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। आपसे कुछ समय पश्चात 6:05 से 6:30 तक, और रात्रि 8:15 से 8:45 तक। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8 बजे से 8:15 तक।

आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में इस समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस

0: नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर फिल्म संगीत। दोस्तों, फिल्म संगीत कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज 9 जुलाई है। आज हमारे एक बेहतरीन कलाकार जो हमारे बीच में नहीं है उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, वो हैं हरी भाई। शायद हरी भाई के नाम से आप ना जानते हों, असली नाम हम उनका बताएं, असली नाम तो हरी भाई, लेकिन जो फिल्मी नाम था वो था संजीव कुमार। दोस्तों, वो भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से वो एक थे और अपने 25 साल के कैरियर में उन्होंने शोले फिल्म में ठाकुर और कोशिश के गूंगे बहरे व्यक्ति का एक ऐसा किरदार निभाया और दोनों में उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। तो आइए हम इन्हीं की फिल्मों के गीत आज हम आपको सुनवाएंगे। शायद ये उनके जन्मदिन पर हम आपको उनको याद करते हुए ये गीत आपको सुनवाएंगे।
2: बरसों बाद खेलने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
3: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
2: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
3: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारे शॉल कहाँ है?
2: भूल गई। ना ना,
3: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

दोस्तों, संजीव कुमार ने अपना फिल्मी कैरियर 1960 में हम हिंदुस्तानी फिल्म में मात्र 2 मिनट की छोटी सी भूमिका से शुरू की और वर्ष 1962 में राशि प्रोडक्शन की आरती के लिए उन्हें स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन वो पास ना हो सके। उसके बाद उनकी कोशिशें जारी रही और मेहनत के जरिए उन्होंने सन 1965 में फिल्म निशान में काम किया और सन 1960 से सन 1968 तक संजय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म हम हिंदुस्तानी, उन्हें जो भूमिका मिली थी उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। 1968 में जो शिकार फिल्म आई उसमें पुलिस ऑफिसर की भूमिका में ये दिखाई दिए। ये फिल्म पूरी तरह तो धर्मेंद्र पर केंद्रित थी, लेकिन संजीव कुमार ने भी अपना अभिनय का पूरा सिक्का उनके सामने मनवाया और एक दमदार अभिनय कर सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। सन 1968 में फिल्म आई संघर्ष, जिसके साम फिल्म संगीत उनके सामने थे दिलीप कुमार, लेकिन संजीव कुमार ने अपनी छोटी सी भूमिका में के अंदर भी काफ़ी वाही वाही लूटी। उसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंक, संत काम, अनोखी रात, इन फिल्मों में कामयाबी मिली। अब धीरे धीरे करते करते, कोशिश करते करते सन 1970 आया और फिल्म उनको मिली खिलौना, और उसके अंदर उन्होंने जो एक्टिंग की छाप छोड़ी वाकई अमर कर गई।

दोस्तों खिलौना फिल्म के बाद उनकी जो अंदर में जो भूमिका उन्होंने निभाई थी उसमें उन्होंने अपनी अलग ही पहचान बनाई और उसके बाद वो रुके नहीं। सन 1972 में फिल्म आई थी कोशिश। उनके अभिनय का एक नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला। फिल्म में गूंगे की भूमिका निभाना और किसी भी अभिनेता के लिए बड़ी चुनौती थी और बगैर संवाद बोले सिर्फ आंखों और चेहरे के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना, ये अभिनय सिर्फ संजीव कुमार ही कर पाए और कोई ना कर पाया। दोस्तों एक फिल्म उनकी आई थी नया दिन नई रात। इस फिल्म में तो आप मान लें कि जो रतन होते हैं, हम कहते हैं नौ रतन या नौ रंग, तो उन्होंने विभिन्न कलाओं में अलग अलग रूप में 10 कलाकारों का 10 अलग अलग उनकी वेशभूषा के अंदर अलग अलग रूप के अंदर उन्होंने अपना एक रंग दिखाया। शायद ये कारनामे भी श्री हरि भाई या संजीव कुमार ही कर पाए और कोई ना कर पाया। 70 के दशक में उन्होंने गुलजार के साथ काम किया और उनके साथ कुल 9 फिल्में जिनमें आंधी, मौसम, अंगूर, नमकीन ये फिल्में प्रमुख हैं। सन 75 में फिल्म शोले में एक रोल था इनका बलदेव सिंह ठाकुर, जो अभी तक मशहूर है। और फिर जिंदा दिली का निशानी पे जो इनका एक रोमांटिक गीत है मनचली, सीता और गीता, ये उनका जिंदा दिली का एक फिल्में थी। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों 20 वर्ष की आयु में ही एक गरीब मध्यम वर्ग के युवा ने कभी भी छोटी भूमिकाओं से कभी परहेज नहीं किया। संघर्ष फिल्म में दिलीप कुमार की बाहों में दम तोड़ने का दृश्य इतना शानदार किया कि खुद दिलीप कुमार भी सकते में आ गए। स्टार कलाकार होने के बावजूद भी कभी नखरे नहीं किए। उन्होंने जया बच्चन का ससुर, प्रेमी, पिता और पति की भूमिकाएँ भी निभाई। और जब सलीम खान ने फिल्म त्रिशूल के लिए अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता का भूमिका भी देने का आग्रह किया तो उन्होंने बेझिझक ये भूमिका स्वीकार की और इतने शानदार ढंग से निभाई कि उनको ही उस फिल्म में केंद्रीय कैरेक्टर मान लिया गया। हरि भाई ने 20 वर्ष की आयु में एक वृद्ध आदमी का ऐसा जीवंत अभिनय किया, उसे देखकर पृथ्वीराज कपूर भी दंग रह गए थे। तो दोस्तों, हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में हम संजीव कुमार के बारे में इतना कुछ तो नहीं बता सकते, सारी जीवनी के बारे में कुछ अंश हम आपको सुना पाए। यही उनके प्रति हमारे लिए प्यार, आदर, ये चलता रहेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। 6:30 होने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में अगले कार्यक्रम होंगे।
1: बिल्कुल नहीं, डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD Free Dish।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच मेलबर्न में वैश्विक शिखर वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साझेदारी के नए युग की शुरुआत बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों को कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन के एक सप्ताह के भीतर प्रदेश भर में छाया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर खुशी जाहिर की है। आज मेलबर्न में शिखर सम्मेलन के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आपसी विश्वास के नए और व्यापक युग में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए सहयोग को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के सहयोग को नई ऊंचाई मिली है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय की नई शाखाएं बेंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर वैश्विक समाधान निकाल सकते हैं।
1: एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं।
0: श्री मोदी ने मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आज का भारत विकास और प्रगति में विश्वास रखता है।
1: भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवे लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बढ़ रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें राजस्थान सहित सीमा से जुड़े विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी सम्मेलन में मौजूद रहे। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा, घुसपैठ और अवैध प्रवासन, अपराधों पर लगाम और आबादी बदलावों की जानकारी के लिए ये सम्मेलन रखा गया। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रोन से उत्पन्न खतरों पर अंकुश लगाने के उपायों पर भी मंथन किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और कारणों की पहचान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसी पृष्ठभूमि में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने एआई पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात कही है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि एआई का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता, दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस मौके पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि भारत वर्तमान में लगभग आधे वैश्विक क्षमता केंद्रों की मेजबानी करता है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि लोगों के प्रयासों से मिली है। कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत अब तक देश भर में किसानों को 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता मिली है, जिनका मूल्य करीब 9,400 करोड़ रुपए से अधिक है। कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन साल 2014-2015 में शुरू किया गया था। इसमें फसल उत्पादन चक्र के दौरान खेती किसानी के लिए मशीनों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा मेडिकल कॉलेज में कॉटेज वार्ड का शिलान्यास किया। उन्होंने नवनिर्मित पीजी हॉस्टल का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री बिरला ने कहा कि कोटा मेडिकल कॉलेज में कई बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और आने वाले 2 सालों में इसे बेहतरीन संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कॉटेज वार्ड की सुविधा से उन मरीजों को काफी राहत मिलेगी जिनका लंबे समय तक इलाज चलता है।
2: कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मरीज लंबे समय के लिए इलाज कराने आते हैं और जिनको लंबे समय इलाज की आवश्यकता पड़ती है, उन मरीजों के लिए 90 कमरों का क्यूबिकल और कॉटेज वार्ड बनेगा, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी लंबे समय इलाज करने की सुविधा यहाँ पे हो। और उसके साथ आने वाले समय के अंदर इस चिकित्सा परिसर के अंदर जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बना गई है, ताकि ये वातावरण भी यहाँ पे स्वच्छ रहे, हरा भरा भी रहे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की आज बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कर चोरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। इस बीच प्रदेश में कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज कई फर्मों के ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की गई। राज्य जीएसटी और वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से पाली के सोजत में मेहंदी कारोबार से जुड़े समूह पर यह कार्रवाई हुई। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए की कर चोरी की आशंका है। प्रदेश में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। अब तक 38 लाख से ज्यादा लोगों को इन शिविरों से फायदा पहुंचा है। इसी कड़ी में बालोतरा के खारी गांव के शिविर में एक ही परिवार के 53 खातेदारों के बीच वर्षों से लंबित भूमि बंटवारा प्रकरण आपसी सहमति से सुलझ गया। वहीं शहरी सेवा शिविरों के जरिए भी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। पाली में पीएम स्वनिधि योजना के तहत शिविर में 300 से ज्यादा पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की आज समीक्षा की गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने

0: जेजेएम के कामों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर घर जल प्रमाणन, सुजलाम भारत आईडी और 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के परीक्षण में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर मिशन की नियमित समीक्षा करने और गांवों में जल गुणवत्ता परीक्षण करने, साथ ही सामूहिक भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। भरतपुर में आज महिला संवाद और सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही उन्हें अधिकारों और कानून की जानकारी दी। महिलाओं को साइबर अपराध, सोशल मीडिया सुरक्षा, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से बचाव के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए उल्लेखनीय काम करने वाली 39 महिला स्वयं सेवकों को सम्मानित किया। उधर पाली में भी पुलिस और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया। पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन ने महिलाओं को आत्मरक्षा का भी अभ्यास करवाया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश भर में सक्रिय है। 2 जुलाई को प्रवेश के बाद लगभग एक हफ्ते में मॉनसून पूरे प्रदेश में छा गया है। मॉनसून के कारण अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं अच्छी बरसात हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल भरतपुर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में 3 इंच तक पानी बरसा। विभाग ने 10-11 जुलाई तक तेज बारिश का दौर बने रहने की चेतावनी जारी की है। कल भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। भरतपुर में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। 31 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। जून महीने से अब तक प्रदेश के 7 जिलों में असामान्य, 11 जिलों में अत्यधिक, 18 में सामान्य और 5 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बारिश के साथ ही प्रदेश के बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। छोटे बड़े कुल 693 बांधों में से फिलहाल 412 बांध आंशिक रूप से भरे हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने और आउटरीच रणनीति को बढ़ाने पर आज जयपुर में विचार विमर्श किया गया। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के निदेशक अनुभव बैरवा की अध्यक्षता में अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में एकीकृत मीडिया आउटरीच पर जोर दिया गया। बैठक में उत्तर पश्चिम रेलवे, श्रम विभाग, इग्नू, भारतीय मानक ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भ्रामक लेबलिंग और नामी ब्रांड के उत्पादों की कॉपी के संदेह पर एनर्जी ड्रिंक की 8000 कैन जब्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्णाराम कड़वासरा ने बताया कि सभी नमूनों को जोधपुर की प्रयोगशाला में भेजा गया है। उधर कोटपुतली बहरोड जिले से भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 10,000 से अधिक एनर्जी ड्रिंक की बोतलें जब्त की। नीमराणा में 150 किलो सिंथेटिक पनीर भी जब्त किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच मेलबर्न में वैश्विक शिखर वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साझेदारी के नए युग की शुरुआत बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों को कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन के एक सप्ताह के भीतर प्रदेश भर में छाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख संदीप केड़िया ने तैयार किया है। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में योग शिविर आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। इसी दौरान महेश नवमी, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, कबीर जयंती और मुहर्रम के अवसर पर जिले में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस परियोजना के तहत भूमि

0: गत पाइपलाइन के माध्यम से हरियाणा से यमुना का पानी झुंझुनू, सीकर और चूरू तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे पेयजल संकट के समाधान की उम्मीद बढ़ी है। जिले में इस समझौते का स्वागत किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने झुंझुनू में कहा कि इस वर्ष भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी तथा आने वाले समय में क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए पानी पर्याप्त उपलब्ध होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने झुंझुनू जिले के पचलंगी गांव में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, योग और भगवान श्री राम के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए समाज में संस्कार और सेवा की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरा होने पर आयोजित सहकार सप्ताह के दौरान जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सहकारी समितियों की योजनाओं, गोदाम निर्माण और पैक्स कंप्यूटरीकरण की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने किसानों तक सहकारिता योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना का शुभारंभ पातुसरी में किया गया। विधायक राजेंद्र भांबू ने बताया कि नई व्यवस्था में पात्र श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा तथा मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय में किया जाएगा। योजना में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कामों को प्राथमिकता दी गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि विकास कार्यों के चयन में ग्राम सभाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जिले भर में स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय और अन्य विभागों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जाएगा। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि घर घर सर्वे कर मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट किया जाएगा और विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 96 भामाशाहों और 29 प्रेरकों का सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि पिछले एक वर्ष में जिले के भामाशाहों ने सरकारी विद्यालयों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग दिया है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ने विट्स पिलानी में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संचालित फॉडर पैलेट परियोजना की समीक्षा की। परियोजना का उद्देश्य कृषि अवशेषों से पशु चारा तैयार कर किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने परियोजना को ग्रामीण उद्यमिता के लिए उपयोगी बताया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत अभियान के तहत जिले में युवाओं का पंजीकरण किया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया कि महाविद्यालयों, विद्यालयों, ITI और अन्य संस्थानों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक युवा इस अभियान से जुड़ सके। इसी के साथ झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत और ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्रियां बीचे ऑस्ट्रेलिया रा मेलबर्न माय शिखर वार्ता भी प्रधानमंत्री मोदी इनने साझेदारी रा नुआ दौर री शुरुआत बताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रेस अदालत माय राजस्थान समेत राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेश रा सरहदी जिला रा SP री नवी दिल्ली माय मीटिंग भी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आमदनी हासिल करण जुड़िया महकमा ने कर चोरी करण वाला रे खिलाफ करड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना और आखर राज्य माय चौमासा रे बिरखा सरूफी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्री

0: एंथनी अल्बनीज दोनों देशों में मजबूत रिश्ता माथे खुशी जाहिर कीनी है। आज मेलबर्न माफिया शिखर सम्मेलन पाछे दोनों प्रधानमंत्री भेड़ो बयान जारी कीनो। बयान मायवा कहो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूजा माथे भरोसा रा नुआ दौर माय दाखिल भे क्या है। दोनों नेता क्षेत्रीय थरता ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार सारू सहयोग ने अंतिम रूप तीनों। प्रधानमंत्री मोदी बतायो कि दोनों देश यूरेनियम रिपूर्ति और खास खनिज गलियारा ऊंचुड़िया ऐतिहासिक करार माथे ही सही कीनी। भणाई लिखाई रा हल्का माई एक दूजारी मदद री सोच रा तेत बेंगलुरु और गुरुग्राम माय ऑस्ट्रेलिया रा विश्वविद्यालय री नुवी शाखावा खोली चावेला।
1: AI मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया। हम डेटा सेंटर, AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं।
0: श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय ने संबोधित किया। वे कहो कि 21वीं सदी रो भारत विकसित देश बनबा ओड़ी बढ़ रियो है और मौजूदा दौर रो भारत विकास और बरकत माय भरोसो रखे है।
1: भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवे लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बढ़ रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में देश रा सरहदी जिला रा पुलिस अधीक्षक रा सम्मेलन री सदारत कीनी। सम्मेलन में राजस्थान समेत सरहदों लाग्योड़ा न्यारा न्यारा राज्यां और केंद्र रा राजवाड़ा प्रदेशां रा जिला रा SP और गृह मंत्रालय रा आला अहलकार शामिल भया। सरहदी जिला में हिफाजत, घुसपैठ और अवैध प्रवासन अपराधा माथे लगाम और आबादी में बदलाव री जानकारी सारू ओ सम्मेलन राखी चियो। इसा गई नशीली चीजा री तस्करी और ड्रोन रे कारण उपजा खतरा माथे आंकस लगावन रा जतन रे बारा माई विचार करी चियो। ध्यानजोग है कि केंद्र सरकार कुछ समय पहले देश रा न्यारा न्यारा हलका माए आबादियों जुड़िया बदलाव री ठाकरण और इनरा कारणा री पिछाण सारू आला दर्जा री समिति बनाई ही। केंद्र सरकार भारत ने AI रा वैश्विक केंद्र रा तौर सामी लावण सारू सगला जरूरी जतन कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव S. कृष्णन आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII री ओर राखी जा शिखर सम्मेलन में आ बात कही। वह कहो कि AI ने न्यारा न्यारा हलका में उत्पादकता, दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ावन सारू काम ली जा रही है। कृषि यंत्रीकरण उप मिशन राते थालताई देश में किसाना ने 9,400 करोड़ रुपयों बत्ता मोल री खेतीबाड़ी में जुड़ी 22 लाख मशीना देवण माय मदद करी ची है। खेती किसानी रा काम माय मशीना काम लेवण ने बधावो देवण सारू साल 2014-15 माय ओ मिशन चलाई चियो हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा मेडिकल कॉलेज माय कॉटेज वार्ड बनावण रा काम री नींव रखी और नुओ बनाई चियो PG हॉस्टल जनता ने सौंपियो। ई मौके बिरला कहो कि कोटा मेडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधा और बधाया जावेला और आवता 2 साल में इनने इलाज उन जुड़ी भणाई लिखाई रो बेहतरीन संस्थान बनावन री कोशिश करी जावेला। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कहाँ लोकसभा अध्यक्ष कहो कि लंबा बगत ताई इलाज करावन री जरूरत वाला मरीजा ने आ कॉटेज वार्ड घणी साता मिलेला।
2: कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मरीज लंबे समय के लिए इलाज कराने आते हैं और जिनको लंबे समय इलाज की आवश्यकता पड़ती है, उन मरीजों के लिए 90 कमरों का क्यूबिकल और कॉटेज वार्ड बनेगा ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी लंबे समय इलाज करने की सुविधा यहाँ पे हो। और उसके साथ आने वाले समय के अंदर इस चिकित्सा परिसर के अंदर जो जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बना गई है ताकि ये

0: वातावरण भी यहाँ पे स्वच्छ रहे, हरा भरा भी रहे।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आमदनी हासिल करण जुड़िया महकमा रा अहलकारा सागे आज मीटिंग कीनी। वह चालू माली साल रा आमदनी रा लक्ष्य टेम सर हासिल करण बाबत कहो। श्री शर्मा कर चोरी रे खिलाफ असरदार कार्रवाई करण सारू कहो। ए बीचे प्रदेश में कर चोरी रे खिलाफ चलाया जा रहा खास अभियान रा तहत आज कई कारोबारी फर्मा रा ठिकाना माथे खोजबीन करी जी। राज्य जीएसटी और वाणिज्यिक कर विभाग री ओर पाली जिला रा सुजत माए मेहंदी रा कारोबार जुड़िया समूह रा ठिकाना माथे आ कार्रवाई करी जी। महकमो करीब 35 करोड़ रुपया री कर चोरी री शंका जताई है। प्रदेश माए लगाया जा रहा ग्रामीण सेवा शिविर माए हाल ताई 38 लाख हूं बत्ता लोगों ने फायदो मिलियो है। बालोतरा जिला रा खारी गांव माए लगाई चिया शिविर माए एक ही परिवार रा 53 खातेदारा बीच बरसाऊ चाल रहा जमीन रा बंटवारा जुड़ियो मामलो आपसी सहमति सुलझा लियो चियो। शहरी सेवा शिविर रे जरिए जनता री समस्यावां आगे करी जा रही है। पाली माए लगाई जा शिविर माए 300 बत्ता पात्र लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना रो फायदो दियो चियो। प्रदेश माए जल जीवन मिशन रा तहत चलाई जा रही परियोजनावां रा काम रो जायजो लेवन सारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे जेजेएम रा तहत कामा ने ते भगत माए पूरा करण रा हुकम दीना। मुख्य सचिव हर घर जल प्रमाणन सुजलाम भारत आईडी और 100 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली परियोजनावां रा परीक्षण माए तेजी लावण सारू कहो। भरतपुर माए आज महिला संवाद और सम्मान समारोह राखी जियो। इन माए पुलिस रा अहलकार महिलावां री समस्यावां सुनी। कार्यक्रम माए मौजूद महिलावां ने वारा हक और कानून रे बारा माए जानकारी दीरी जी। ईसा गई वाने साइबर अपराध सोशल मीडिया हिफाजत घरेलू मारपीट और उत्पीड़न बचाव रा बारा माए बताई चियो। कार्यक्रम माए एसपी राजेश मीणा महिलावां री हिफाजत और वहां माए जाग जगावन सारू बेहतरीन काम करन वाली 39 महिला स्वयं सेवका रो मान कीनो। पाली माए पुलिस और महिला अधिकारिता विभाग री ओर महिला सुरक्षा संकल्प अभियान रा तहत कार्यक्रम राखी चियो। इन माए एसपी मोनिका सेन महिलावां ने खुद री हिफाजत रा तरीका रो अभ्यास करायो। अरब मौसम प्रदेश माए 2 जुलाई ने शुरू हुई चौमासारी बिरखा अब आखा राज्य माए भेवन लगी है। मौसम विभाग ने मुजब काल भरतपुर और उदयपुर संभाग रा कई हलका माए 3 इंच ताई पानी बरसियो। महकमो 10-11 जुलाई ताई तेज बारिश रो दौर चालतो रहवन रा आसार जताया है। काल भरतपुर जयपुर और कोटा संभाग माए हल्की मझला दर्जा री बिरखा री संभावना है। भरतपुर माए कठे कठे जोरदार में वेवन रा आसार है। 31 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। जून महीना हाल ताई राज्य रा 7 जिला माए घनी जबरदस्त 11 जिला माए जोरदार 18 माए सामान्य और 5 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो। जल संसाधन विभाग रे मुजब राज्य में चौमासा री बिरखा स्वरूप वणसा गई। छोटा मोटा कुल 693 बंधा मायू फिलहाल 412 माए पानी आवन लग्यो है। बांसवाड़ा जिला रा मैनादर गांव माए जमीरा झगड़ा माए एक ही परिवार रा 7 जना जख्मी भे गया जाने जिला अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। घना जख्मी 2 जना ने इलाज सारू उदयपुर रेफर करी चिया है। पुलिस रे मुजब 2 पार्टियां बीचे व्या झगड़ा माए एक ही परिवार रा 11 जना मत है घर माए घुसर हमलो करी चियो। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रा तहत राज्य माए न्यारी न्यारी थोड़ा खान पीन री सामग्री री जांच करी जा रही है। जैसलमेर माए भरमावण वाली लेबलिंग और नामी ब्रांड रा सामान री नकल री शंका माए एनर्जी ड्रिंक री 8,000 कैन जब्त करी ची। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्णा राम कड़वासरा बतायो के सगड़ा नमूना ने जांच सारू जोधपुर री प्रयोगशाला माए भेजी चिया है। कोटपुतली बहरोड जिला में आए खाद्य सुरक्षा अहलकार एनर्जी ड्रिंक री 10,000 बत्ती बोतना जब्त कीनी। नीमराणा माए करी

0: 150 किलोग्राम नकली पनीर ही जब्त करी चियो। केंद्र सरकार रा खास कार्यक्रम और योजनावारी जानकारी जनता ताई पुगावन और आउटरीच रणनीति ने बढ़ावो देवन रे बारा माए आज जयपुर माए विचार करी चियो। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर रा निदेशक अनुभव बैरवारी सदारत माए अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति री मीटिंग राखी ची। इन माए सरकारी योजनावारी जानकारी जनता ताई पुगावन रा काम माए एकीकृत मीडिया आउटरीच माथे जोर दियो चियो। बैठक माए उत्तर पश्चिम रेलवे, श्रम विभाग, इग्नू, भारतीय मानक ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन रा अहलकार शिरकत कीनी। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। भारत और ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्रिया बीचे ऑस्ट्रेलिया रा मेलबर्न माए शिखर वार्ता भी। प्रधानमंत्री मोदी अन्न साझेदारी रा नुआ दौर री शुरुआत बताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह री सदारत माए राजस्थान समेत राज्यों रा प्रदेशों रा सरहदी जिला रा एसपी री नई दिल्ली माए मीटिंग भी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आमदनी हासिल करण जुड़िया महकमा ने कर चोरी करण वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना और आखा राज्य माए चौमासा री बिरखा सरूफी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बज चुके हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
2: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रधान, जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, साफ ऊर्जा सूत्र अब दुनिया की बिजली का लगभग एक तिहाई हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है।
4: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सभी साथियों का ताई आपकी सखी निकिता मीणा
5: और आपका साथी हरिओम को घनो घनो
4: राम राम, राम। और हरिओम जी आपका ताई भी मारो घनो घनो राम राम
5: और आपका ताई भी घनो राम राम।
4: बिल्कुल, और आज जो है अपना एक विशेष कार्यक्रम जेमा के खरीफ की जो फसला रहे छे वहाँ की अच्छी पैदावार से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे।
5: देखो बहन निकिता जी, बात अच्छी छे, टाइम छे, अपनी जो खरीफ की जो फसल छे

0: बाकी वो एक टर्म छे। और ये टर्म पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो कि अपना कोई भी किसान साथी छे जो खरीफ की जो फसलों से वो लगाव चाहो छे, तो हम सबसे महत्वपूर्ण जो काम रह छे अपने खरीफ की फसलों में वो एक ऐसी बीमारी छे वो छे खरपतवार।
1: बिल्कुल।
0: और आज को जो आपने जो कार्यक्रम छे इनको विषय भी यही छे कि बुआई पूर्व और बुआई के उपरांत जो अपना जो काश्तकार भाई छे वो खरपतवार को नियंत्रण वही प्रकार से करे। और इस संबंध में आज जो आपनों कार्यक्रम छे में अपना जो पाहुणा छे मेहमान छे वो छे श्री कपिल कुमार जी नागर, फार्म मैनेजर, कृषि अनुसंधान उपकेंद्र खानपुर।
1: बिल्कुल कपिल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत छे हमारा ई कार्यक्रम में। और आपका ताई मारो राम राम।
2: राम राम सब।
0: और देखो अपना जो काश्तकार भाई थे जो आज ही कार्यक्रम का ताई सुन रहे थे वो सीधा सीधा अपना जो आकाशवाणी का जो फोन नंबर छे वो छे 07432-232-593 पर सीधा सीधा जो नागर साहब थे यहाँ से अपना प्रश्न कर सके छे और अपनी समस्या को समाधान प्राप्त कर सके छे।
1: बिल्कुल। और जो माँ को विषय छे आज छे वो छे कि भाई बुआई पूर्व और बुआई उपरांत खरीफ फसलों में खरपतवार को नियंत्रण कैसा करा
2: जी।
0: तो देखो नागर साहब सबसे पहली बात तो यह सबसे पहले प्रश्न तो यही है आज जो अपना काश्तकार भाई है वो आए कहता है आप सबसे पहले तो यह बताओ कि भाई खरपतवार कहीं हो चे और या किस प्रकार से अपना जो फसल जमा करता है नुकसान पहुंचा।
2: देखो अपन सबसे पहले बात करा तो खरपतवार जैसे अपन ने सोयाबीन लगाए और सोयाबीन के पौधे के अलावा जितने भी पौधे उगते हैं तो वो एक तरह से खरपतवार है, वो मतलब अवांछित पौधे वो खरपतवार में है। और अपनी फसल को इस जैसे किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं तो वो जैसे अपनी फसल से क्या लेते हैं जैसे पानी भी अवशोषण कर लेते हैं, पोषक तत्व है वो भी अवशोषण कर लेते हैं, सूर्य का प्रकाश और स्थान इनके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और जैसे कीट और रोग है इनको भी आश्रय स्थल देते हैं। और इसलिए अपनी वृद्धि मतलब जो पौधों की वृद्धि होती है और उपज ये दोनों इससे प्रभावित होती है
1: जी। तो जैसा कि खरीफ की जो फसलें छे वहाँ में खरपतवार नियंत्रण जो है क्यों आवश्यक छे।
2: देखो अपन बात करें तो खरपतवार नियंत्रण इसलिए आवश्यक है कि अगर अपन पौधों की प्रारंभिक अवस्था में अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये खरपतवार अपनी फसल से भी मतलब इनकी जो ग्रोथ होती है मतलब वृद्धि वो फसल से अधिक होती है। तो ये एक तो उससे वो सारा वो पानी पोषक तत्व ले लेते हैं, उसके बाद अगर नियंत्रण नहीं किया जाए तो अपनी जो उपज होती है फसल की उपज होती है उससे 30-70% तक ये अपने को उपज में कमी आ सकती है। उसके बाद अगर ये नियंत्रण समय पर कर दिया जाए तो अपना उत्पादन और गुणवत्ता दोनों अच्छे रहते हैं।
0: अच्छा नागर साहब या तो बात बताइए आपने भाई खरपतवार कहीं हो लेकिन आपना काश्तकार भाई चे जब फसलों का तई बहुत तो बुआई से पूर्व से कहीं कहीं काम चे कहीं कहीं प्रयास वो करे ताकि वहाँ कहीं जो फसलें थे वहाँ खरपतवार को नियंत्रण कर पाओ।
2: हाँ देखो शुरुआत से यही है कि खरपतवार अपनी पहली स्टेज यही है कि खरपतवार का शुरू में कैसे नियंत्रण किया जाए। तो ये बुआई के पूर्व ही अपन अगर खरपतवार को नियंत्रण कर ले तो अपने खरपतवार नहीं होंगे।
0: हाँ।
2: तो इसके लिए सबसे पहले किसानों को तो खेत की जो तैयारी है वो अच्छे से करनी चाहिए, उसके बाद खेत की जो गहरी जुताई है वो अच्छे से करनी चाहिए ताकि जो खरपतवार के बीज है वो नष्ट हो जाए।
0: अच्छा।
2: उसके बाद जैसे पल्लेवा है सिंचाई करके अपन खरपतवार उगने दें, फिर उगने के बाद उनमें जुताई या रोटावेटर जो भी चलाते हैं वो उससे अपन उनको खरपतवार को नष्ट कर दें। अगर यही मतलब अगर जैसे खेत में खरपतवार उग गए अपने फसल नहीं बोई बुआई के पूर्व की बात करें अगर उग गई खरपतवार उग गए तो उन खरपतवारों पर अपन एक ग्लाइफोसेट नाम का केमिकल है 41% SL में उसको 1-1.5 लीटर प्रति एकड़ अपन काम में लेके छिड़काव कर सकते हैं। ये और मतलब ये उपाय करें तो अपन बुआई से पूर्व ही अपन खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं।
0: अच्छा नागर साहब या तो बात बताई कि आपने की कि भाई अपन ये तरीका से अपन खेत की तैयारी कर सकता था घर ये कई जुताई कर सकता था, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात एक यह भी देखा मैं बीज को किस प्रकार से वो चयन करें ताकि उनमें भी वो आगामी टाइम पर खरपतवार को नियंत्रण कर सके।
2: हाँ देखो बीज का स्रोत जहाँ से भी मतलब किसान बीज लेता है
1: जी।
2: तो जैसे मान लो अपनी फसल में जैसे मान लो किसान ने किसी दूसरे किसान से या फिर कहीं से बीज लिया
0: जी।
2: तो उसको बीज को देखना चाहिए कि इसमें कहीं खरपतवार के बीज तो नहीं है। एक तो मान लो कि यहाँ पे झालावाड़ से बीज ले जाके

0: कहीं गांव में ले जा रहा है
1: हाँ हाँ हाँ
0: और उस खेत में वो बीज नहीं है, तो वो बीज भी उसके खेत में हो सकता है। तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी ग्रेडिंग वाला उन्नत किस्म का जो बीज है वो ले, तो ताकि उसमें खरपतवार के बीज ना हो और वो अपने को मतलब अपने खेत में नहीं उगे।
2: बिल्कुल। तो या तो बहुत बढ़िया तरीका से आपने बताई छे कि भाई बीज को चयन आपने कैसे करा है ना, और बुआई पूर्व खरपतवार का बारे में भी आपने बताई। लेकिन एक बात और मुँह यहाँ पर जान बचाऊंगी कि भाई बुआई के बाद आपने खरपतवार नियंत्रण कब शुरू कर देना चाहिए?
0: देखो बुआई के बाद है ना, बुआई के बाद बुआई जैसे अपन ने फसल की बुआई कर दी उसके बाद से ही अपना नियंत्रण तो चालू हो जाता है।
2: जी
0: उसमें दो तरीके से करते हैं, एक तो करते हैं बुआई के तुरंत बाद और एक बुआई के बाद। बुआई के तुरंत के बाद की बात की जाए तो वो है 0 से, मतलब जिस दिन बुआई करी उससे 3 दिन के अंदर अंदर, वो भी उसी कंडीशन में जब खरपतवार अंकुरित नहीं हुई हो और अपनी फसल भी अंकुरित नहीं हुई हो, इसी कंडीशन में अपन ये शाकनाशी काम में ले सकते हैं। इसके लिए जैसे शाकनाशी की बात करी जाए तो जैसे अभी खरीफ में सोयाबीन, मूंग, उड़द, बाजरा, इन फसलों के लिए अगर अपन पेंडामेथालिन 30 cc 1 से 1 लीटर से और 1.3 लीटर प्रति एकड़ स्प्रे करें तो इनका अपना कंट्रोल हो जाता है। मक्का में एट्राजीन है 50 WP, तो उसकी 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा का अपन प्रयोग करें तो वो अपन उसका कंट्रोल कर सकते हैं। और इन दवा को लगभग 150 से 200 ml प्रति लीटर पानी प्रति एकड़ में पर्याप्त रहता है। ये तो है बुआई के जस्ट तुरंत बाद,
1: बाद
0: 0 से 3 दिन वाली। और बुआई के बाद, तो बुआई के बाद ये है कि मतलब जैसे अपना लगभग 15 से 25 दिन का जो क्रिटिकल समय होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है लगभग सभी फसलों के लिए। तो इसमें सभी के लिए अलग अलग है। जैसे अगर अपन ने सोयाबीन है तो अगर उसमें 15 से 25 दिन के अंदर अपन ने मतलब खरपतवार का कंट्रोल कर दिया तो अपनी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी और अच्छी ग्रोथ करेगी। तो अगर इसमें भी सोयाबीन के लिए भी बात करें तो जैसे इमेजिथा पर 10% SL का आता है, तो 300 से 400 ml प्रति एकड़ अपन उसका यूज कर सकते हैं। अगर धान में है
1: जी
0: तो बिसपायरीबेग सोडियम 10 SC वाला 80 से 120 ml प्रति एकड़ यूज करें तो कंट्रोल कर सकते हैं। और मूंग में, मूंग उड़द में इमेजिथा पर 10% वही 300 ml प्रति एकड़ में यूज कर सकते हैं। और इस इन केमिकल का यूज करके अपन बुआई के बाद खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर देखा जाए तो अपन यांत्रिक विधि है, यांत्रिक विधि से भी, ये तो एक केमिकल विधि, उसके बाद जैसे यांत्रिक विधि है, यांत्रिक विधि में ध्यान एक तो हाथ से निराई गुड़ाई कर दें, वो भी एक खरपतवार नियंत्रण का है। और जैसे गुड़ाई या जुताई कर दें जैसे खुरपी से, कुदाली से, उससे निराई गुड़ाई कर दें, मल्चिंग कर दें जैसे मल्चिंग जैसे सूखी भूसा हुई या सूखी पत्तियां हुई उनसे अपन कर दें, सोलराइजेशन कर दें जिससे वो पॉलिथीन या तिरपाल बिछा के, ताकि उससे भी खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है।
1: अच्छा नागर साहब, एक बात सामना हो चुका, आप देखता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जब भी कोई निराई गुड़ाई को टर्म हो चुका और जब अपनी माता बहने खेत में जाओ तो मूल टर्म माता बहने का कहीं कहीं बात कोशो वो ध्यान रखना, कहीं कहीं शेप चीज को ध्यान रखना ताकि वहीं की जो फसल को जो पौधों को टाइम भी बचा भी ले और निराई गुड़ाई भी बढ़िया होगा।
0: हाँ देखो ये भी एक ये है कि किसान को अपनी फसल का समय सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय लगभग मतलब जैसे अपन ने लगभग जैसे अगर किसी किसान ने केमिकल का स्प्रे नहीं किया, रासायनिक दवाई का स्प्रे नहीं किया, तो उस किसान को लगभग 30 दिन के अंदर अंदर मतलब उसकी फसल का निराई गुड़ाई करानी चाहिए, जिससे एक तो अपनी जो फसल होती है वो छोटी होने के कारण उस वो निराई गुड़ाई करेंगे तो वो उसको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। एक तो बड़ी फसल हो जाएगी तो उसको उसमें अगर उसमें निराई गुड़ाई करेंगे तो जैसे किस माता भाई ने जो निराई गुड़ाई करेगी वो उस फसल को थोड़ा सा टूटने का भी डर रहता है,
2: बिल्कुल।
0: तो छोटी अवस्था में अपने 20 से 20 से मतलब 25-30 दिन की अवस्था जो होती है उसमें अपने को खरपतवार नियंत्रण करवाए तो ज्यादा अच्छा रहे, ताकि उसे अपनी फसल को नुकसान नहीं हो।
2: जी, तो एक बात और माँ का सामना

0: तो नागर साहब कार्यक्रम में एक बार पुनः आपको बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब।
1: राम राम।
0: तो नागर साहब अब यह घड़ी भी आपने इशारों कर दी थी कि भाई आपने जो कार्यक्रम है लगभग समाप्ति की ओर है, तो जो कृषक साथी जो आपकी बातचीत करता है सुन रहे थे, ये अच्छे तरीके से खरपतवार नियंत्रण करे और जो भी आपका जो बताया जो तरीका है यहाँ पर भी अमल करे, चालता चालता है सलाह का तौर पर सुझाव का तौर पर कहीं का पूछाओ।
1: देखो मैं तो एक किसान साथियों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो अपनी उसकी शुरुआती फसल की जो अवस्था है उसमें खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। लगभग बुआई के शुरुआती 20 से 45 दिन के अंदर अंदर उसको सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उनमें लगभग उसको खरपतवार फसल को खरपतवार मुक्त रखे जिससे अपनी फसल की जो वृद्धि होती है वो अच्छी होती है। उसके बाद शाकनाशी का जो प्रयोग करते हैं बुआई के पूर्व बनने जैसे बात की तो बुआई की अच्छी तैयारी खेत की कर लें, गरी जुताई पलेवा कर लें तो उसमें भी अपने को पहले अगर अपन वीड को खरपतवार को नियंत्रण कर लें तो फिर अपने को नुकसान फसल को नुकसान नहीं हो। बुआई की अगर बात की जाए शाकनाशी का अगर प्रयोग करें तो जो उसकी अनुशंसित जो मात्रा होती है
0: जी।
1: सही समय और सही विधि होती है उसी से अपने को छिड़काव करना चाहिए। दवा के जो लेबल दिया हुआ होता है उसके निर्देशों का पालन करते हुए ही अपने को स्प्रे मतलब छिड़काव करना चाहिए जिससे अपने को भी नुकसान नहीं होए, फसल को भी नहीं होए और अपने जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान नहीं हो। यही
2: बिल्कुल नागर साहब और बहुत ही बढ़िया जानकारी जो माँ का सुन बड़ा श्रोता कताई दीजिए और आपने इतनो कीमती समय माँ कताई दियो इकले का आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप कताई माँ को राम राम
0: राम
1: राम राम राम।
2: और देखो चालता चालता मंडी भाव का बारे में मैं अपने बात करूं,
0: मंडी भाव आज को इन प्रकार से धनिया को भाव रही हो 9000 से 15500 रुपया प्रति क्विंटल,

0: रखा 4,900 से 5,400 रुपया, मेथी को भाव रहे हो 5,500 से 6,300 रुपया, चिया सीड को भाव रहे हो 13,000 से 19,000।
1: बिल्कुल, मसूर को भाव जो 6,000 सू 8,000, कलौंजी को भाव 10,000 सू 17,500, अलसी को भाव 8,200 सू 8,900, गेहूं को भाव 2,350 सू 2,550, सरसों को भाव 6,000 सू 7,000।
0: और ये मंडी भाव के साथ ही आज को जो आपने कार्यक्रम की को टर्म पूरा हो रहे थे, आपका साथी हरिओम कताएं
1: और निकिता कताएं दो कार्यक्रम समाप्त करवा की अनुमति। राम राम
0: राम राम।

हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103 2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:35 हो चुके हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल।

0: कृषक चौपाल सुनवाड़ा सभी साथियों के ताई आपकी सखी निकिता मीणा और
1: आपका साथी हरिओम को घनो घनो
0: राम राम।
1: तो देखो बहन निकिता जी, आप देख रहे होगा कि मानसून को जो प्रवेश है वो अपना हाड़ो तेंचर पूरा प्रदेश में अपना हो चुके है। और अपना जो खासकर भाई थे ये टकटकी लगा देख रहा था भाई कद मानसून आओ, कद बारिश हो और कद आपने जो खरीफ की जो फसलें चाहिए कि आपने बुआई करा।
0: बिल्कुल।
1: तो देखो भाई बहन बात ऐसी है भाई, अपना जो खासकर भाई है वहाँ को जो महीनों से आषाढ़ी को महीनों तो बहुत महत्वपूर्ण हो
0: चुके।
1: एक आपने हाड़ोती में कहा बीच डाल को चुके बांध रो और अषाढ़ को चुके करसान, मतलब कबा को मतलब ये हो चुके जो महीनों से किसान आगे लेकर इतना महत्वपूर्ण है ताकि मौसम के हिसाब से वहाँ का ताई काम करवा की आवश्यकता है। मानसून आ गयो और अब आवश्यकता है वहाँ का ताई खरीफ की फसल की बुआई करवाई।
0: बिल्कुल, और सही भी है क्योंकि कतनो कीमती समय बार रह चाहे कब बारिश लाग गई तो लाग गई, जहाँ तक वे बुआई न करेगा वहाँ तक वहाँ को काम आगे बढ़ेगा।
1: देखो बहन निकिता जी बात ऐसी कि आज दौर छे आज जो अपना कास्ट कर भाई वो भी छो छे भाई ज्यादा से ज्यादा पैदावार वहाँ का मिले और इनके लेकर वहाँ का जो महत्वपूर्ण जो बात है वहाँ पर ध्यान देवा की आवश्यकता है। वह आज को अपना जो विषय है वो यही है कि फसल विविधीकरण करता है वहाँ का अपना नहीं पड़ेगा।
0: बिल्कुल अपना नहीं पड़ेगा और इको अर्थ है कि भाई जो किसान एक पारंपरिक खेती हमेशा से करते आ रहे हो जैसे गेहूं धान ये सब, तो यहाँ का ताई भी उगाओ लेकिन साथ में कुछ विभिन्न जो नई फसल रहे चे, फल रहे चे, सब्जियां रहे चे, वहाँ का ताई भी उगाना
1: पड़ेगा। मतलब एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है फसल चक्र का ताई अपनाओ, एक ही फसल का ताई लगातार न बो फसल का ताई बदल बदल करके बो, तो निश्चित रूप से वहाँ की जो पैदावार है उसमें भी एक अंतर अपना ताई देखनी पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: एक और महत्वपूर्ण काम योग कर सकते अपना कास्तकार भाई वो मिश्रित खेती, एक खेत में एक से ज्यादा फसल वो लगा भी एक अच्छा फायदा वो कमा सके छे। जैसे आप देखता होगा कि अपना हाड़ोती अंचल में झालावाड़ जिला में कई गाँव से है जहाँ संतरा का बाग बगीचा है, तो संतरा तो ले ही रहा है लेकिन वहाँ का साथ साथ जो बीच की जो जगह है वो कहीं दूसरी खेती भी वो कर लिया
0: कर लिया है। और देखो फसल विविधीकरण की यहाँ पर बात चली है तो इसका बहुत सारा लाभ है कि भाई आय में स्थिरता रहे है, यदि कभी मौसम की मार यदि पड़ जाए कोई फसल पर तो एक फसल खराब हो जाओ पर दूसरी फसल जो है उसकी भरपाई कर दे छे। और मृदा को स्वास्थ्य जो है वो सुधरे छे क्योंकि लगातार एक ही है जो आपने खींच अगर फसल चक्र तो एक ही एक फसल उगावासु मिट्टी अनुपजाऊ हो जाओ छे, उसकी क्षमता कम हो जाओ छे, तो कहीं ना कहीं यदि आपने बदल बदल कर फसला वांगा तो मृदा को स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा।
1: वाह भाई निकिता जी बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और देखो बरसात को टर्म छे और बरसात का मौसम में जो अपना कास्ट कार्रवाई छे खरीफ को सीजन छे कई प्रकार की जो फसलां छे वो अपना इस सीजन में ले छे, लेकिन साथ ही साथ जो इस सीजन में जो अपना जो कास्ट कार्रवाई छे जो सब्जियां लगाओ छे तो सब्जियां लगा करके भी अच्छा मुनाफा वो कमा रहे थे, तो सब्जियां की उन्नत खेती वो किस प्रकार से करे आज एक जानकारी सुनूंगा श्री गोविंद कुमार जी नागर कृषि अधिकारी कार्यालय कृषि विस्तार कृषि विभाग झालावाड़, लेकिन पहले सुना यो संदेश।
2: जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग।

0: कोयला, तेल और गैस। सबसे ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: करसान भाई बहनों राम राम। करसान भाई बहनों, बरसात को टर्म चेप और आप देख रहे होगा कि मानसून दस्तक दे दी और ये मानसून की दस्तक के साथ ही जो आपनों जो आड़ो तेन चल चे हम करीब करीब सभी जगह आप ताई मानसून देखवा मिल रहे चे। करसान भाई बहनों, ये जो टर्म चे बरसात को, ये बरसात का टर्म पर आपना जो काश्तकार भाई चे वो अपने जो खरीफ की जो फसला थे वहाँ का साथ साथ ही इमें मौसमी सब जहाँ की उन्नत खेती वो की प्रकार से करे उनके लेकर कहीं कहीं बात आपको ध्यान रखाना और कहीं कहीं तरीका वो अपनाओ इनके लेकर जानकारी देवा के लेकर आज अपना साथ मध्य श्री गोविंद कुमार जी नागर कृषि अधिकारी कार्यालय कृषि विस्तार कृषि विभाग झालावाड़। तो गोविंद जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपको। राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
1: तो गोविंद जी, सबसे पहली बात तो आप यह बताओ कि बरसात का ही मौसम अपना जो काश्तकार भाई है अपना जो किसान है वो अन्य जो खेती बाड़ी को जो वो काम कर खरीफ की जो फसल लगा रखी है उनके साथ साथ जो बरसाती जो मौसम है इनमें जो प्रमुख जो वहाँ की जो सब्जियाँ है वो कच्ची कच्ची वो सब्जियाँ वो लगाओ ताकि वो वहाँ की उन्नत खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सके।
2: जी किसान भाई, जैसे कि अपना क्षेत्र है जलावाड़ कोटा, इसके आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए जो भी बरसात के मौसम में जो सब्जियाँ हैं उसमें जैसे कि भिंडी हो गई, लौकी हो गई, तुरई, करेला है, खीरा है, ककड़ी है या मिर्च है और बैंगन है, इन सब्जियों को अपन लगाकर इसमें जो अच्छी उन्नत तकनीकें अपनाकर अपन अच्छा उत्पादन उसमें ले सकते हैं।
1: अच्छा नागर साहब, आपने बताया कि भिंडी, लौकी, एक तरह से तोरई, खीरा, टिंडा, ये सब सारी जो सब्जियाँ से बरसात का मौसम अपना जो काश्तकार भाई है वो लगा सकते हैं और यहीं लगा करके एक बढ़िया वो एक खेती बाड़ी के साथ साथ ही वहाँ अच्छो मुनाफा हो ले सकते हैं। अपन जब ये अपना काश्तकार भाई यहाँ सब जगह तीन लगाओ तो सबसे मुख्य बात आओ जो खेत की
2: जी।
1: तो वो खेत की तैयारी की प्रकार से करे, कहीं कहीं बातों को ध्यान रखना खेत की तैयारी करते वक्त ताकि ये जो सब जैसे वहाँ का अच्छी पैदावार मिल सके।
2: जी किसान भाई, सबसे पहले तो अपन को जो अपने खेत की जो एक दो तीन गहरी जुताई करके उसको खेत को समतल कर लेना है। दूसरा इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप सब्जी खेती लगाए तो वहाँ पे जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी है, उसमें पानी नहीं भरना चाहिए। तो अपन खेत को समतल रखें और पानी निकासी के लिए हो सके तो आप जो ऊँची 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी जो नालियां हैं
1: जी
2: बेड बनाकर उसमें आप अगर सब्जी की खेती करेंगे तो जो जल निकास है उसकी निकासी हो जाएगी और जो आपकी जो बेड है उनकी जो ऊंचाई है 1 से 1 मीटर ऊंची उठी हुई उनको बनाएं ताकि आपका जो है फसल अच्छी ग्रोथ करेगी उसमें।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, या तो बात करिए आपने खेत की, लेकिन जो काश्तकार जिनके पास बीज चाहे वो आपने कहते भिंडी को बीज हो या अन्य जो भी आपने सब जजमा को बीज हो वो बीज के ताई बो लेकिन उससे पहले वो उनके ताई उपचारित करे इनके लेकर माई कहीं कहीं बात आपको ध्यान रखना।
2: जी किसान भाइयों, जैसा कि बीज उपचार शब्द है ये जैसे अपने छोटे बच्चे रहते हैं उनको अपन टीकाकरण करते हैं उसी तरह ये फसल का भी एक टीकाकरण होता है।
1: जी, जी,
2: अगर आप बीज उपचार करके बोओगे तो आपकी जो शुरुआती अवस्था रहती है उसमें कोई रोग कीट नहीं आता है, फसल की समान ग्रोथ होती है। इसलिए आप जब भी कोई सब्जी हो या फिर कोई और दूसरी फसल बोते हैं तो उसको बीज उपचार करके अवश्य बोएं।
1: वाह साहब, मतलब बीज उपचार को मतलब एक तरह से बीज को टीकाकरण ताकि उनमें आगामी टर्म पर बीमारी हुआ की जो संभावना है वो काफी कम हो जाओ न की बराबर हो जाओ।
2: जी तो इसमें जो बीज उपचार का जो चरण रहता है उसमें सबसे पहले अपन को नाशी से उपचारित करना रहता है, उसके बाद में कीटनाशी और उसके बाद में कोई जो जैव उर्वरक रहते हैं उनको लेते हैं। तो फफूंदनाशी में आप कार्बन डाइजिम ले सकते हैं या थायरम ले सकते हैं और ये 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको अपन ले सकते हैं। और कीटनाशक में अपन इमिडाक्लोरपीड ले सकते हैं जो 70 WS का आता है, 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसमें अपन काम में ले सकते हैं। और जो जैव उर्वरक होते हैं इसमें अपन PS भी ले सकते हैं और एजोडोबैक्टर ये इसमें वन सब्जियों में काम ले सकते हैं और इन दोनों की मात्रा जो रहती है वो 10 से 20 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको रखनी है।
1: जी अच्छा, यह तो आपने बीज उपचार की बात बताई, दो प्रमुख काम होते हैं, एक तो खेत की तैयारी और एक बीज।

0: की तैयारी, जब दोनों अपना काश्तकार भाई के पास बीज भी तैयार छे और जमीन भी तैयार छे, तो सबसे मुख्य बात आओ छे उमे खाद और उर्वरक की। भाई उनको जो प्रबंध छे वो भी सही तरीका से करे, ताकि उनको जो आगामी टाइम पर जो बीमारियां हो बाकी जो संभावना छे वो कम हो जाओ और एक अच्छी पैदावार उनको तक मिले।
1: जी, खाद और उर्वरक में सबसे पहले अपन जो अगर अपने पास अच्छी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को खेत में वो डालनी है। उसके बाद में अगर रासायनिक उर्वरक की अपन बात करते हैं तो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को खेत में उसको देना रहता है, और फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और इसके साथ पोटाश होता है वो भी 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को देना रहता है। और इसको अपन को देना कैसे है कि जैसे मान लो जो फास्फोरस और पोटाश की जो पूरी मात्रा होती है और नाइट्रोजन की है आधी मात्रा अपन जो अंतिम जुताई करते हैं उस समय अपन को खेत में देना है, बाकी जो यूरिया की जो आधी मात्रा रहती है वो जो फसल 25-30 दिन की हो जाती है तब अपन उसमें खेत में उसको दे सकते हैं। साथ ही इसमें अपन को जो सब्जी की खेती कर रहे हैं तो अपन जो मेन खाद रहती है जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश वो तो अपन देते ही हैं, लेकिन जो किसान भाई क्या करते हैं कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं उनको अपन खेतों में कभी डालते नहीं है, जिससे अपनी फसलों में क्या है कि सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से बहुत सारी बीमारियां भी आती है और अपना जो उत्पादन रहता है वो उतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप जब अंतिम जुताई करो उस समय आप उसमें जो जिंक है, बोरोन है, कैल्शियम है, इनको भी अपन दे सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी फसल खड़ी हुई रहती है और अगर इन पोषक तत्व की कमी आपको दिखे तो आप उसका फोलियर स्प्रे भी उसका चिलेटेड फोर में जो आते हैं उनका छिड़काव कर सकते हैं। तो जिंक सल्फेट है 0.5% का अपन काम में ले सकते हैं, बोरोक्स है जो बोरोन के लिए वो 0.2% अपन उसमें काम में ले सकते हैं, साथ ही जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो भी अपन खेत में उसको दे सकते हैं।
0: वाह साहब वाह। तो नागर साहब यह तो बात बताई कि आपने भाई खाद और उर्वरक का प्रबंधन अपना किसान साथी करा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है उसका तो टर्म बरसात को छे और बरसात का टाइम पर सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़े थे, लेकिन कभी कभी जब काफी लंबा अंतराल था एक बरसात न हो तो अच्छी टाइम पर जो वहाँ का जो सिंचाई की जो व्यवस्था सिंचाई का जो प्रबंधन जो वो की प्रकार से करो।
1: जी, इसमें सिंचाई का तो बरसात के मौसम में आपको पता है कि लगभग सिंचाई की अपन को आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मान लो अगर 7-8-10 दिन का अंतराल हो जाता है और अगर अपने खेत में नमी कम हो और पानी की फसल को अगर जरूरत लगे तो अपन उसमें हल्की सिंचाई दे सकते हैं। बाकी अगर खेत में ये ध्यान रखना है कि जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब पानी का भरा उसमें ना हो, नहीं तो अपनी फसल को खराब होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। नागर साहब बड़ी अच्छी चर्चा आप सो रही, बहुत बड़ी जानकारी आप जो कृषक साथी जो वहाँ कहीं दे रहे थे। एक और बात छः कसी भी अपन फसल लिया चाहे वो सब्जियां हुई या अन्य फसल हुई, एक और अच्छी बीमारी जो और उनको नाम चाहे खरपतवार। यह खरपतवार एक अशुभ बिन बुलाए मेहमान जो सीधो सीधो अपने खेत में हो जाए और आपने जो फसल चुका चौपट कर जाए, तो इनका नियंत्रण के लेकर अपना जो किसान साथी चुका कहीं करें।
1: जी, किसान भाइयों सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि खरपतवार नियंत्रण का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप हाथ से निराई गुड़ाई करें, लगभग 1-2 निराई गुड़ाई आप 20-25 दिन के अंतराल में उसमें कर देवें। अगर आप चाहते हैं कि हम रासायनिक नियंत्रण उसमें करना चाहें तो सभी सब्जियों में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप सब्जी बुआई के 72 घंटे के अंदर अंदर अगर पेंटामिथालिन जो 30% इसी का आता है उसका अगर आप छिड़काव करेंगे तो लगभग जो शुरुआती अवस्था में जो खरपतवार होती है वो वहीं पर आपके लगभग उसमें नियंत्रण हो सकता है। और इसके लिए जो उपयुक्त जो फसल है जैसे मान लो लौकी हो गई, तुरई हो गया, करेला या खीरा है, कद्दू है, भिंडी है, इनकी अगर आपने बुआई की है तो लगभग 72 घंटे के अंदर अंदर आप ये पेंटामिथालिन का उसमें छिड़काव कर सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: दूसरा इसमें आता है कि जैसे मान लो पौधे निकल गए लगभग 2-4 पत्ती अवस्था में अगर आ गए तो जो इसमें अगर अपने घास वर्ग जो खरपतवार रहती है सकड़ी पत्ती वाली उसमें आप क्यूजला फोप पीथाइल का भी उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं और ये घास जो वर्ग रहती है उसके लिए ही उसका नियंत्रण करेगी।
0: अच्छा,
1: ताकि अपन को इसमें ध्यान रखना है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए अपन 2-4 जैसी दवाओं का प्रयोग करते हैं लेकिन उसको नहीं करना है क्योंकि इसमें सब्जियों में गंभीर नुकसान हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि इसमें निराई गुड़ाई पे थोड़ा ज्यादा इस पे फोकस रखें अपन।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। नागर साहब एक और बात चेक है आपने की कि भाई बरसात को टर्म चे और ये बरसात का मौसम में जो आपने जो मौसमी जो सब्जियाँ चे वो प्रमुख सब्जियाँ आपने बताई कि आपने जो किसान चे वो लौकी, करेला, तुरई, खीरा, भिंडी, इस कई प्रकार की जो चीज आपने जो सब्जियाँ वहाँ का तैयार लगा रखी चे, तो ये मौसम में आपने जो सब्जियाँ चे वहाँ की सब्जियाँ में वो कीट और रोग को नियंत्रण किस प्रकार से करे ताकि वहाँ की जो पैदावार चे वहाँ का तय बढ़िया मिल सके।
1: जी, किसान भाइयों सब्जियों में जो प्रमुख कीट लगते हैं जैसे सफेद मक्की लगती है तो उसकी वजह से क्या है कि पत्तियों में लीफ कर्लर टाइप का वो हो जाता है, तो अपन को सबसे पहले सफेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए उसमें जो रसायन है इमिडाक्लोपीड उसका 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से

0: अपन गोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो वो ये सफेद मक्की क्या होती है कि रोग की वाहक होती है, तो ये कंट्रोल हो जाएगी, तो उसमें दूसरा रोग भी नहीं आएगा। इसी तरह अगर जो इसमें रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स वगैरह लगते हैं, तो इस पर अपन जो केमिकल है स्पाइनोसेट 0.3 ml का, उसका अपन इसमें खेत में छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: और दूसरा लगती है फल मक्की, तो इसके लिए अपन या तो जो ट्रेप आते हैं वो लगा दें, या फिर जो फल मक्की से गिरे हुए फल है उनको अपन उठाकर कहीं दूसरे गड्ढे में उसको नष्ट कर देंगे, ताकि उसका जो फल मक्की वो ज्यादा से ज्यादा नहीं फैलेगी। एक मेन इसमें कीट लगती है इल्ली, जो लगभग लगभग सभी सब्जियों में उसका प्रकोप आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके नियंत्रण के लिए अपन इमावेक्टिन बेंजोइड 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपन उसमें जो घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: नागर साहब, यहाँ तो बताया आपने कीट नियंत्रण की बात, अब आपने जो सब्जियां बरसात की यहाँ में प्रमुख रोग कशा लागवा की संभावना चाहिए, और यहाँ को निदान अपना जो कास्ट करवाए चो की प्रकार से कर
0: जी, इसमें जो रोग लगने की संभावना रहती है जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया या पाउडर मिल्ड्यू हो गया, झुलसा रोग हो गया, ये रोग इसमें अपन को ज्यादातर लगने की इसमें संभावना हो जाती है। तो जैसे मान लो अगर आपके खेत में अगर पाउडर मिल्ड्यू लग रहा है, तो जो वेटेबल सल्फर आता है, सल्फर डस्ट रहती है, वो अपन 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उसका अपन उसका छिड़काव कर सकते हैं। और मान लो अगर आपके खेत में डाउनी मिल्ड्यू आ रही है, तो उसमें अपन जो मेटालेक्जिल प्लस मैंगोजेब आता है, उसका अपन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: इसी तरह एक झुलसा रोग है, इसका नियंत्रण मैंगोजेब आता है, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपन उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सारी बात आपने बताई, लेकिन अब जो बरसात की जो आपने जो सब्जियाँ वहाँ प्रमुख सब्जियाँ बेल वाली सब्जियाँ आप बताए देखवा मिल जाए, चाहे वह अपन लौकी की बात करा, चाहे अपन करेला देख लें, चाहे अपन गिलकी की बात करा, तो ये जो प्रमुख जो बेल वाली जो आपने जो सब्जियाँ यहाँ में एक विधि हो चाहे मचान विधि, यहीं का माध्यम से यहाँ क्या तय कर सका था अपन, यहाँ को प्रबंधन या यहाँ की देख रेख वो किस प्रकार से करा, या मचान विधि कायम हो चाहे
0: जी। मचान विधि एक ऐसा ढांचा होता है जिसमें क्या होता है कि अपन बेलें होती है ना
1: जी,
0: जैसे लौकी करेला गिलकी वगैरह इनकी, तो इनको अपन क्या किसी के सहारे ऊपर चढ़ा देते हैं
1: जी,
0: तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, इनको हवा और प्रकाश भी अच्छा मिलता है, तो उनको उत्पादन भी उसी हिसाब से बढ़ता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो जैसे किन सब्जियों में अपन इनको कर सकते हैं, जैसे लौकी हो गई, तुरई हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, या ककड़ी हो गया, इन विधि इनमें अपन मचान विधि अपना सकते हैं
1: जी।
0: अब मचान बनाने की जो सामग्री है
1: जी,
0: क्या है उसमें कौन काम में ले सकते हैं, तो अपन उसमें जो 8 से 10 फुट लंबे या तो बांस होते हैं, या फिर सीमेंट या लोहे के जो खंभे होते हैं
1: जी,
0: उनको काम में ले सकते हैं।
1: हाँ।
0: या फिर कोई रस्सी, प्लास्टिक वायर, या फिर जो मजबूत जीवाई वायर आता है, उसको अपन काम में ले सकते हैं
1: जी।
0: अब मचान कैसे बनाना है, तो अपन खंभों जो बांस के खंभे या फिर जो सीमेंट के हैं या फिर लोहे के जो खंभे हैं, उनको अपन 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर गाड़ सकते हैं
1: जी।
0: और इनका जो गहराई है उसको 1.5 से 2 फीट गहरा रखनी, ताकि हवा हवा में वो गिरे नहीं
1: जी।
0: और ऊपर से अपन GI वायर से या फिर जो रस्सी की सहायता से अपन एक जाल बना सकते हैं, ताकि वो जो बेले हैं वो ऊपर चढ़ के अपना जो विस्तार कर सके। और इससे क्या है कि जो उसको प्रॉपर धूप और प्रकाश और हवा मिलेगी, तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और अच्छा उत्पादन आएगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। नागर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आपने जो कृषक साथी जी यहाँ कथाई दी, उर्वरक प्रबंधन की भी आपने बात करी, खरपतवार की भी बात करी, कीट रोग नियंत्रण की भी आपने बात करी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब सारी फसलें अपनी बढ़िया छे, सब कुछ बढ़िया छे, वहाँ को रोग प्रबंधन भी आपने करियो, तो सबसे मुख्य बात आओ जो आपने जो फसल चाहिए वो आपने आपनी जो सब्जियों की तुड़ाई की और उनकी टाइम मार्केटिंग की, तो आपना जो ये कास्ट करवाई जो जाना सब्जियां लगा रहा है किसी, वो सब्जियां की तुड़ाई कब कब करे और किस प्रकार से कर
0: जी। किसान भाइयों, सब्जी की तुड़ाई का सही समय पर करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप समय पर खाद और उसमें जो कीट या रोग के लिए दवाई देते हैं
1: जी जी।
0: नहीं तो अगर आप समय पर तुड़ाई नहीं करोगे, तो उसमें आपकी जो फसल की गुणवत्ता है, बाजार भाव और स्वाद है, उस पर काफी हद तक प्रभाव पड़ सकता है। तो अपन को तुड़ाई का जो सबसे बेस्ट समय रहता है, सुबह तो आप 6 से 9 के बीच में उसको तुड़ाई करें, अपने शाम को 4 से 6 के बाद उसकी तुड़ाई करें
1: जी।
0: क्योंकि दोपहर में आप तुड़ाई करेंगे, तो तुड़ाई के बाद में क्या होगा, आपकी जो फल है या सब्जी है वो जल्दी खराब होने की उसमें या फिर मुरझाने की उसमें समस्या हो सकती है
1: जी।
0: आपको ध्यान क्या रखना है कि या तो बरसात होने के बाद तुरंत बाद उसकी तुड़ाई नहीं करें, लगभग सब्जी या फल सूख जाए उसके बाद उसकी तुड़ाई करनी है। तुड़ाई अपन को हाथ से धीरे धीरे या फिर कोई कैंचिया स्केटर की सहायता से इसको काटनी है, तोड़ने है, ऐसे नहीं कि उसको खींच कर तोड़े, नहीं तो आपकी बेल को उसको या फिर पौधे को उसको नुकसान पहुंच सकता है
1: जी जी।
0: और दूसरा ये ध्यान रखें कि तुड़ाई के समय फल पर लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर डंठल रहने दें, इससे क्या होगा कि फल अधिक समय तक ताजा रह सकता है
1: जी जी।
0: और जब आप उसमें तुड़ाई करें, तो उसी समय आप

0: उसकी ग्रेडिंग अच्छे से कर ले, कोई मान लो सड़ा गला हो या फिर जिसमें कीट लग रहा हो उनको आप छाड़ अलग करके हटा दें ताकि आपकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
1: सही बात।
0: और तुड़ाई के बाद आप उनको क्या कर सकते हैं कि तुड़ाई के बाद आप उनको फल को छायादार स्थान पर रख सकते हैं और जैसे मैंने बताया आकार और गुणवत्ता के साथ साथ उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं और साफ प्लास्टिक की या तो जो कैरिट है या थैलियां हैं बोरियों में उनको भरकर आप जो जहाँ आपका मार्केटिंग स्थल है उनमें ले जा सकते हैं।
1: अरे वाह साहब नागर साहब, बड़ी अच्छी जानकारी आपने ये जो काश्तकार भाई कथाई थी। और अब जो है अपना जो काश्तकार भाई जाने ये बरसात की सब्जियां लगा रखी है, ये भी ये बरसात का ही मौसम में सब्जियां की उन्नत खेती करे, बढ़िया मुनाफा ये कमाओ, चालता चालता सलाहकार तौर पर या सुखाई की पहुंचाओ।
0: जी किसान भाइयों, अगर आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि नियमित अपने खेत का भ्रमण करते रहें, उसमें देखें कोई रोग कीट तो नहीं लग रहा है, और अगर रोग कीट लग रहा है तो उसकी सही समय में पहचान करके और उसमें उसका जो उपाय है वो अपनाएं। अब आपको ध्यान ये रखना कि जब भी आप कीटनाशक का या फफूंदीनाशक का या फिर उसका छिड़काव करें तो आपका जो वो प्रतीक्षा काल रहता है प्री हार्वेस्टेड इंटरवल, आप ऐसा नहीं कि भी आपने आज तो दवाई छिड़की और कल ही सब्जी तुड़ाई करके मार्केट में ले जाओ, उससे क्या है कि जो आपको उपभोक्ता है भी आप जो उसको काम में लेते हैं सब्जी को उनको रासायनिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तो आप थोड़ा उसका प्रतीक्षा काल का पालन करें, हाथ वाथ रसायन का छिड़काव करने के बाद सब्जी तुड़ाई नहीं करें, इस चीज का आपको उसमें जरूर ध्यान रखें।
1: अरे वाह साहब, श्री गोविंद कुमार जी नागर, कृषि अधिकारी कार्यालय कृषि विस्तार कृषि विभाग झालावाड़, आपने जुमा का काश्तकार भाई यहाँ से अति बढ़िया कथा जानकारी दी, इनके लिए आप कथाएं बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।

0: और अब चलता चलता एक और महत्वपूर्ण बात कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड का बारे में जल्दी सुमा का साथ ही बता दें कि भारत सरकार द्वारा किसाना की खेती और पशुपालन और मछली पालन के लिए कई सस्तों और आसान लोन प्रदान करे छे और ये क्या महत्वपूर्ण योजना छे और इसकी सबसे बड़ी विशेषता छे कि सस्तों लोन मिल जाओ छे बिना गारंटी के लोन मिल जाओ छे और इमें जो लिमिट रहे छे वह भी बहुत कम समय की रहे छे।
1: तो अब देखो भाई आपने जो घड़ी चाहिए अभी सारो कर रही आप जो कार्यक्रम चाहिए वो टर्म पर हो रही है तो आपका साथी हरिओम कताई
0: और निकिता मीणा कताई दो कार्यक्रम समाप्त कर बाकी अनुमति राम
1: राम, राम, राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: रंजीत अहलुवालिया
2: है? अरे कुछ समझ में नहीं आता, जहाँ देखो कचरे के ढेर, जहाँ देखो कूड़े के पहाड़। मैं कहता हूँ ये कूड़ा करकट एक दिन सारे घर को बैकुंठ पहुँचाएगा। डब्बू की मम्मी, ओ डब्बू की मम्मी, ओहो अरे सुनती हो या पैदी हो गई हो?
3: क्या हो गया जी, क्या हो गया? ओहो क्या हो गया जो चीख चीख कर मोहल्ला सिर पर उठा रहे हो?
2: मैं पूछता हूँ कि ये घर है या म्यूनिसिपैलिटी की कोठी
3: है? है?
2: अरे यहाँ इंसान रहते हैं या घोड़े? अरे ये कचरा डालने की जगह है बिल्कुल बीच रास्ते में है? लाख बार कहा है कि घर की साफ सफाई रखो, मैं उठाओ इस कचरे को, मैं कहता हूँ उठाओ, उठाओ यहाँ से।
3: मैं क्यों उठाऊं जी इस कचरे को, मैं नहीं उठाऊंगी इसे।
2: तो मैं उठाऊंगा इसे है? अरे दिन भर कचहरी में मारा मारा फिरूं, शाम को घर आकर सफाई करूं है? क्यों नहीं उठाओगी तुम इसे? मैं कहता हूँ उठाना पड़ेगा, उठाओ।
3: मैंने कह दिया ना, नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी। जिसने फेंका होगा ये कचरा वही उठाएगा इसे। मुझे को डांट रहे हो जोर जोर से, उनसे कहो ना जिनने फेंका है ये कचरा।
2: किन्ने फेंका है, है? तो ये कचरा क्या तुमने नहीं फेंका है? ओहो किसने फेंका ये कचरा है बोलो?
3: और कौन फेंकेगा, ऊपर से हुई है बरखा। मैं तो परेशान हो गई हूँ, नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। जब से आए हैं रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कल इनके बच्चे ने मेरे ऊपर जूठा पानी डाल,
2: जूठा पानी,
3: और परसों गमला गिरा दिया था। भगवान ने ही बचाया उस दिन तो, वरना मैं तो मर ही जाती।
2: समझा?
3: हाँ, और आप हैं जो मुझे को।
2: हाँ, ये इनकी करामात है, है? इनकी ये हिम्मत, कल जूठा पानी डाल दिया, परसों गमला गिरा दिया और आज कचरा फेंक गए हैं। ये शराफत का ये नतीजा है। अरे लाख बार कहा पंडित जी से कि ऐसे वैसे को मकान मत देना किराए से, पर लालची जो ठहरे। आज पंडित जी से इस बात का फैसला ही होगा। 10 साल से इस मकान में रह रहा हूं पर ऐसी हरकत किसी ने नहीं की। क्या समझ रखा है इन लोगों ने?
3: हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही डांटो। आए हैं उसी दिन से कह रही हूँ कि इन्हें समझा दो। दिन भर इनके बच्चे ऊपर दना दन कूदा करते हैं। हाँ, कल इनके पिता, मेरे पिताजी की तस्वीर दीवार से घिर कर टूट गई, उनका गुर पी कर रह गई। मगर करूँ क्या, जब आप ही कुछ नहीं कहते।
2: आज इस रोज रोज की रामायण का अंत ही होगा। मैं समझता था आदमी शरीफ है, लेकिन अब नहीं सोच सकता इसके बारे में। सोचता था आप ही समझ जाएगा, लेकिन अब मुझे समझाना पड़ेगा बच्चे को है? अरे महीना भर आए को हुआ नहीं और इतने कहर ढा दिए। आज पंडित जी से इस बात का फैसला ही होगा। या तो इन्हें रख लो या हमें रख लो। पंडित जी, ओ पंडित जी। अरे लालची बूढ़े, अरे कहाँ मर गया? ओ पंडित जी, पंडित जी महाराज।
4: क्या है मुंशी जी, क्या बात है?
2: क्या है,
4: क्या हो गया
2: पंडित जी? अरे मैं कहता हूँ आज तो आपको फैसला करना ही होगा।
4: फैसला?
2: हाँ।
4: कैसा फैसला?
2: इस बात का फैसला कि मकान में हम रहें या नहीं है? अरे आप हम पर होने वाली जुल्म ज्यादतियों को रोकेंगे भी या नहीं है?

0: आप मेरे घर को म्युनिसिपैलिटी की कोठी बनने से बचाएंगे या नहीं? आप मेरे घर को तस्वीरों की सुरक्षित रहने देंगे या नहीं? हाँ
1: है म्युनिसिपैलिटी की कोठी, आपके घर की तस्वीरें, आखिर बात क्या हो गई मुंशी जी? साफ साफ क्यों नहीं कहते?
0: अजी साफ साफ एक हो तो कह दू, क्या कहूँ साफ साफ। परसों मेरी घरवाली का सिर फूटते फूटते बचा, कल उसके सिर पर ऊपर की गैलरी से जूठे पानी का अभिषेक किया गया, मेरी एक तस्वीर भी टूट गई है। मैं कहता हूँ बताइए ये सब है क्या?
1: शांत होइए मुंशी जी, शांत होइए। आखिर किसने किया ये सब?
0: मैं कहता हूँ कैसे हो जाऊं शांत पंडित जी? अरे मेरे दिल में आग धधक रही है, आग। 10 साल से इस मकान में रह रहा हूँ पर ऐसी हिमाकत किसी ने नहीं की। मैं पूछता हूँ मेरे घर के सामने कूड़ा करकट डालने का किसी को क्या अधिकार है? हाँ
1: किसने डाला कूड़ा करकट, मुझे बताइए तो सही।
2: और कौन डालेगा पंडित जी, नाक में दम कर रखा है उन पर ऊपर वालों ने, वही फेंक गए मेरे दरवाजे पर कचरा।
1: ऊपर वाले मास्टर साहब ने? वे यहाँ क्यों कर डालेंगे कचरा, आपने देखा था?
2: अजी देख लेती तो डालने वाले के हाथ न तोड़ देती, उनके सिवा यहाँ है ही कौन जो करेगा ऐसी काली करतूत।
0: ये कचरा ही नहीं पंडित जी, जब से आए हैं हर रोज कोई ना कोई नया उत्पात, हर रोज एक नई मुसीबत, लेकिन अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ
1: पर जरा मेरी तो सुनिए।
0: अरे आपकी तो 10 साल से सुन रहा हूँ पंडित जी है? अरे आज आपको मैं कहता हूँ मेरी सुननी होगी, मेरी। लाख बार आपसे कहा कि देखभाल कर मकान किराए से देना, पर आप जो ठहरे लालची है, न जाने किसी अरे गहरे नत्थू खेरे को धर पकड़ लाए। अरे मैं कहता हूँ पंडित जी कितनी बार कहा मेरी साड़ू को मकान दे दो, लेकिन लेकिन आपने 10 रुपए के लालच में ऐसे वैसे लोग रख लिए हैं। राम राम राम राम, अब आपके लालच का फल हम लोग भुगत रहे हैं। हे प्रभु हे प्रभु।
3: कौन है जी ऐसा वैसा? मैं ऐसा वैसा हूँ? ऐरा गेरा नत्थू खेरा हूँ, एक घंटे से चुपचाप सुन रहा हूँ तो बिना रुके जबान का टाइपराइटर चलाया जा रहा है।
0: बड़ी मेहरबानी,
3: मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पंडित जी कि आप मेरे लिए इन्हें ऐसी बातें करने देंगे, सोचता था चुप रहूं, पर आखिर कब तक? रोज सुबह शाम की महाभारत मैं नहीं सुन सकता, आज इसका अंत ही होगा।
1: धीरे बोलिए मास्टर साहब, जरा शांति से काम लीजिए, आसपास के लोग सुन रहे होंगे, आखिर हम लोग शरीफ।
3: अजय शराफत गई भाड़ में, ऐसों से शराफत, इनसे शराफत यानी भैंस के आगे बीन बजाना।
0: क्या कहा? मैं भैंस यानी मास्टर साहब सुन रहे हैं आप? आप मुझसे भैंस कह रहे हैं, भैंस है? अरे जबान को लगाम दो लगाम है पंडित जी, सुन लिया आपने?
1: अरे
0: आप मुझे भैंस कह रहे हैं, भैंस। हाँ मुहावरा।
1: क्या आप भी बच्चों की तरह?
0: हाँ मुहावरा, आप तो मैं जानता था कि मुझे ही दबाएंगे, 10 साल की शांतिपूर्ण किराएदारी का ये फल दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ इन्हें कुछ कहिए ना, परसों गैलरी से इनके लड़के ने गमला गिराया। क्या गमला? कल जूठा पानी डाल दिया मेरी बीवी के सर पर और आज कचरा फेंक गए हैं यहाँ। मैं कहता हूँ इन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म।
3: अजी शर्म तो आपको आनी चाहिए,
0: मुझे आनी चाहिए।
3: आप अपने घर के लोगों की काली करतूतों को तो देखिए,
0: आप देखिए,
3: आपके बच्चे मेरे घर के दरवाजे की सांकल लगा गए, मुझे 2 घंटे परेशान होना पड़ा, मेरे घर के सारे पौधों को नष्ट कर दिया आपकी वानर सेना ने, मेरे गमले तोड़ डाले।
0: अरे मुझे नहीं मालूम ये कुछ, पंडित जी इनसे कह दीजिए कि कचरा यहाँ से फौरन उठा ले जाए।
3: कचरा उठा लूं? मैं कह रहा हूँ मुंशी होश में बात करो, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम मुझसे अपने घर का कचरा उठा लेते हो?
0: कचरा उठाओ,
3: सच मानिए पंडित जी आपके मुलाजे से गम खा रहा हूँ, नहीं तो ठीक कर देता इस मुंशी को।
0: ये ठीक करेगा?
1: शांत हो जाइए आप लोग, पढ़े लिखे समझदार होकर भी ऐसे झगड़ रहे हैं। मास्टर साहब क्या आपके घर का है ये कचरा?
3: अजी साहब इतना कचरा तो मेरे घर दिवाली की सफाई में भी नहीं निकलता, मैं ऐसा दलिद्दर थोड़ी
0: हूँ। क्या कहा? मैं दलिद्दर हूँ? अरे जबान को संभाल कर बात करो मास्टर, उठाओ इस कचरे को यहाँ से, उठाओ।
3: खबरदार तो मुझे फिर कचरा उठाने को, ये कचरा मेरे घर का हो ही नहीं सकता।
0: मैं कहता हूँ
3: इसी गंदगी और मेरे घर में, ये सिगरेट के पैकेट, ये बीड़ी के बंडलों के फोटे, टूटे हुए अंडे, मैं पीता हूँ सिगरेट बीड़ी, मैं खाता हूँ अंडे।
0: तो क्या मैं पीता हूँ बीड़ी, मैं खाता हूँ अंडे? अरे मेरी तो 7 पीढ़ियों ने तंबाकू छुई भी नहीं है, है? और अंडे, हे राम राम राम राम घोर कलियुग। अरे देखा पंडित जी, मांसाहारी होने का आरोप लगा रहे हैं मुझ पर सरेआम, अब मैं ज्यादा और नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ पंडित जी उठवाइए ये गंदगी यहाँ से।
3: मैं कहता हूँ पंडित जी रोकिए इन्हें, नहीं तो आज वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए।
0: अरे ये धौंस किसी और को देना मास्टर, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। मैं कहता हूँ उठाओ इस कचरे को यहाँ से, उठाओ।
3: पंडित जी अब मैं यहाँ 1 मिनट भी और ठहरा तो गजब हो जाएगा, मैं जाता हूँ, मैं इस मुंशी के बच्चे पर मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा।
0: पहले कचरा
3: मेरा ये अपमान कि मैं किसी के घर का कचरा उठाऊं।
0: तुम यहाँ से कचरा उठाए बगैर जा नहीं सकते। हाँ
3: अच्छा रोक लो मुझे।
0: रोकूंगा, 1 बार नहीं 10 बार रोकूंगा। तुम उठाओ ये कचरा, मैं कहता हूँ मास्टर कचरा उठाओ।
3: मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो मेरा।
0: मैं कहता हूँ कचरा उठाओ।

0: अरे अरे
1: नहीं छोड़ता।
0: अरे अरे छत गृहस्थों को हाथा पाई शोभा नहीं देती। छोड़िए छोड़िए।
2: अरे अरे ये क्या मुंशी जी मास्टर जी पिताजी ये क्या हो रहा है?
0: किशोरी ने रोको बेटा।
2: क्या हुआ पिताजी? मुंशी जी मास्टर जी कुछ बताइए तो।
0: बात कुछ नहीं बेटा, मुंशी के घर के सामने जो कचरा पड़ा है ना, मुंशी जी कहते हैं मास्टर साहब के घर वाले फेंक गए, बस इसी बात पर ये मल्लयुद्ध हो रहा है।
2: अरे अरे अरे इस महायुद्ध का इतना तुच्छ कारण, लाइए मैं इस कारण को ही नष्ट कर देता हूँ, मैं फेंक देता हूँ इसे बाहर। आखिर कुछ समझदारी से काम लीजिए, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बवाल।
1: अरे बवाल ना करूं तो क्या करूं, मेरे घर का कोई कूड़ा है ये है? अरे कचरा यहाँ पर फेंक दिया, कोई कूड़ा घर समझ रखा है इसे? मैं ऐसी शरारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्टर उठाओ कचरा।
2: शांत होइए मुंशी जी शांत होइए, मैं फेंक आता हूँ इस कचरे को।
3: सुन रहे हो? गजब हो गया। अरे मेरे सोने की अंगूठी, हाय हाय हाय मेरे सोने की अंगूठी।
1: अरे अरे अरे ले ले ले, क्या हुआ, क्या हो गया अंगूठी को?
3: न जाने कहाँ गुम हो गई मेरी अंगूठी, अभी अभी तो मेरे हाथ में थी, न जाने कहाँ किसे।
1: अरे भाई ढूंढो,
3: अभी क्या करूँ।
1: कैसे गुम हो गई?
3: सारा घर तो जान मारा।
1: अच्छे से ढूंढो।
3: सारा घर तो जान मारा, कहीं पता नहीं, देखो कहीं कचरे में तो नहीं।
1: कचरे में अंगूठी?
3: समय
2: रही आपकी अंगूठी, यह पड़ी है कचरे में।
3: अरे हाँ हाँ यही है। हे भगवान, लाओ किशोर भैया मेरी अंगूठी। भगवान बड़ा दयालु है, पूरे 32 नए पैसे का प्रसाद कबूला था मैंने। लाओ लाओ लाओ लाओ लाओ किशोर भैया
2: मेरी ये अंगूठी आपकी नहीं
3: है। क्या कहा, मेरी नहीं? वाह मेरी ही तो है।
2: वाह आपकी कैसे होगी, आपकी अंगूठी और मास्टर साहब के कचरे में? ये कचरा तो मास्टर साहब का है, अंगूठी भी उन्हीं की होगी।
1: अरे मास्टर साहब की कैसे होगी है? अरे किशोर भैया ये अंगूठी तो हमारी है।
2: वाह जी खूब, कचरा आपका नहीं और अंगूठी आपकी है, वाह वाह वाह।
4: देख लीजिए पंडित जी, आप ही देख लीजिए अपनी आंखों से।
1: अरे कचरे को मारिए गोली, अंगूठी हमारी है, हमें दे दीजिए पंडित जी।
3: सचमुच भगवान बड़ा दयालु है।
2: अंगूठी उसी की है जिसका ये कचरा है, और वो उसी को मिलेगी जो कचरे की मालकी मंजूर करेगा। बोलिए है कि नहीं ये कचरा आपका?
1: ये कचरा? हाँ भैया हाँ, अरे कौन इनकार करता है कि कचरा हमारा नहीं है। मान लिया साहब कि ये कचरा उतना उतना नहीं, सारा का सारा कचरा हमारा है बस।
4: देख लिया किशोर तुमने? देख लिया पंडित जी, अब ये अंगूठी मैं लूंगा, इन्हें ये कदापि नहीं मिल सकती।
1: अरे छोड़िए भी मजाक मास्टर साहब। पंडित जी अरे छोटे मोटे रगड़े झगड़े जो है ना, वो तो अड़ोस पड़ोस में चलते ही रहते हैं। अरे लाइए अंगूठी, अंगूठी दीजिए पंडित जी।
0: आपका कैसे हो सकता है मुंशी जी, आप तो बीड़ी नहीं पीते, अंडे नहीं खाते।
4: बिल्कुल ठीक।
1: अरे सब करता हूँ पंडित जी, सब करता हूँ सब करता हूँ। क्या झूठ बोलूँ अब आपसे, मानव की योनि ली है ना, तो ये सारे जितने पाप हैं ये सारे पाप करने ही पड़ते हैं। देह धरे को दंड है पंडित जी, सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, और किशोर भैया मूर्ख भुगते रोए। लाओ मास्टर साहब मेरी अंगूठी दे दो, आखिर मनुष्य हूँ ना, मनुष्य हूँ आखिर, पाप तो करता ही रहता हूँ।
4: मनुष्य नहीं पशु हो?
1: पशु ठीक, पशु हूँ।
4: तुम गिनोने जंतु?
1: वो भी ठीक, मेरी अंगूठी। अरे कुछ भी कह लो भैया, किशोर भैया पंडित जी मास्टर जी जो मर्जी है वो कह लो, पशु कह लो जीव जंतु कह लो और जो मर्जी है वो कह लो, लेकिन अब ज्यादा न सताओ मेरी अंगूठी।
0: ठीक है मेरी, पर अंगूठी आपको तभी मिलेगी जब आप मास्टर साहब से माफी मांगकर अपने हाथों से ये कचरा उठाकर फेंक देंगे,
2: और फिर कभी ऐसी हरकत न करने की प्रतिज्ञा करेंगे।
4: जी ये क्या प्रतिज्ञा करेंगे झूठे,
1: माफ करिएगा मास्टर साहब, मास्टर साहब पहली बार गलती हुई है मेरे से। आप तो बहुत भले आदमी हैं, मोहल्ले में आपके जैसा आदमी मैंने तो नहीं देखा। माफ कर दीजिए ना मास्टर साहब, माफ कर दीजिए। अरे भाई डब्बू की अम्मी, ओ मम्मी की डब्बू, अरे ये कचरा उठाओ यहाँ से फेंको, संभालो इसे, उठाओ कचरा।
3: हाँ हाँ तो क्या हुआ, अभी फेंक देते हैं।
1: हाँ फेंक देते हैं।
3: ला ला ला चलो चलो।
5: कचरे का मालिक, विनायक शंकर विनय की लिखी हास्य नाटिका आपने सुनी, निर्देशिका रंजीत अहलुवालिया, हमारे आकाशवाणी इंदौर की यह प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, पिछले फिल्म संगीत यानी कि हम 6:05 पर हम आपको सुनवा रहे थे कलाकार संजीव कुमार के बारे में बातें, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। एक और कलाकार हैं, कलाकार यूँ कहें कि ऑलराउंडर हैं, वो फिल्मों के निर्देशन हैं, फिल्में लिखते हैं और एक्टिंग भी करते थे। ये कैरेक्टर आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हम आपको बताते हैं कि 1960 के दशक में उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई, प्यासा, कागज़ के फूल, साहेब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद, और उन्हें भारत का ऑर्सन वेल्स भी कहा जाता है। आप शायद समझे नहीं होंगे, फिर भी हम बताते चलें। ये कैरेक्टर यानी कि ये कलाकार हैं गुरुदत्त, 1950 के दशक में लोकप्रिय सिनेमा के प्रसंग में काव्यात्मक कलात्मक फिल्मों के व्यावसायिक चलन को विकसित करने के लिए इनका नाम प्रसिद्ध है। और इनकी जो फिल्में हैं, इनको जो जर्मनी, फ्रांस, जापान में भी काफ़ी सराहा गया है। तभी ये अच्छे अभिनेता, अच्छे निर्देशक और अच्छे फिल्म निर्माता थे।

दोस्तों, गुरुदत्त का जो बचपन है वो बीता है कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में, जिस जगह उनका बौद्धिक और सांस्कृतिक पर उनका वहाँ प्रभाव पड़ा। बचपन में वित्तीय कठिनाई तो काफ़ी थी और माता पिता का तनावपूर्ण रिश्तेदार का उनसे उनके ऊपर उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा। उन पर बंगाली संस्कृति का इतना गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम वसंत कुमार शिव कुमार को बदलकर गुरुदत्त रख लिया। यहाँ एक हम छोटी सी कहानी बताएं कि गुरुदत्त की दादी नित्य शाम को दिया जलाकर आरती करती है और 14 वर्षीय गुरुदत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों की विभिन्न मुद्राओं से तरह तरह के चित्र बनाते रहते थे और यहीं से उनके मन में कला के प्रति जो जागृत हुआ वो वहीं से शुरू हुआ। हालांकि वो पढ़े लिखे इतने नहीं थे और प्रेरित करने से वो आगे अपने पेंटिंग और एक सांप नृत्य प्रदर्शन फोटोग्राफ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। अब यहाँ से जो वहाँ सारस्वत ब्राह्मणों के एक जो कार्यक्रम होता था वहाँ भी वो भाग लेते थे तो वहाँ उनको 5 रुपये का इनाम मिला। जब गुरुदत्त 16 वर्ष के हुए सन 1941 में 5 साल के लिए उन्हें 75 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य नाटक और संगीत की शिक्षा लेनी उन्होंने शुरू की। अब देखा जाए तो कठिनाई आर्थिक कठिनाई तो उनको थी सही और इतना पढ़ाई वो कर ना सके, फिर भी रविशंकर के अग्रज उदय शंकर की संगत में रहकर कला व संगीत उन्होंने काफ़ी गुण उन्होंने सीख लिए थे। पुणे में सबसे पहले 1944 में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली और उसके बाद वो धीरे धीरे अभिनय से जुड़े। उनका अपना फिल्म निर्देशक में सहायक का काम किया और निर्देशक पीएल संतोषी की फिल्म हम एक में, फिल्म का नाम था हम एक हैं, उसके लिए उन्होंने नृत्य निर्देशन का काम भी किया। फिल्म जब आई तो वो आई थी उनकी प्यासा। प्यासे के बाद आपने उनकी फिल्में, जो अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं वो सन 1964 में सुहागन, 1963 में भरोसा, 1962 में साहब बीवी और गुलाम और सन 1960 में ब्लॉकबस्टर फिल्म चौदहवीं का चांद।

साथियों, हम बात कर रहे हैं कला गुरुदत्त की। 1947 में गुरुदत्त बम्बई आ गए, जहां उन्होंने अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी नामक अपने समय के दो अग्रणी निर्देशकों के साथ काम किया। अमीय चक्रवर्ती की फिल्म गर्ल्स स्कूल में और ज्ञान मुखर्जी के साथ बॉम्बे टाकीज की एक फिल्म संग्राम में उन्होंने सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई, और बम्बई में ही उन्हें देवानंद की पहली फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में पेशकश की गई। देवानंद ने उन्हें अपनी नई कंपनी नवकेतन में एक निर्देशक के रूप में अवसर दिया। दुर्भाग्य से वो फिल्म फ्लॉप हो गई। इस प्रकार निर्देशित पहली फिल्म जो थी नवकेतन के बैनर तले, वो थी बाजी, जो आई थी सन 1951 में।

साथियों, 1950 और 1960 के दशक में उन्होंने कई अच्छी फिल्में बनाई, जैसे प्याजा, प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद। और इसमें विशेष रूप से प्यासा और कागज के फूल को टाइम पत्रिका के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में भी शामिल किया गया। और साइट एंड साउंड आलोचकों और निर्देशकों के सर्वेक्षण द्वारा जो एक लिस्ट भी बनाई गई, उसमें भी फिल्म निर्देशक गुरदत्त का नाम रहा है। 2010 में उनका नाम CNN के सर्वश्रेष्ठ 25 एशियाई अभिनेताओं की सूची में भी शामिल किया गया है।

दोस्तों, संघर्ष के समय में उन्होंने एक अपनी आत्मकथात्मक शैली में फिल्म प्यासा की पटकथा लिखी थी। मूल रूप से पटकथा कश्मकश के नाम से लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अर्थ संघर्ष। बाद में इसी पटकथा को प्यासा के नाम से बदल दिया गया और ये पटकथा उन्होंने माटुंगा में अपने घर पर रहते हुए लिखी थी।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारी कलाकार, निर्देशक, लेखक और कलाकार गुरुदत्त की। गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई

प्रयोग किए, फिल्मबाजी में उन्होंने दो प्रयोग किए। 100 mm के लेंस को क्लोजअप के लिए इस्तेमाल किया करीब 14 बार। इससे पहला कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता से ऐसा गुजरना पड़ता था। तब से इस स्टाइल का नाम हो गया गुरुदत्त शॉट। किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, तो ये दो प्रयोग उन्होंने फिल्म बाजी में किए। ऐसे ही फिल्म कागज़ के फूल हिंदुस्तान सिनेमा में स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म में गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे और जो भारतीय सिनेमा में कभी नहीं हुआ। तभी फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप बनने वाली फिल्म की शूटिंग ख़त्म की थी और स्पेशल मुंबई में उनके ऑफिस में उनके सेट छूट गए थे। जब गुरुदत्त को पता चला तो वे वहां गए और तुरंत उनके लेंस लेकर उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट इस गीत में किया जो गीता दत्त की आवाज़ में आप सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशन

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: इलेक्शंस की नींव है, पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान

0: विज्ञान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम सबरस आरंभ करें हैं लकी लकी गाय इस गीत के साथ।

चंदन दास की गाइस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। रात्रि के 9:30 बज चुके हैं। हमारी आज की सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।